मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के बैसाख मास की 27वीं तिथि तदनुसार 17 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीटर वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेन

0: रियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले नमन अपनी मातृभूमि को।

श्रोताओं, मानव जीवन श्रेष्ठ है, इसे ईश्वर का वरदान समझकर सत्कर्म करते हुए जीना ही मानव जीवन का लक्ष्य है।

श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण समस्त भावों को जानने वाले हैं। वह साध्यों, देवताओं और ईश्वरों के भी देवता हैं।

संपूर्ण जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। तुम्हें चराचर जगत की स्वामिनी हो।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने जो स्वर सुने वे थे सोनू निगम, वाणी जयराम और नरेंद्र चंचल।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं प्रकाश किरण में गरुड़ पुराण से पाठ।
1: भारतीय ऋषियों ने मरणोत्तर जीवन का प्रत्यक्ष जैसा दर्शन किया है। इस जीवन की सुख दुखमयी स्थिति का कारण पूर्व जन्म के कर्म मानकर भावी जन्म में भी

0: उनका प्रभाव बताते हुए भारतीय मनीषियों ने समाज के सम्मुख दो तत्वभूत फल पुण्य एवं पाप के नाम से दिखलाए हैं। गरुड़ पुराण में इन्हें ही धर्म एवं अधर्म के नामों से दृष्टांतों के द्वारा पल्लवित किया गया है। इस पुराण के प्रेतकल्प में जीवन में कर्मानुसार भोग तथा तदनंतर मृत्यु की प्रक्रिया बताकर मानव को धर्माचरण के लिए प्रेरित किया गया है। मृत्योर्नमुच्यते मूढ़ो बालो वृद्धो युवापि वा सुख दुखाधिको वापि पुनरायाति याति च। मूर्ख, बालक, वृद्ध, युवक कोई भी मृत्यु के मुख से मुक्त नहीं होता। सुख या दुख भोग कर पुनः इस संसार से परलोक जाता है और फिर यहीं आ जाता है। इस कर्म भोग में उसका कोई भी साथी नहीं होता। एक प्रजायते जंतु रेक एव प्रलीयते एको ही भुंक्तो सुकृत मेक एव च दुष्कृतम। यह जीवात्मा अकेला उत्पन्न होता है, अकेला ही यहाँ से चला जाता है तथा अकेले ही वह अपने किए पुण्य या पाप का भोग करता है। गृहेश्वर्था निवर्तन्ते श्मशाने मित्र बांधवा शरीरम वह्निरादत्ते सुकृतम दुष्कृतम व्रजेत। धन व वैभव सब घर में पड़ा रहता है, मित्र व बंधु बांधव श्मशान तक ही जा पाते हैं। अग्नि शरीर को जला डालती है, केवल अच्छे और बुरे कर्मों का फल ही साथ में जाता है। अतः मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिए। धर्मात् संजायते हर्थो धर्मात् कामोभिजायते धर्म एवापवर्गाय तस्मात् धर्मम सदाचरे। धर्म से अर्थ, काम तथा मोक्ष सभी प्राप्त होते हैं, अतः मानव मात्र के लिए धर्म का आचरण अनिवार्य है। धर्म का आधार श्रद्धा है, धन नहीं। श्रद्धया धार्यते धर्मो बहुभिर्नार्थ राशिभिः अकिंचना हि मुनयः श्रद्धावंतो दिवंगता। श्रद्धा से धर्म धारण किया जाता है, धनराशि से नहीं। देखिए, अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धा से ही स्वर्ग पहुंच गए थे। इसी पुराण में मृत पुरुषों की तृप्ति के लिए उनके पुत्र पौत्रों के द्वारा श्राद्ध का विस्तृत वर्णन है। श्रद्धा से किए गए कर्म तथा दिए गए पदार्थ का नाम ही श्राद्ध है। श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धम तेन निगद्यते प्रत्यब्दम पार्वणम कार्यम तेषां सर्वैः सुतैरपि। पुत्रों का कर्तव्य है कि वे प्रतिवर्ष अपने मृत पितरों का पार्वण श्राद्ध करें। वर्ष में आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष कहा जाता है, यह 16 दिनों का है। अपने मृत पितरों को सभी तिल मिश्रित जल देते हैं तथा मरण की तिथि को पिंडदान करते हैं। गया क्षेत्र में पिंडदान का बड़ा महत्व बताया गया है। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गया शिरः तत्र पिंड प्रदानेन पितृणाम परमागतिः।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे प्रकाश किरण में गरुड़ पुराण से पाठ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:30 हो चुके हैं। आइए अब आपको दे देते हैं जानकारी हमारी सभा के शेष और अगले दोनों सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण में

आपसे कुछ देर बाद 6:30 पर, माफ कीजिएगा, 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। कार्यक्रम खेती की बातें होगा सुबह 6:45 पर, जिसमें डॉक्टर पीके शर्मा की वार्ता का प्रसारण होगा, जिसका विषय रहेगा अनाज भंडारण कैसे करें।

सुबह 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यमित्र जानकारी देंगे गले के रोग और उनका उपचार विषय पर। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गीतांजलि 8:45 पर। पुरानी फिल्मों से गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मंजूषा में सुबह 9:25 पर। फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम होगा सौर सरिता सुबह 10 और सुबह 9:45 पर। आज लोक संगीत में कलाकार होंगे संजय उपाध्याय।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 10:30 पर। कलाकार होंगे अकील अहमद खान। सुबह 11 बजे सुनेगा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। दोपहरकालीन सभा में 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकमंजरी। कलाकार होंगी सुनीता धाकड़। नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम होगा नए तराने दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम बालमंडल का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 1:15 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर। कलाकार होंगे मोहम्मद रफी।

बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे। 5:30 पर सुनेगा कार्यक्रम युववाणी।

श्रोताओं, शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम्य लोक। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के संदर्भ में वार्ता, जिसमें वार्ताकार होंगे डॉक्टर संदीप सिंह। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल। विविधा क्रम में शाम 7:10 पर सुनेगा डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित की वार्ता, जिसका विषय रहेगा बाल साहित्य के अस्तित्व का संकट।

श्रोताओं, शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर विशेष भेंट वार्ता। डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल से बातचीत करेंगे अनिंद्र सिंह। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गाने नए पुराने रात 8 बजे। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं रात 8:30 पर। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर। और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आप सुन सकते हैं रात 10 बजे। श्रोताओं, ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्रों से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे सभा के शेष और अगले दोनों सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की कार्यक्रम विवरण में। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपने अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन हैं?

0: 96.1 मीटर पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता अनाज भंडारण कैसे करें विषय पर। वार्ताकार हैं डॉक्टर पीके शर्मा।
1: किसान भाइयों, अनाज को मुख्यतः चूहों, कीटों, सूक्ष्म जीवों एवं सीलन द्वारा क्षति होती है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि कीटों द्वारा होने वाली क्षति मुख्य रूप से तीन कारणों पर आधारित है। पहला कारण है अनाज में नमी की मात्रा, दूसरा भंडारण में ऑक्सीजन प्राप्ति के स्रोत व साधन तथा उसकी मात्रा, और तीसरा भंडारण में तापक्रम का उतार चढ़ाव। यदि नमी की मात्रा अधिक होगी तो स्वाभाविक है कि उसमें कीटों का प्रकोप भी अधिक होगा। यदि भंडारण के समय नमी 8 से 10% या इससे कम कर दी जाए तो ज़्यादातर कीटों का प्रकोप स्वतः ही कम हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि अनाज को गर्मियों के दिनों में कड़ी धूप में सुखाकर ही भंडारण करें। अनाज के दाने भली प्रकार से सूख गए हैं या नहीं, इसकी पहचान के लिए एक दाना दांतों से तोड़ें और वह कट की आवाज़ के साथ कट जाए तो समझ लें कि अब अनाज भंडारण के लिए उपयुक्त है। भंडारण में पुनः नमी की मात्रा न बढ़ जाए इसके लिए आवश्यक है कि भंडारण गृह नमी अवरोधी हो, अन्यथा बरसात के दिनों में पुनः नमी की मात्रा बढ़ जाएगी और कीटों का प्रकोप होने की संभावना पैदा हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी जीवधारी बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता, अतः अनाजों को वायुरोधक भंडार गृह में रखा जाए तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है तथा उसकी कमी कीड़ों को मार देती है। कीड़ों के विकास के लिए तीसरा महत्वपूर्ण कारक तापक्रम होता है, जो कीटों की क्रियाओं को सर्वाधिक प्रभावित करता है। नमी की तरह ही कीटों के विकास के लिए निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए कुछ कीट उष्ण स्थलों का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात एक तापक्रम के लिए एक अपना एक दायरा बना लेते हैं। यदि उन्हें रोक दिया जाए तो कीटों का विकास नहीं हो पाता है। इसके लिए आवश्यक है कि भंडारित अनाज को एक दो बार उलट पलट दें या भंडार गृह में वायु का प्रवेश करा दें। यदि ये तीन सिद्धांतों को भंडारण करते समय ध्यान में रखा जाए तो कीटों द्वारा होने वाली क्षति को काफ़ी मात्रा में कम किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आप ये भी जानें कि भंडार गृहों में कीट किन किन साधनों से या किन किन स्रोतों से पहुँचते हैं। कुछ कीट जैसे चावल का घुन, दाल का भ्रंग व अनाज का सलव अपने अंडे पकती हुई फसल के बीजों पर खेत में ही देना आरंभ कर देते हैं और वह दानों के साथ आपके भंडार गृह तक पहुंच जाते हैं। खलियानों के आसपास कूड़े करकट में छिपे कीट मड़ाई के समय अंडे देकर गोदामों में पहुंचते हैं। तीसरा है इसमें कि अनाज ढोने वाली बैलगाड़ियाँ, जिसमें आप अनाज खलिहानों से घर तक लाते हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली या कोई मोटर गाड़ी, इनमें जो हानिकारक कीट हैं वो पहले से ही मौजूद रहते हैं, जो स्वच्छ अनाज के साथ भंडार गृहों में चले जाते हैं। अधिकतर गांव में ये भी देखने को मिलता है कि किसान भाई अनाज भरने के लिए पुराने ब्योरों का ही प्रयोग करते हैं,

0: इन बोरों में कीट की विभिन्न अवस्थाएं छिपी होती हैं, मतलब उनके अंडे हैं, लार्वा हैं, ये छिपे रहते हैं। और जब इन्हीं बोरों में आप अनाज भरते हैं तो इन्हीं के साथ गोदामों में ये कीट पहुंचकर पनपने लगते हैं। कुछ प्रौढ़ कीट, मतलब जो पूरे प्रौढ़ होते हैं, जो सीधा नुकसान पहुंचाते हैं, वो उड़कर तथा सूढ़ियाँ, इनके जो लार्वा होते हैं, सूढ़ियाँ होती हैं, वो रेंग कर भंडार गृहों में पहुँच जाती हैं। अतः अनाज को कीटों से बचाने के लिए आवश्यक है कि वह सभी सावधानियाँ अपनाई जाएं जो कीटों को पनपने से रोकने में सहायक होती हैं। जैसे जहाँ तक संभव हो, अनाज के लिए पक्के गोदामों या खत्ती का ही निर्माण करें। वैसे गांव में अक्सर देखने को मिलता ही है कि लोग पुरानी खत्तियों में या पुरान मिट्टी के कुठलों में अनाज को भंडारित कर देते हैं। तो अगर आप इन भंडार ग्रहों को पक्का कर दें तो इस नुकसान से आप बहुत कुछ बच सकते हैं। इसमें भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन भंडारों की दीवारें नमी अवरोधी हों, इनमें नमी कहीं बाहर से आ न जाए। इसके अतिरिक्त गोदामों में स्वच्छ वायु जाने के लिए खिड़कियों का होना भी आवश्यक है। ये खिड़कियाँ भी ऐसी होनी चाहिए जो आपके भंडार गृह से बाहर से बंद की जा सकें और खोली जा सकें। जो आपकी गोदामों की दीवार हैं उनमें छेद या दरारों को, यदि वो आपको कहीं दिखते हैं, तो सीमेंट से ज़रूर भर दें, क्योंकि इनमें कीड़े जो नुकसान पहुंचाते हैं वो पहले से ही सड़ ले लेते हैं और उनमें छुप जाते हैं। यदि गोदामों के फर्श में, दीवार पर, छत पर कहीं भी कीटों के रहने की संभावना हो तो उसे अनाज भरने से पहले अच्छी तरह से सफाई कर लें तथा एल्यूमिनियम फास्फाइड की 7 गोलियां प्रति 81 घन मीटर स्थान की दर से प्रयोग करें, या 0.3% मेलाथियन का घोल बनाकर 3 लीटर मेलाथियन का घोल बना लें और प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से गोदाम के अंदर उसे छिड़क दें। इससे जो भी कीड़े पहले से गोदाम में मौजूद होंगे वह मर जाएंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कि जहाँ तक संभव हो नए बोरों का ही प्रयोग करें। यदि पुराने बोरे ही प्रयोग में लाने हैं जो आपके यहाँ पहले से हैं, तो उन्हें 21% या 1% मेलाथियान घोल में 10 मिनट तक डुबाकर सुखा लें। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम बोरों को उलटकर गर्मियों की तेज़ धूप में कम से कम 6 घंटे तक अवश्य सुखा लें। यदि अनाज को बोरियों में रखना हो तो उनके नीचे पर्याप्त मात्रा में भूसे की तह बिछा दें, और यदि ये सुलभ हो सके, अगर आप कर पाएँ, तो यह लकड़ी के तख्तों पर अनाज की बोरियां रखें तो ये सर्वोत्तम होता है।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे वार्ता, अनाज भंडारण कैसे करें विषय पर। वार्ताकार थे डॉक्टर पीके शर्मा और कार्यक्रम था खेती की बातें।

0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्रों से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 6:55 होने को है। अगला अनुप्रसारण कुछ ही क्षणों में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री

0: क्षेत्रीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रीच गोथेनबर्ग टुडे ऑन अ टू डे विजिट टू स्वीडन मार्किंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन द डीपनिंग अलायंस बिटवीन न्यू

0: ऊपरी, निचला और बीच का। ऊपरी भाग वह है जो नासिका गुहा के पीछे स्थित होता है। दोनों नासिका गुहाएं अंतःनासा छिद्रों से इस भाग में खुलती हैं। इसी भाग में कर्ण कंठ नली भी खुलती है, जिसका संबंध कान से होता है। इसके नीचे बीच का भाग होता है जो मुंह खोलने पर सामने दिखाई देता है। इसमें ऊपर से लटकता हुआ काग दिखाई देता है। दोनों तरफ दो गड्ढे होते हैं जिनमें टॉन्सिल अगर बढ़े हुए हों तो दिखाई देते हैं। तीसरा भाग नीचे का होता है, जहां से श्वास प्रणाली और भोजन प्रणाली अलग अलग शुरू होती हैं। श्वास प्रणाली के सबसे ऊपर का भाग स्वर यंत्र कहलाता है, जहां से आवाज निकलती है। गले के रोगों में सबसे सामान्य गला खराब होना या सोर थ्रोट और टॉन्सिल की बीमारियां हैं। गले की खराश या सोर थ्रोट प्रायः वायरस जनित और कभी कभी जीवाणु जनित या एलर्जी के कारण भी होता है। इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गले में स्थित टॉन्सिल मुख व गले के विकारों में अग्रिम रक्षा पंक्ति माने जाते हैं, जो इन विकारों में बढ़कर फूल जाते हैं या सूज जाते हैं और तुरंत इलाज की सूचना देते हैं। टॉन्सिल का बढ़ना, सूजना या पक जाना एक सामान्य बीमारी तो है, परंतु उतना ही सरल है उसका नियंत्रण भी। शिशु जन्म से लेकर किशोरावस्था तक इसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है और सरल भी है। छोटे शिशुओं को दूध पिलाते समय सिर धड़ से कुछ ऊंचाई पर रखें, उसके ऊपर उन्हें थोड़ा पानी अवश्य पिला दें। बड़े शिशुओं को दूध पिलाने के बाद कुल्ला या गरारे अवश्य कराएं। बड़े बच्चे स्वयं यह ध्यान रखें कि दूध आदि पीने के बाद, मिठाई आदि खाने के बाद कुल्ला करके मुंह साफ कर लें। आशय यह है कि मुंह में खाद्य पदार्थ के कण पड़े न रह जाएं। यदि ये कण पड़े रहेंगे तो जीवाणु सक्रिय होंगे और उन्हें भोजन मिलेगा, फलतः गला खराब होगा, खराश, टॉन्सिलाइटिस आदि होगा। बार बार टॉन्सिल की बीमारी होने से ये आकार में बढ़ते जाते हैं और कभी कभी इनका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि खाना निगलने और सांस लेने में कष्ट होने लगता है। इस अवस्था में टॉन्सिलों को निकालने का ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बचता है। गले में काग के पीछे एक और रचना पाई जाती है, जो शिशु के विकास के साथ किशोरावस्था आते आते स्वतः समाप्त हो जाती है। इन्हें अंदरूनी टॉन्सिल या एडिनोइड कहते हैं। गले व नाक के विकारों में ये भी बढ़ जाते हैं या सूज जाते हैं, जिससे नाक से गले का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है और सांस लेने में परेशानी होती है तथा शिशु मुंह खोलकर सांस लेता है। लगातार एडिनोइड या टॉन्सिल का कष्ट रहे और शिशु मुंह खोलकर सांस ले तो आगे के दांत और होठ आगे की ओर उभर आते हैं, चेहरा बुरा लगता है। मुंह और गले की नियमित सफाई और बार बार मुंह झुठाने की आदत छोड़ने से और तुरंत विकार का उपचार करने से बचा जा सकता। आवाज बैठना या गला बैठना स्वर यंत्र वाले भाग का कष्ट है, जिसे उपचार द्वारा शीघ्र ठीक किया जा सकता है। गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना गले के विकारों में लाभप्रद होता है। नाक द्वारा भाप लेना भी गला पड़ जाने पर या आवाज बैठने में हितकर होता है। जल नेति एक योग क्रिया है जो गले व नाक की अनेक बीमारियों को हमसे दूर रख सकती है।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे डॉक्टर सत्यमित्र द्वारा दी गई जानकारी गले के रोग और उनका उपचार विषय पर। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

गले के रोगों के विषय में चर्चा करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि हमारा गला कैसा होता है। गले की बनावट देखते हुए हम इसे तीन भागों में बांटते हैं,

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला अनुप्रसारण कुछ ही क्षणों में।

0: अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता

0: दर्ज कराने का किया आह्वान। सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
1: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है।
1: प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
0: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोरखपुर में 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा है कि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसका मुख्य उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाकर देश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यम

0: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित तथा आंतरिक होगा। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में कल रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कल अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
1: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ, तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इसमें मेरा प्रयास रहेगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से तैयार किए गए विंध्य प्रसादम गिफ्ट बॉक्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि ये पहल वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। विंध्याचल में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए विंध्य प्रसादम में चुनरी से लेकर पूजा की सामग्री और प्रसाद उपलब्ध है। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कल वाराणसी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बारिश से पहले नालों की सफाई, शहर की स्वच्छता और बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। चित्रकूट नगर पालिका क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। कल नगर पालिका परिषद की बैठक के बाद अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के साथ ही इसे सुंदर बनाया जा रहा है।
2: उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ में हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सही।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:32 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो साथी सुरेखा दुबे का नमस्कार। श्रोताओं, सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के तहत 9वीं और 10वीं कक्षा की भाषा अध्ययन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने कहा है कि 1 जुलाई 2026 से 9वीं में 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा, जिनमें कम से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यार्थी विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है तो उसे तीसरी भाषा के रूप में तभी चुना जा सकेगा जब बाकी 2 भाषाएं भारतीय हों, अन्यथा विदेशी भाषा को अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में पढ़ना होगा और ये व्यवस्था 2026-27 सत्र से लागू होगी। भाषाओं की श्रेणियां इस प्रकार से रहेंगी। यदि विद्यार्थी मुख्य भाषा चुनता है, जिसे स्कूल चुनता है, यह भाषा सीबीएसई के सूची में शामिल होती है, जैसे हिंदी या कोई क्षेत्रीय भाषा। आमतौर पर छात्रों की पढ़ाई की शुरुआत इसी भाषा से होती है। दूसरी भाषा, श्रोता, यह पहली भाषा से अलग होती है। यह भी एक मानक भाषा होती है जिसे स्कूल पढ़ाता है, जैसे अंग्रेजी या कोई दूसरी भाषा। तीसरी भाषा, ये पहली और दूसरी दोनों से अलग होती है। इसमें छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। इन 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए।

श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से बीसीए और बीएससी होम साइंस आप कर सकते हैं। इन दोनों पाठ्यक्रमों में करियर के विकल्प लगातार बढ़ रहे हैं। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के एकेडमिक डीन के अनुसार विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर में यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर में बीबीए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी संचालित हैं। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस बीएससी होम साइंस के साथ ही सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा में प्रवेश के लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.aac.in पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी, जिसमें छात्रों का विस्तृत ब्यौरा दर्ज होगा। छात्र देश के किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करें, उनका एबीसी नंबर कभी नहीं बदलेगा। समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का शुल्क ₹400 है। किसी भी तकनीकी समस्या या पूछताछ के लिए हेल्पलाइन ईमेल आईडी समर्थ dbrau@gmail

com पर संपर्क किया जा सकता है। श्रोताओं, पाठ्यक्रम सीटों का विवरण इस प्रकार से है। यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर में बीसीए की 180 सीटें हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 30 सीटें, इंस्टीट्यूट होम साइंस में बीएससी होम साइंस में 60, एमएससी होम साइंस जनरल 30, एमएससी होम साइंस ग्रुप ए 3, एमएससी होम साइंस ग्रुप बी 3, एमएससी होम साइंस ग्रुप सी 3, एमए होम साइंस 50, पीजी डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स 30, सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन 30, सर्टिफिकेट कोर्स इन एनजीओ मैनेजमेंट 30 सीटें, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन 20 सीटें और डिप्लोमा इन डिजाइन में 20 सीटें हैं।

श्रोताओं, इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस रविवार को आयोजित होगी, यानी आज ही के दिन। जेईई मेंस में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले देश भर के मेधावी छात्र इसमें शामिल होंगे। परीक्षा दो अनिवार्य शिफ्टों में होगी। पहला पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को दोनों पेपर देना अनिवार्य है। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। गेट बंद होने के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षार्थियों को प्रिंटेड एडमिट कार्ड और मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, बैग और लिखित सामग्री प्रतिबंधित रहेगी। छात्र पारदर्शी पानी की बोतल और साधारण पेन या पेंसिल साथ ला सकते हैं।

श्रोताओं, साई का तकिया स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में निशुल्क रोजगार मेला 19 मई को होगा। इसमें दिव्यांगजन भाग ले सकेंगे। मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का होगा। टेलीकॉलर, टेली कलेक्शन सहित अन्य पदों की भर्तियां की जाएंगी।

श्रोता, इंदिरापुरम में शनिवार को आगरा बास्केटबॉल अकादमी, माफ कीजिएगा श्रोता, 29वीं उत्तर प्रदेश सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 को आगरा जनपद की टीम का चयन ट्रायल 18 मई को होगा। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव ने बताया है कि प्रतियोगिता 1 से 2 जून तक प्रयागराज में होगी। महिला और पुरुष वर्ग में होने वाली प्रतियोगिता के लिए आगरा की टीम का चयन ट्रायल 18 मई को शाम 4 बजे से एकलव्य स्टेडियम में होगा। अधिक जानकारी के लिए एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आप संपर्क कर सकते हैं।

श्रोताओं, तरणताल और जिम का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न होने पर नोटिस भेजे जाएंगे और प्रतिष्ठान को बंद करा दिया जाएगा। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले के निजी प्रतिष्ठानों, क्लबों, होटलों में संचालित तरणताल जिम का पंजीकरण जरूरी है। उन्होंने जिले में संचालित समस्त निजी क्लबों, होटलों और संस्थानों के संचालकों से कहा है कि वे तरणताल जिम का पंजीकरण 20 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से करा लें।

श्रोताओं, आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अपनी रेडियो साथी सुरेखा दुबे के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं इस गीत को सुनने के बाद।

श्रोताओं, आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आपको बता दें कि

नई दिल्ली आगरा रेलखंड और कैंट रेलवे स्टेशनों में जल्द ही मालगाड़ियों का दबाव कम होने जा रहा है। कीठम से भांडई के मध्य बन रही तीसरी रेल लाइन से होकर 60 से करीब 70% मालगाड़ियां निकलेंगी। सिर्फ कैंट स्टेशन में रुकने वाली ट्रेनें ही आएंगी। इसके अलावा सिकंदराबाद राजधानी सहित 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें भी तीसरी रेल लाइन से निकलेंगी। तीसरी रेल लाइन से कैंट स्टेशन के आउटर में ट्रेनें कम खड़ी होंगी। इससे ट्रेनों का समय पालन और भी बेहतर होगा। कीठम से बांधई के मध्य करीब 600 करोड़ रुपए से 26 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन बिछ रही है और यह कार्य करीब 1 साल में पूरा हो जाएगा। श्रोता, नई दिल्ली आगरा रेलखंड में हर दिन करीब 270 से अधिक यात्री और 360 मालगाड़ियां चलती हैं। हर दिन 70,000 से अधिक यात्री सफर करते हैं और ये खंड देश के सबसे व्यस्ततम खंडों में शामिल हैं। 2 वंदे भारत और देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस भी चलती है। अभी ये ट्रेनें आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से होकर निकलती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 के मध्य रिजर्व लाइन से होकर नॉनस्टॉप ट्रेनों को निकाला जाता है। समर स्पेशल ट्रेनें बढ़ने पर और भी परेशानी खड़ी हो जाती है, जिसे देखते हुए 6.5 साल पूर्व तीसरी रेल लाइन का प्रस्ताव तैयार हुआ था। ये लाइन बनने से श्रोताओं, कैंट स्टेशन में ना रुकने वाली सभी ट्रेनें निकलेंगी और इससे आउटर पर ट्रेनों को 5 से 10 मिनट भी करीब करीब नहीं रोकना पड़ेगा।

श्रोताओं, अगली सूचना सुनते हैं इस संदेश को सुनने के बाद।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आसपास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, बात कर लेते हैं मौसम की। ताज नगरी में अब सूरज और भड़केगा, तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी और लू भी चलेगी, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा। शनिवार से तापमान में बढ़ोतरी की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने 22 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 6 दिनों में गर्मी अपने चरम पर होगी। 19 मई तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि इसके बाद 22 मई तक 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार जताए गए हैं। इस दिन तक अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। इस दौरान रात के तापमान में भी बढ़त देखने को मिलेगी और यह करीब 5 से 6 डिग्री बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो सकता है। यानी दिन के साथ रात को भी गर्म लपटें झेलनी पड़ेंगी और

दोपहर में तो निकलना मुश्किल ही होने वाला है। श्रोताओं, जब पारा तेज होता है, तेज धूप होती है, दोपहर में गर्म हवाएं चलती हैं, शाम तक राहत नहीं मिलती है, तो बहुत ही ज्यादा तापमान महसूस किया जाता है। और श्रोताओं, इस तापमान से के अधिक होने पर पसीना और नमक शरीर से निकलता रहता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, सीधे धूप के संपर्क में आने पर दिमाग पर भी असर पड़ता है, हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। इसलिए अधिक तापमान में खुले में जाने से बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी है तो आप सिर ढककर, सिर पे अंगोछा या तौलिया लपेट कर जाएं, छाता लगा कर जाएं। इसके अलावा श्रोताओं, लगातार बिना प्यास लगे भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। नींबू पानी, शरबत, छाछ, लस्सी, दही और आम का पना पिए। मौसमी फल, तरबूज, खरबूज, खीरे, ककड़ियां और प्याज भी खाएं। ढीले पूरे शरीर को ढकने वाले हल्के रंग के कपड़े पहनें, सिर को ढककर रखें, छाता लगाकर चलें और पानी अपने साथ हमेशा रखें। घर की खिड़की दरवाजों को समयानुसार खोलें। एयर कंडीशनर को लगातार चलाना जो है वो श्रोताओं खतरनाक है, उसको ब्रेक देते रहें। अपने एसी की आउटडोर यूनिट को धूप से बचाएं। इसके अलावा श्रोताओं, बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवतियों को खुले में बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। और श्रोताओं, अगर हीट स्ट्रोक की बात करें तो इसके लक्षण होते हैं कि शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाता है, बेहोशी आ जाती है, साथ ही हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। अगर ये लक्षण महसूस करें मरीज के, तो मरीज के शरीर पर गीला कपड़ा लपेटकर पंखे में लिटाना चाहिए। शरीर पर थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, बहुत ठंडा पानी न डालें। और पानी डालने से श्रोताओं, शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। और उसके साथ ही श्रोताओं, डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करना चाहिए। अगर हीट स्ट्रोक ज़्यादा गंभीर है तो श्रोताओं, कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और उसका नंबर इस प्रकार से है, आप नोट कर सकते हैं। शासन के द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम का नंबर है 0562-260-0412। मोबाइल नंबर है 9458569043। नंबर एक बार पुनः नोट करें, 0562-260-0412 और 9458569043। श्रोताओं, जब हम गर्मी की बात कर रहे हैं, अधिक तापमान की बात कर रहे हैं, तो शरीर के साथ साथ श्रोताओं, वाहनों की भी बात कर लेते हैं। अधिक तापमान में वाहनों को छायादार स्थानों में रखना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं, अधिक तापमान का असर वाहनों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। खुले में रखने पर इंजन और बॉडी लगातार गर्म होती है और इंजन को स्टार्ट करते ही तापमान कई गुना अधिक हो जाता है और ऐसे में आग लगने का खतरा रहता है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तारों में शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। टायरों में अधिक प्रेशर यानी हवा रखने पर उनके फटने का खतरा भी श्रोताओं बना रहता है। इसके अलावा श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का जो चलन बढ़ गया है, काफी अधिक हो गया है, उसमें बहुत श्रोताओं सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों को धूप में हमें खड़ा करने से बचाना चाहिए। धूप में बैटरी गर्म होने से आग का अधिक खतरा रहता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं, उनको चलाने के बाद तुरंत उनकी बैटरी चार्ज करने से आप बचें। और क्षमता से अधिक वजन और तेज रफ्तार में वाहन चलाने से बचें। जो आपका इलेक्ट्रिक वाहन है, उसकी बैटरी, वायरिंग और कनेक्शनों की समय समय पर जांच कराते रहें। और श्रोताओं, अधिकृत सर्विस सेंटर पर ही आप सर्विस कराएं और कंपनी के पार्ट्स डलवाएं, क्योंकि श्रोताओं, ये कराने से हमें परेशानी का सामना बहुत ही कम करना पड़ता है। तो श्रोताओं, जो मौसम में बदलाव आ रहा है या आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अगर इन सुझावों पर अमल करें तो हम आने वाले खतरों से बच सकते हैं।

और श्रोताओ, बात दिल की चल ही रही है तो आपको बता दें कि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, यानी विश्व रक्तचाप दिवस। तो श्रोताओ, वैसे तो आज के समय में सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी श्रोताओ, अपने रक्तचाप को नियंत्रित रखिए, उसको बढ़ने मत दीजिए। अत्यधिक वसा युक्त या चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों, जंक फूड का सेवन ना करें। हरी सब्जियां अधिक खाएं, मौसमी फल खाएं, नमक का सेवन करें। और श्रोताओं, कोई भी काम ऐसा ना करें कि जिससे आपके हार्ट पर, जिससे आपके दिल पर दबाव पड़े। आज की तारीख में सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो श्रोताओं, इस विश्व रक्तचाप दिवस पर आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपकी सेहत का दुश्मन है, और उस पर नियंत्रण कर आप अच्छी जीवन शैली अपनाकर अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं।

0: और श्रोताओं, चलते चलते गुमशुदा संबंधी सूचना। पहली सूचना इस प्रकार है, गुमशुदा का नाम उषा, उम्र 26 वर्ष है। श्रोताओं, ये 23 सितंबर से लापता है। इनकी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर संपर्क करें, विजय सिंह पुत्र किशन लाल, थाना मलपुरा, जनपद आगरा। दूसरी सूचना इस प्रकार से है, गुमशुदा का नाम है संजू देवी, उम्र 36 वर्ष है और ये धनौला से थाना निवोरा, जनपद आगरा से लापता है। इनकी सूचना मिलने पर कृपया थाना निवोरा, जनपद आगरा पर संपर्क करें। इसी के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम आसपास
1: से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा

0: आया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से

गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून अविश्वास

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
2: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम

0: मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management,

0: की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया है। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, पानी के बंदोबस्त, साफ तवानाई, हिफ्जाने सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन का जायजा लिया।
1: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
0: तरजीही शोबों में वसी इश्तराक के लिए कई समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी तक ले जाने का ऐलान करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान ताल्लुकात में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है और उन्होंने नीदरलैंड को भारत का एक कलीदी यूरोपीय शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, मुश्तरका जमहूरी अकदार, मजबूत माशी तआवुन और अवाम से अवाम के दरमियान गहरे रिश्तों पर मबनी है।
1: हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए।
0: नीदरलैंड के वजीर आजम रॉब जिटन ने भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया और माशी और कलीदी शोबों में मजबूत तआवुन की हिमायत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। ये दौरा भारत और स्वीडन के दरमियान वसत पा रहे इश्तराक के लिए एक तारीखी संगे मील साबित होगा। जनाब मोदी बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने की खातिर स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत करेंगे और बाहमी बातचीत को तिजारत को बढ़ाने के साथ साथ मस्नूई जहानत, AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और अवाम के दरमियान रिश्तों और कार्रवाई माहौल दोस्त बदलाव की जानिब मुंतकली को बढ़ाने के लिए तआवुन के नए मौके तलाश किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म सनद के लिए यूरोपियन गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जो यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डर लायन के साथ एक सरकर्दा पैन यूरोपियन सरबराहों का फोरम है। ये बातचीत वजीर आजम के वसी यूरोपी दौरे के तीसरे मरहले का एक हिस्सा है और जनवरी 2026 में हुए भारत यूरोपियन आजाद तिजारती मुआहदे FTA के बाद से खित्ते का ये पहला दौरा है। ये दौरा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने की गरज से तैयार किया गया है और इसका मकसद तेजी से बढ़ती हुई तब्दीलियों और पेचीदा जोग्राफियाई चैलेंजों के दौर में तआवुन का पता लगाना है। ये दौरा इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी के रुझान के बाद हो रहा है, जहां दो तरफा तिजारत साल 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अमरीकी डॉलर हो गई और साल 2000 से 2025 के दरमियान भारत में स्वीडन के रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 2.825 अरब डॉलर्स रहा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: स्वीडन जो दुनिया की सबसे ज्यादा इख्तराई मईशतों में से एक है, भारत के डिजिटल पूल के साथ कुदरती हम आहंगी तलाश कर रहा है। फिलहाल 280 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि 75 भारतीय फर्म स्वीडन में कायम हो चुकी हैं। इस दौरे की एक खास बात वज़ीरे आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर के साथ यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस बराए सनद से मुश्तरका तौर पर खिताब है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन सनती इंजमाम की तरफ बढ़ते हुए एक मरकजी सुतून में तब्दील हुआ है। इन ताल्लुकात की जड़ें 2009 के दिफाई ताउन के मुहिदे और 2019 के जनरल सिक्योरिटी मुहिदे में पेवस्त हैं। मसनूई जहानत, AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन इस शराकतदारी की बुनियाद फराहम करता है। इसके अलावा दोनों ममालिक खलाई तहकीक में भी ताउन कर रहे हैं। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए आलात फराहम कर रहा है। आखिर में वजीर आजम का गोटेनबर्ग का दौरा तारीखी एतमाद को मुस्तकबिल के लिए तैयार अहदाफ से जोड़ता है। गोटेनबर्ग स्वीडन से साक्षी सिंह

0: रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत और स्वीडन के दरमियान तिजारत और आवाम से आवाम के दरमियान राब्तों की विरासत है जो एक सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित है और इसकी जड़ें बाहमी एहतराम, पुरअमन बका और अहिंसा के नजरिए में पेवस्त हैं। इस गहरे ताल्लुक की निशानदेही नोबेल इनाम याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर के साल 1926 के स्वीडन दौरे के 100 साल मुकम्मल होने से होती है। आज ये ताल्लुकात सकाफती बुनियादों से आगे बढ़कर जामे सनती इक्तसादी शराकतदारी में बदल रहे हैं। कीमती धातुओं पर इजाफी कस्टम ड्यूटीज आयद करने के कुछ ही दिनों बाद हुकूमत ने अब चांदी की दरामद में कटौती की है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टोरेट जनरल DGFT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि चांदी पर सोने का पानी चढ़ी चांदी और प्लेटिनम समेत चांदी पर दरामदी पॉलिसी को फौरी तौर से आजाद से पाबंदी शुदा के जुमरे में तब्दील किया गया है। हुकूमत ने बुध के रोज कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। पाबंदियां आयद किए गए जुमरे की अशिया की दरामद के लिए हुकूमत की लाइसेंस की जरूरत होती है। दिल्ली हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए कौमी दारुल हुकूमत में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैल्यू एडिड टैक्स को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला किया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कनेक्टिविटी और माशी सरगर्मियों को मजबूत बनाने पर जोर देने से मुताबकत रखता है, जिसका मकसद शहरी हवाबाजी के शोबे को राहत फराहम करना, सियाहत और लॉजिस्टिक्स से मुतालिक सरगर्मियों को फरोग देना है। वजीर आला ने बताया कि ये रियायती शरह आइंदा 6 माह तक नाफिज रहेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महकमा आसार कदीमा ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में वाके भोजशाला कॉम्प्लेक्स इमारत में हिंदुओं को पूजा पाठ और दीगर मकासद के लिए बिला रुकावट रसाई की इजाजत दे दी है। महकमा आसार कदीमा का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले में भोजशाला को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: महकमा आसार कदीमा के हुक्मनामे का हवाला देते हुए एक अफसर ने बताया कि भोजशाला मंदिर के अलावा संस्कृत जबान, कवायद और अदब सीखने सिखाने और तहकीक का मरकज भी रही। अफसर ने मजीद बताया कि हिंदू बिरादरी के सरस्वती देवी की पूजा और सीखने सिखाने के कदीम तरीक़ेकार से ताल्लुक की बिना पर उन्हें कॉम्प्लेक्स में बिला रुकावट रसाई की इजाजत होगी। इससे पहले जुमे के रोज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया था और कहा था कि मरकज और ASI इसके इंतजाम व इंसराम तय कर सकते हैं। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 7 अप्रैल 2023 के महकमे आसार कदीमा के उस हुक्मनामे को भी कलदम करार दिया जिसमें मुसलमानों को हर जुमा को भोजशाला कॉम्प्लेक्स में जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत थी। दलाइल की समाअत कर रही बेंच ने यह भी कहा कि मुसलमान बिरादरी जो ASI के तहफ़ वाली 11वीं सदी की इमारत को कमाल मौला मस्जिद मानती है वो ज़िले में मस्जिद की तामीर के लिए अलहदा ज़मीन अलाटमेंट की खातिर रियासती हुकूमत से रुजू कर सकती है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी।
1: CBI ने नीट पेपर लीक केस के सिलसिले में पुणे से एक और अहम मुलजिमा को गिरफ्तार किया है। मुलजिम प्रोफेसर मनीषा मंधारे पुणे में एक कॉलेज में बॉटनी के उस्ताद हैं। CBI के मुताबिक कौमी जांच एजेंसी ने इम्तिहान के अमल में एक एक्सपर्ट के तौर पर उनका तकर्रुर किया था। इससे पहले 14 मई को एक और मुलजिमा मनीषा वाघमारे को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुलजिमान को पुणे की एक अदालत में पेश किया गया था और बाद में मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस तीर्थांकर घोष की एक डिवीजन बेंच की जानिब से RG कर मेडिकल कॉलेज अस्मतदरी और कत्ल केस की समाअत की जाएगी। इससे पहले इस हफ्ते जस्टिस राजा शेखर मांथा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने ज्यादा मसरूफियत का हवाला देते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया था। इस केस में संजय राय जनवरी 2025 में उम्र कैद की सजा पाने वाले वाहिद मुजरिम है। मुतवफी डॉक्टर की वालिदैन ने कोलकाता की सियालदा अदालत में एक केस किया था जिसमें उन्होंने TMC के साबिक MLA निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और घोला पुलिस स्टेशन के उस वक्त के इंचार्ज की गिरफ्तारी की अपील की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026

0: के नफाज के जरिए भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ की वजारत की तरफ से शाये करदा एक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में तरमीम की गई है। एक मुल्क एक चुनाव बिल से मुतालिक मुश्तका पार्लियामानी कमेटी ने कल सियासी पार्टियों, कानूनी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ बेंगलुरु में वसी तर तबादला ख्याल किया। बाद में अखबार नवीसों को जानकारी देते हुए कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों के अपने दौरे के दौरान मुश्तका पार्लियामानी कमेटी की तरफ से एतराजात और सिफारिशात जमा की जा रही हैं। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेंडो और डेनियल मार्टिन से जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी मलेशिया के गो ज़ीफी और नूर इजुद्दीन को हराकर फाइनल में पहुंची है। टेनिस में आलमी नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में रोम के कैंपो सेंट्रल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। आज फाइनल में सिनर का मुकाबला कैस्पर रूट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे की खबर को सफ़े अव्वल की शहसुर्खी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म कल एम्स्टर्डम पहुंचे जहां भारतीय बिरादरी ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जंग और बढ़ती आलमी गैर यकीनी कई दहाइयों की तरक्की को उलट सकती है और बड़ी आबादी को दोबारा गुर्बत में ढकेल सकती है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तमिलनाडु में वुज़रा में कलमदानों की तकसीम से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक वजीर आला जोसेफ विजय ने दाखला और आम इंतजामिया जैसे अहम महकमे अपने पास रखे हैं। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के उस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटियों की तालीम सिर्फ खानदान ही नहीं बल्कि समाज और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद होती है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। वजीर आजम मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज क्वेटनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वजीर आजम स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्रों से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म सिलसिला से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में जावेद अख्तर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है शिव हरी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में फिल्म एक दूजे के लिए से, शब्द रचना आनंद पक्षी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संतोष आनंद की रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म प्रेम रोग से। आवाज है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ये वादा रहा से गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे गुलशन बाबरा ने, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं गुलशन बाबरा की रचना आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में फिल्म अगर तुम न होते के लिए इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म अगर तुम ना होती से गीत, जिसे गाया था किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने, धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है।

0: आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है। इनमें कृषि की खास भूमिका है। ऐसे में देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में योगदान देकर देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश गेहूं, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। औद्यानिकी के क्षेत्र में भी देश के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश की इस उपलब्धि ने युवा पीढ़ी को बागवानी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया है। आज काफी संख्या ऐसे युवाओं की है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद स्टार्टअप के तौर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कैसे वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा। मनीष जी, सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?
3: सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो आपने प्रश्न उठाया बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। पूरे देश में न सिर्फ कृषि में बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे कि मेडिकल रिसर्च जिसमें ICMR, इंडस्ट्रियल रिसर्च है जिसमें CSIR और जो कृषि का शोध है जिसमें कि ICAR,

0: जैसे संस्थान रोज नवाचार कर रहे हैं और नई नई तकनीक का विकास कर रहे हैं। इन तकनीकियों के माध्यम से स्टार्टअप का बहुत सारा सृजन हो रहा है। अब भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का देश है
1: जी।
0: और लगभग समय 5000 स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप काम कर रहे हैं, बहुत बड़े जैसे कि देहात है, निंजा कार्ड है, ऐसे तमाम स्टार्टअप आज इस देश में विकसित हैं। और ये तब संभव है जबकि कृषि तकनीकी नवाचार के माध्यम से विकसित हो गई हैं और इनके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का, डिजिटाइजेशन का, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, AI लेड प्रिसीजन फार्मिंग का एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया है।
1: जी मनीष जी, एक खास रुझान जो देखने को मिल रहा है कि जो आजकल के युवा हैं वो पढ़ाई करके हायर स्टडीज करने के बाद भी जॉब करने के बजाय कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कोई युवा अगर स्टार्टअप के तौर पर कृषि को अपनाना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है?
0: कृषि आज भी इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और जो स्टार्टअप की संभावनाएं हैं जो वो सबसे बड़ी कृषि में है। तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके, उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा में उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में बहुत सारे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM में बहुत सारे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको तकनीक के माध्यम से, आपको फंडिंग के जरिए, आपको तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप एक स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी युवा किसी भी जगह जहां भी रहता हो पूरे देश में, वो अपने पास का जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसको संपर्क कर सकता है, उसके माध्यम से एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।
1: जी, खासतौर से अगर फसलों की बात करें कि एक रूटीन जो हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उनके अलावा भी बहुत तरह की फसलें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो आमदनी को बढ़ाती हैं, तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और उनकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में?
0: मुझे लगता है कि सारी फसलें आपकी अच्छी होती हैं, उसमें कोई फसलों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या है डिमांड और सप्लाई का जो गैप होता है उसका अध्ययन करना जरूरी है। किसी भी जगह में आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है। कहीं भी बहुत बड़ा देश है तो उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अलग अलग होती है, तो एक जवाब तो उसके लिए मुफीद नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी फसलों को नेट हाउस कंडीशन में उगा सकते हैं जबकि वो सामान्य दशाओं में उगाई नहीं जा सकती, तो उनमें आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे किसान खीरे की खेती करते हैं एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, टमाटर की खेती करते हैं, अन्य सब्जियों की खेती करते हैं जिनको उनको अतिशय लाभ होता है। तो ऐसी फसलों के चुनाव के लिए क्या करना होगा कि आपको वहाँ के जो किसानों का जो भी वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, चाहे वो ICR का हो या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और उनसे एक पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि इस समय में इस वातावरण में मैं कौन सी ऐसी खेती कर सकता हूँ कि मुझे अधिक लाभ हो। तो इसके लिए जो है एक मतलब एक सामान्य उत्तर नहीं हो सकता कि पूरे देश में कौन सी फसल फायदेमंद होगी, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों पे निर्भर करेगी।
1: मनीष जी, आपका खास जुड़ाव आम के रिसर्च से है, आपका इंस्टीट्यूट में आम को लेकर काफी काम होता है और UP में खासकर मलिहाबाद का दशहरी आम या प्रदेश के अन्य हिस्सों में जो आम की फसल है वो एक्सपोर्ट भी होती है और बहुत फेमस भी है, तो अगर इससे जुड़ना चाहते हैं युवा तो वो कैसे शुरुआत करें?
0: जो मलिहाबाद का दशहरी आम है ये विश्व का बहुत प्रख्यात आम है और इसको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 125 GI 125, यानी कि इस तरह का आम मलिहाबाद के किसान या आसपास के किसान ही उगा सकते हैं और कोई नहीं उगा सकता, और इसकी मार्केटिंग और इसकी ब्रांडिंग और इसका प्रमोशन और इसका एक्सपोर्ट पे तमाम सारी CISS लखनऊ ने पहल की है। ये आम पिछले वर्ष यहाँ से समुद्र के माध्यम से सिंगापुर तक भेजा गया जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और इस फसल को इससे पहले भी हम लोगों ने अमेरिका में भेजा था एयर के रूट से और वहाँ भी लोकप्रिय हुआ। तो इसकी अपार संभावनाएं हैं, युवाओं को चाहिए कि इस बहुत ही खूबसूरत फसल के साथ जुड़े और इसको बहुत बढ़ावा दें क्योंकि इस पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय।

0: है।
1: जी मनीष जी, जो आम एक्सपोर्ट होते हैं, तो एक बड़ा हिस्सा उसका है जो मलियाबाद से जाता है, और जैसा कि आपने बताया कि जगह जगह पर निर्यात किया जा रहा है और काफी दूर तक इसने अपनी पहुंच बना ली है, तो इसमें बीते कुछ सालों में आप कितना सुधार लगता है कि आया होगा?
0: उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ पर कोई भी समुद्र की सीमा नहीं लगती। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप आम को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास एक वायु का माध्यम रह जाता है, और एयर का जो माध्यम होता है वो बड़ा महंगा होता है, करीब 450 रुपए किलो होता है उसका खर्चा आता है।
1: जी
0: अगर आप समुद्र से ले आते हैं तो वो बेहद सस्ता हो जाता है, यानी कि आपका 50, 60, 100 रुपए के। तो ये माध्यम सबसे बढ़िया माध्यम है अगर समुद्र से ले जाए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आप ले जाओगे वायु मार्ग से तो आपका 4 दिन में आम पहुंच जाएगा, 2 दिन में आम पहुंच जाएगा, लेकिन आप अभी समुद्र के मार्ग से ले जाते हैं तो वो लगता है 30 दिन 35 दिन। अगर आप दुबई पहुंचाना है तो कम लगता है, लेकिन अगर आप सिंगापुर ले जाओगे तो आपको लगभग 22 दिन 25 दिन लग जाता है, आपको आप रशिया ले जाओगे तो लग जाता है 30 से 32 दिन। तो ये समुद्र का मार्ग से ले जाने के लिए सबसे पहले क्या है कि आम की शेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो केंद्रीय उपज बागवानी संस्थान है उसने एक तकनीक विकसित की जिसको सी रूट प्रोटोकॉल कहते हैं, कि यानी समुद्र से ले जाएं तो उसका पूरा प्रोटोकॉल विकसित किया कि इस तरह से आम को आप तोड़ें, इस तरह से आम को उगाएं, इस तरह से आम को पैक हाउस में लाएं, ऐसे पैक करें, और इस तरह से अगर आम धीरे धीरे समुद्र में जाता है तो 30 दिन 35 दिन आराम से आम रहता है। तो ये बहुत बड़ी संभावना जो है पिछले कुछ सालों में खुली है, जिसकी वजह से बहुत सारे निर्यातक अभी सामने आ रहे हैं, पूरे पूरे देश से आ रहे हैं सामने, और वो हमारी तकनीक का, हमारे प्रोटोकॉल का उपयोग करके विभिन्न देशों में आम को भेजा। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस तकनीक के द्वारा हमारा आम जो है पूरे विश्व में जा।
1: जी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को क्या संदेश देंगे आप, जो मन बना रहे हैं कृषि के तरफ आने के लिए और वो चाहते हैं कि कृषि के माध्यम से वो आगे बढ़ें और अपनी आय को बढ़ाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
0: मैं तो ये कहता हूँ कि युवाओं के लिए कृषि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। पूरे दुनिया में सारे व्यवसाय में उतार चढ़ाव आ सकता है, कृषि में नहीं आ सकता, क्योंकि कृषि आपकी से उपजे हुए जो उत्पाद होते हैं आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, आपको रोज खाना चाहिए होता है, आपको रोज फल चाहिए होते हैं, आपको रोज सब्जियां चाहिए होती हैं, और इसमें अगर आप युवा आगे आते हैं तो उनके पास बेहद बड़े अवसर हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो खासतौर पर प्रोसेसिंग में आते हैं, जहां पर कि फलों को या अनाज को या सब्जियों को प्रोसेस करके और एक प्रोडक्ट फॉर्म में लाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट इस देश में भी है और जो कि बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, तो उसमें अपार संभावनाएं हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। मैं सारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि इस क्षेत्र में आएं और देखें कि किस तरह से आपका विकास हो।
1: जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: सामयिक चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
4: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना लता मंगेशकर और कमल बरूद की आवाजों में फिल्म पारसमणि से। गीत के बोल लिखे थे असद भोपाली ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं आशा भोंसले और तलत महमूद का गाया फिल्म बहाना से एक गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का आगरा केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

श्रोताओं, भी जो गीत आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म मल्हार से। आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, शब्द रचना कैफ इरफानी की थी और संगीत रचना थी रोशन की। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी की रचना रोशन की, संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में गाए इस गीत को हमने लिया है फिल्म ममता से।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 106.1 मीटर पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संजय उपाध्याय के स्वर में कुछ लोक रचनाएं।

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संजय उपाध्याय के स्वर में कुछ लोक रचनाएं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम लोक रचना।

श्रोताओं, संजय उपाध्याय की गई श्लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्रों से बोल रहे हैं। निजामय 196.1 मीटर पर स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति थी फिल्म दीवाना से। आवाजें थी कुमार सानू और साधना सरगम की। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

श्रोताओं, ये थे लता मंगेशकर और उदित नारायण और उनके साथी फिल्म दिल तो पागल है में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत रचना उत्तम सिंह की थी। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू का गाया फिल्म आशिकी से ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी जो गीत आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म आशिकी से। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म साजन से एक गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत आप सुनेंगे संदेश के बाद।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू का गाया फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर।

0: चलने दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अकील अहमद खान का हयाल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग हिंडोली ललित। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं प्रभात कुमार वशिष्ठ।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अकील अहमद खां का ख्याल गायन राग हिंडोली ललित में। तबले पर संगत कर रहे थे प्रभात कुमार वशिष्ठ। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: 111
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, हम सब जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पवन ऊर्जा का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, भारत की बदलती और मजबूत होती स्थिति क्या है और क्या नए बदलाव हो सकते हैं उसका उल्लेख किया है। आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें पवन ऊर्जा का उल्लेख है।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। यह हमारी पवन शक्ति है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टि ही वायुर्वै समष्टि है। अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों,

गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूअल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सब की भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव

0: इसमें हम सब की भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है।
1: तो इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए पवन ऊर्जा को थोड़ा और समझते हैं, इस बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञों को। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में, साथ ही आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक भी हैं। डॉक्टर प्रबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद धन्यवाद नीलम
1: जी। और साथ ही हमारे हैं यहाँ पर अतिथि ओम तनेजा जी, आप उद्यमी हैं और आपका अनुभव जो है पवन ऊर्जा क्षेत्र में है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय रूप से आप शामिल रहे हैं और भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम जी।
3: धन्यवाद।
1: जब हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, जिसमें से कुछ तकनीकी प्रश्न हैं, कुछ व्यवहार से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत के लिए हम यही जानना चाहेंगे कि हवा से तो हम सबका रिश्ता है, लेकिन हम इसे ऊर्जा क्यों कहते हैं, पवन ऊर्जा का सही अर्थ क्या है, और ये मैं जानना चाहती हूँ प्रबीर जी आपसे।
2: ऊर्जा हम उसी को कहते हैं जो हमारे लिए कोई भी काम को सहज कर दे या कोई भी काम को करने में हमारा सहायता करे
1: जी।
2: तो उसमें पवन ऊर्जा एक प्रमुख ऊर्जा है और इनफैक्ट ये बहुत ही पुराने हैं। अगर हम मानव के इतिहास में देखें कि कौन सा ऊर्जा को हम पहले इस्तेमाल करना सीखे तो पवन उसमें से अग्रणी है। पुराने जमाने में पहले पवन के माध्यम से हमारा जहाज चला करते थे, पवन के माध्यम से पवन चक्की चलाया करते थे जिसमें उन्होंने ग्राइंडिंग करना शुरू किया। बट अभी मॉडर्न एज में हमने वही पवन को इस्तेमाल करके उससे हम बिजली बनाते हैं, और बिजली ऊर्जा हमारा क्या सहायता करता है ये शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर घर में प्रति क्षण हम बिजली का उपयोग करते हैं
1: जी।
2: तो वही बिजली हम पवन से बनाते हैं तो वही ऊर्जा फिर हमारा प्रति काम में हमें सहायता देती है
1: जी। इसलिए हम पवन की जो शक्ति है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं जी। हमने अक्सर वीराने में विशाल पंखे घूमते हुए देखे हैं और कई बार मन में सवाल आता है कि ये कैसे काम करते हैं, यहाँ एकदम वीराने में सुनसान जगह में इनकी देखरेख कैसे हो रही है, ये यहाँ पर क्यों है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ओम जी, जो शुरुआत है पवन ऊर्जा की वो कैसे होती है, जिन्हें हम टर्बाइन कहते हैं या विशाल पंखे कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं।
3: अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि ये पवन ऊर्जा कब से कहां से शुरू हुई है। ये असल में 1960 के दशक से ये कुछ हमारे साइंटिस्ट थे CSIR के और नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज के, जिन्होंने शोध करके हमारे यहाँ पवन ऊर्जा कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसके ऊपर कार्य किया जाए, उसमें किया था। तो पवन संसाधन जो है उसके लिए हमारी एक साइंटिस्ट थी अन्ना मनी जी, जिन्होंने बहुत कार्य करके और पूरा उसका जो है एक संकलन किया है और उस संकलन को उन्होंने 5-6 वॉल्यूम्स में डाल के और जो आज के दिन हमारे लिए एक किस्म से बाइबल जिसे कहते हैं वो है। पर उसके बाद उसके ऊपर बहुत काम हुए हैं, वो अलग चीज है, बट एक शुरुआत का जो था वो उनका था। हमारे यहाँ गुजरात में सबसे पहला जो है 1985 में एक पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया, और समय के साथ सरकार ने इसमें कई बदलाव किए। हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना था जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंदर था, उसके बाद उसका नाम बदल के हमने MENS किया और उसके बाद आज के दिन वो MNRE कहलाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसका नाम है। ये 2006 से इसका नाम ये प्रचलित है। अब भारत में इस नवीनकरणीय ऊर्जा जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है
1: जी।
3: पवन ऊर्जा का जनरली फॉसिल फ्यूल या जिसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल हुआ
1: जी,
3: या और इस तरह के जो उनके साथ मिलते जुलते हैं, इनके आयात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का एक प्रभावी समाधान माना गया है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ, गैर प्रदूषणकारी और सस्ती ऊर्जा स्रोत है जो ईंधन और परिवहन पर निर्भरता को कम करती है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या हरित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसमें एक खास

0: बात है कि हमें इसके अंदर पानी का उपयोग भी बहुत कम करना पड़ता है। पानी का उपयोग जो है खाली कुछ एक कार्यों के लिए ही किया जाता, सफाई वगैरह के लिए। अब इसका जो नीतिगत विकास हुआ है वो 1993 में हमारे मंत्रालय ने एक फिक्स टैरिफ बनाया था 2.25 रुपए का, जिसमें प्रति वर्ष 5% वृद्धि का प्रावधान था, और उसके साथ साथ ही एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो एक ऐसा था कि आप जो भी कमाई करते हैं उसके अंदर जो उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता था वो 80% तक का था उस समय, और उसमें जो है पहले 100% था, फिर उसको 80% कर दिया गया था, और जिसके लिए खुदरा निवेशकों को जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया। पवन ऊर्जा जनरेशन के लिए या उसके उत्पादन के लिए हम ये विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल करते हैं
1: जी,
0: जो हमारे उस जगह पर जहां हमें हमारी स्टडी या हमारे एक किस्म से उसका अध्ययन किया जाता है
1: जी,
0: जो ये बताता है कि किस जगह पे हमें हवा का पवन का ज्यादा जोर मिलेगा
1: जी,
0: जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कर पाए
1: जी।
0: तो हमने एक स्टडी करते हैं, उस स्टडी के हिसाब से जगह ढूंढते हैं कि किस जगह पर हमें इसको लगाना
1: जी।
0: अब आप जब लगाना चाहते हैं तो उसके लिए विंड टर्बाइन्स जो बनाते हैं उनसे संपर्क करते हैं, और उनके हिसाब से कि हमें किस जगह पर कितना जनरेशन मिलेगा इसका अध्ययन पूरा उसका किया जाता है, जिसके लिए अच्छी खासी साइंटिफिक स्टडी
1: जी। तो इस बारे में हम और भी जानेंगे। अब ये बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं?
0: आई थिंक मेरे हिसाब से ये हवा के साथ साथ
1: जी, हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है, यही गाना हम सुनवा रहे हैं।
2: हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटा के संग संग,
3: संभलना,
2: हवा के साथ साथ,

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में जो बता रहे हैं पवन ऊर्जा कैसे हासिल होती है, इसका महत्व क्या है और बदलते दौर में किस प्रकार से हम अपने काम करने के तरीकों को और भी अच्छा बना रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर भी हैं और साथ हैं ओम तनेजा जी जो उद्यमी हैं और पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्य करते रहे हैं। तो प्रबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की तो हमने अक्सर बड़ी बड़ी टर्बाइन्स को देखा है, मन में सवाल आता है कि वीराने में ये खड़ी हैं, कैसे काम करती हैं, एक पूरा तंत्र क्या है, हम चाहेंगे कि आप हमें इस बारे में बताएं।
1: धन्यवाद नीलिमा जी, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगा।
0: जी,
1: शायद आप अपने बचपन में कागज से छोटे छोटे पंखे बना के उसको कहीं पे जहाँ पे हवा चलता है वहाँ पे रखे होंगे तो वो घूमते हुए नजर आए होंगे।
0: जी,
1: इनफैक्ट मैंने अपने बचपन में बरगद की जो पत्ते होते हैं उसको दोनों साइड से एक विशेष भाव से काट के उसके अंदर एक दिन आप उसको

0: फिर
1: तीली
0: उसका
1: लगा के
0: पंखा
1: रखी
0: बनाते
1: है
0: हैं।
1: तो ये अपने आप घूमने लगता है जब आपका हवा चलता है। तो इसे पीछे का जो विज्ञान है वो ये है, उसको एरोडायनामिक्स बोलते हैं इंग्लिश में।
0: जी
1: जो आपने अक्सर इवन हवाई जहाज का पंखों में वो देखा होगा वो शेप, तो उसी शेप में ये जो विंड टर्बाइन्स होते हैं उसको हम ब्लेड बोलते हैं। जो पंखा आप बताए उन्होंने
0: जी
1: तीन पंखे होते हैं उसमें, ये तीन ब्लेड उसी संरचना के साथ बनते हैं जो हवाई जहाज के पंखे होते हैं। तो ये कि उसको एक विशेष एरोडायनामिक शेप देता है
0: जी
1: जिसके वजह से जब हवा चलता है वो हवा का जो शक्ति है वो इसको घुमाने लग जाते हैं।
0: जी
1: और कभी भी बिजली पैदा करने के लिए हमें जो जनरेटर है उसी जनरेटर के अंदर जो स्टार्टर है या रोटर है उसी को घुमाने के लिए आपको शक्ति चाहिए। वो पंखा जब घूमता है तो वही घुमावट का जो शक्ति है वो जनरेटर में जाता है और जनरेटर से बिजली पैदा होता है। फिर वही बिजली को फिर हम ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर वही शक्ति हमारा घर पे बिजली बन के हमारा जो आमतौर के जिंदगी में हमारा डेली लाइफ में हमारे लिए, चाहे आपका लाइट हो, घर का पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो,
0: जी
1: वो हर जगह पे काम करता है।
0: जी तो ये जो पवन चक्कियां हैं अल्टीमेटली ये बिजली आपूर्ति हमारे घरों में कर रही हैं और इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी टीम काम करती है और मंत्रालय जो है इससे जुड़ी हुई नीतियों को देखता है। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर टर्बाइन्स जो हैं, पवन चक्कियां जो हैं, इसमें प्राइवेट क्षेत्र काम करना चाहे तो किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, क्या नीतियां हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और इनफैक्ट आज हम देख प्राइवेट सेक्टर ही इसको ड्राइव करता है।
0: जी
1: शुरुआती दिनों में जैसे तनेजा जी ने भी बताया, हमारा बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम जहाँ पे गवर्नमेंट से सहायता दी जाती है वो तकनीकी रूप से हो या आर्थिक सहायता के रूप से हो, तो मंत्रालय के जो शुरुआती दिनों थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय पहले जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नया था तो इसको डेमोंस्ट्रेट करने की जरूरत थी कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वेदर इट विल बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट। तो उसी समय मंत्रालय उसको आर्थिक सहायता भी देता था, फिर कुछ नीतिगत सहायता मिला, उसको हम जीबीआई कहते हैं, जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। जैसे आप एक जेनरेटर है तो जितना यूनिट आप ग्रिड को देंगे हर यूनिट के लिए आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा। बट ये सब सहायता 2017 के बाद बंद हो चुके हैं क्योंकि तब तक विंड एनर्जी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में उभर चुका था। तो 2017 के बाद आज के डेट पे जो नीति है गवर्नमेंट का उसको हम बिडिंग रेजिम कहते हैं।
0: जी
1: मतलब इट इज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। जितना हमें बिजली चाहिए होता है मंत्रालय के तरफ से हमारा चार, हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहते हैं, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एसजेवीएन है। तो वो अपने प्रतिवर्ष बिडिंग लेके आते हैं कि उनको कितना मेगावाट का या कितना गीगावाट का पवन ऊर्जा चाहिए। देन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हमें लो टैरिफ सबसे ऑफर करता है
0: जी
1: वो प्रोजेक्ट उन्हीं को ही मिलता है। तो इसके कारण होता क्या है कि हमें बिजली सस्ते से सस्ते में मिलता है।
0: जी
1: जो हमारे डिस्कम को, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो स्टेट्स में काम करते हैं, और ये बिजली अल्टीमेटली उन्हीं को खरीदना पड़ता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर पे उसको उपलब्ध कराते हैं।
0: तो इसके लिए बिडिंग होती है।
1: बिल्कुल
0: जी। और मैं जानना चाहूंगी कि जगह का चुनाव कैसे किया जाता है कि कहाँ पर टर्बाइन्स जो हैं वो लगेंगी या इससे जुड़ी हुई रिसर्च कहाँ पर की जाएगी, तो उस जगह का चुनाव कैसे करते हैं?
1: हमें मंत्रालय को इसमें तकनीक सहायता देने के लिए हमारा एक सेंटर है जिसको हम, पहले इसका नाम था सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, सीवेट के नाम से शुरू हुआ था सन 2000 में। अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो चेन्नई में स्थित है।
0: जी
1: तो इसका जितने भी टेक्निकल काम है या मंत्रालय को जो टेक्निकल सहायता है वो उसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। और कौन सा क्षेत्र में पवन ऊर्जा का शक्ति ज्यादा है, जो वहाँ पे हमें पवन ऊर्जा या पवन चक्की बिठाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हम उसको बोलते हैं रिसोर्स असेसमेंट, जो कि मिनिमम एक साल का काम होता है। तो वहाँ पे हम मास्ट लगाते हैं, विंड मास्ट, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगा हुआ होते हैं, जैसे आपका एनीमोमीटर होता है विंड का स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड वेन होते हैं जो विंड का डायरेक्शन को मेजर करता है। और जब भी कोई पवन चक्की का प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें जो दूसरा एटमोस्फेरिक पैरामीटर से, जैसे कि आपका रेन गेज है, प्रेशर गेज है, क्योंकि एयर का कितना डेंसिटी है वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, तो ये सबका मेजरमेंट होता है एक साल तक।
0: जी
1: फिर उसी बेसिस में हमें पता लगता है कि इस साइट पे अगर हम पवन चक्की लगाते हैं तो हमें कितना उत्पादन होगा बिजली का, और उसी हिसाब से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा कि नहीं होगा। बट ये तो मैंने बहुत ही टेक्निकल रूप से समझाने की कोशिश किया, अगर एक लेमैन लैंग्वेज में भी हम पता कर सकते हैं, जैसे ये कहाँ पे मास लगाएंगे उससे पहले हम देख के भी बता सकते हैं कि कोई जगह यहाँ पे पवन है या नहीं है।
0: तो यानी जहाँ हवा का बहाव बहुत तेज होता है,
1: तेज होता
0: जहाँ
1: है,
0: हम महसूस कर पाए कि अक्सर यहाँ हवा चलती है,

0: कोई ऊंचा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो, आसपास खुली जगह हो,
1: बिल्कुल
0: तो उस हिसाब से हम जगह का चुनाव कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे
0: जी
2: मास्क लगाने से पहले हमारे इंजीनियर्स वहां पे जब जगह का भ्रमण करते हैं वो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, इवन पेड़ का भी शेप को देखते हैं।
0: जी
2: जहां पे कंटिन्यूअस विंड होता है आप वहां पे देखेंगे जो पेड़ होते हैं
0: वो झुक
2: वो
0: जाते
2: एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुका हुआ रहते हैं, तो वो एक प्राइमरी साइन है
0: जी।
2: किसी भी
0: इंजीनियर हवा की दिशा पता चलती है कि किस दिशा में प्रवाह ज्यादा होता है, तो फिर वो चक्कियों को उसी दिशा में लगाया जाता है। जी बहुत अच्छे से हमें एक छवि आपने दी है, बचपन से लेकर वैज्ञानिकों तक आप लेकर गए। अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं।
2: तो हम पवन की बातें करते हैं, तो हमारा पवन का उत्पादन सबसे ज्यादा सावन के महीने में ही होता है।
0: जी
2: ये शायद आपके श्रोताओं को जानकर एक अच्छी जानकारी होगी कि पवन हमारा जो 4 महीना होता है
0: जी
2: सावन का, उसी समय सबसे तेज चलते हैं और सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं।
0: वाह,
2: तो सावन का महीना।
0: जी सावन का महीना।
3: सावन का महीना पवन करे शोर,
4: सावन का महीना पवन करे शोर,
3: पवन करे शोर,
4: पवन करे शोर।
5: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
4: पवन करे शोर।
5: हाँ।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत है। और अब हम ये समझ गए हैं कि सावन के महीने में पवन करे शोर, तो ये जो शोर है पवन का, ये ऊर्जा उत्पादन के बहुत काम आता है और हमारे विशेषज्ञों ने हमें ये आज बताया है, क्योंकि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हैं जो कि उद्यमी हैं, पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी प्रबीर जी ने बताया कि ये आज तो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हम मान सकते हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप पवन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े, और उस वक्त क्या चैलेंजेस आपके सामने थे?
1: उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि ग्रीन एनर्जी की तरफ,
0: जी,
1: हरित एनर्जी की तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि जिस संस्थान में मैं कार्यरत था वहाँ थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से चलते थे, उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पानी से चलते थे, इन पर कार्य हो रहा था। तो हमारे एक निदेशक मंडल ने कहा कि हम लोगों को पवन ऊर्जा या सोलर ऊर्जा पे भी कार्य करना चाहिए।
0: जी।
1: तो उस समय पवन ऊर्जा पे हमने कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, उसमें किया, और ये देखा कि पवन ऊर्जा एक समय तक, लगभग जिसे कह सकते हैं कि 5 या 6 वर्ष के अंदर, हमें जो उस समय इसके टैरिफ थे, उस समय चीजें थी, 5 से 6 वर्ष के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने किया हुआ है, उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो देखिए, कोई भी एक उद्यमी रहता है, उसको अपना प्रॉफिट और ये भी देखना होता है। तो ये एक ऐसा उस समय उद्यम था जिसमें हमें लगा कि हम इसके अंदर कार्य करके दो तरह के काम कर रहे हैं। एक तो हम जो है जिस जगह अपना विंडमिल या ये लगा रहे हैं,
0: जी,
1: उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा, जो हमारा एक किस्म से CSR एक्टिविटीज हो जाती है।
0: जी।
1: उसी के साथ साथ ही हमें जो है और पवन ऊर्जा का जो है लाभ भी मिलेगा, और हम जो है इसको, और इसी विषय पे, इसी के प्रेरणा को साथ में रखते हुए हमने पवन ऊर्जा के अंदर कार्य शुरू किया।
0: जी।
1: और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ 60-70 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए। पावर प्रोजेक्ट लगाने में हमें थोड़ा समय लगा।
0: जी।
1: पर जो मंत्रालय या और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी सहायता से हमने बहुत जल्दी ही इस कार्य को प्राप्त कर लिया। और उस समय हमें जो है विभिन्न सरकारों के, उनका भी अच्छा हमें साथ मिला। मंत्रालय की जो उस समय की योजनाएं थी, जो एक किस्म से हम लोगों को फैसिलिटी थी, बेनिफिट्स थे, उन सब का भी हमें जो है भरपूर उपयोग किया, और हमने पाया कि हम जो है इस चीज के ऊपर अच्छा कार्य कर सकते हैं और कर रहे हैं, और शायद साथ साथ हम देश में जो है अपने प्रदूषण की समस्या का भी एक निदान ढूंढ रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, जहां हम अभी कार्बन उत्सर्जन को लगातार कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो, हम कम से कम आयात करें, ऐसे में हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसे अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, ऐसी ऊर्जा जिसका कभी अक्षय नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगी, उस पर हमारी डिपेंडेंसी रहे, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जितना हम समझ पा रहे हैं कि पवन ऊर्जा एक ऐसी चीज है जहाँ लगातार आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो आप देख सकते हैं, वो मैनेज करना है, ऐसे में अगर कोई नया उद्यमी जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर सकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
1: जैसा डॉक्टर प्रबीर ने बताया कि आजकल जो है
0: जी
1: बिडिंग का
0: जी
1: एक तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, वो उसमें भाग लेते हैं।
0: जी।
1: इससे पहले मैं आपको बताऊं, लगभग 70% तक जो इन्वेस्टमेंट हुई है एक छोटे उद्यमियों की रही है। इवन उसमें कुछ जो है ना इंडिविजुअल भी है, अकेले भी हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा कि कई कलाकारों ने अपना ये जो है इस क्षेत्र के अंदर अपना
0: इन्वेस्टमेंट
1: किया है, और वो जिसका 25 वर्ष तक जो है उनको

0: फायदा हो रहा है, उनके अपने इनकम टैक्स में फायदा हुआ है जो स्कीम वगैरह थी
1: जी।
0: और इसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र या जिन जगह पे लगा वहाँ भी बहुत ज्यादा अच्छा उत्थान हुआ है, बहुत अच्छी उस जगह का प्रोत्साहन मिला है। वहाँ अच्छे खासे जो है लोगों का, जिसे बोलते हैं नौकरियां या उनका कार्य करने का क्षेत्र बना है
1: जी, उन्हें रोजगार मिलता है,
0: रोजगार
1: इसकी वजह
0: मिलता
1: से।
0: रहा है। पवन ऊर्जा जहाँ कहीं भी लगती है, आपको मैं बताऊं चारों तरफ से मेन रोड से हर एक पवन चक्की के ऊपर चलने का एक रास्ता बनाया जाता है
1: जी,
0: और जो है उस रास्ते में लगभग कई बार वो रास्ता एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर का भी हो जाता है, तो रास्ते में कई उनको उद्यम जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको कुछ ना कुछ काम में मिल जाता है
1: जी।
0: उसके आसपास का क्षेत्र अच्छा डेवलप हो जाता है, अच्छा उसके अंदर उत्थान हो जाता है
1: जी। हम डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जिन्हें बोलते हैं, जो किसी एक मुख्य काम से जुड़ी रहती हैं परोक्ष रूप से, यानी पवन ऊर्जा की वजह से जहां टर्बाइन्स लगेगी वहां पहुंचने का रास्ता कोई तैयार करेगा, रास्ते में खाने पीने का सामान भी मिलेगा, फिर उस रास्ते पर वाहन भी आए जाएंगे, तो इसकी वजह से, परिवहन व्यवस्था की वजह से कई लोग जो हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, ये आप कह रहे हैं जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी ये है हमारे लिए। मैं अब प्रवीर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, पवन ऊर्जा, आपने बताया कि पवन चक्कियां चलती हैं और उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या इन पवन चक्कियों को कभी पवन की वजह से ही नुकसान होता है? कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान में पवन चक्कियां अपने स्थान से उखड़ गई या उनके ब्लेड्स प्रभावित हुए और उसके बाद बिजली उत्पादन कम हो गया, क्या ऐसा भी कभी होता है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पवन चक्कियां हैं वो ऐसे ही डिजाइन होता है ताकि वो जो आंधी तूफान को भी झेल जाए
1: जी।
2: तो आंधी तूफान में भी वो गिरे ना, बट हाँ बिजली उत्पादन थोड़ी देर के लिए शायद बंद हो सकता है
1: जी,
2: क्योंकि जो पवन चक्की काम करता है उसमें ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है कि जब पवन एक गति से आगे हो
1: जी
2: तो उसको वो बंद कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, गिरे ना
1: जी।
2: तो फिर जैसे पवन आंधी तूफान चला गया तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है
1: जी।
2: तो थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है, बट अभी तक आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा चक्रवात आया था अरबियन सी में, तो उसमें भी हमारा एक भी पवन चक्की नहीं गिरा था
1: जी।
2: तो वो ऑलरेडी डिजाइन में इनबिल्ट है। बट हैविंग सेड सो, ये जब मैं बोलता हूँ तो आपको ये भी शायद ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पे हमारा जो पवन है उसका गति इतना भी ज्यादा नहीं है जितना यूरोप में होता है, क्योंकि हम जो इक्वेटोरियल कंट्रीज होते हैं हमारा यहाँ पे पवन जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आपने सुना होगा
1: जी,
2: कि दिन में जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाता है और हमारा जो समुद्र है वो थोड़ा ठंडा रहता है
1: जी।
2: जैसे कि हम सबको पता है कि भारत जो है हमारा इक्वेटोरियल रीजन में हम रहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल कंट्री में होता क्या है कि हमारा पवन का गति इतना ज्यादा नहीं होता है, हमें सिर्फ सावन के महीने में जो हमारा मानसून होता है उसी समय ही हमें पवन का गति ज्यादा रहता है
1: जी।
2: बाकी सब महीनों में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण ही हमारा हवा तेज होता है, इसीलिए हमारे जो ज्यादातर पवन की संभावनाएं हैं वो कोस्टल स्टेट्स में ही है। तो ज्यादातर आज के डेट पे जो भारत में लगे हुए हैं पवन ऊर्जा की प्रोजेक्ट्स वो 8 स्टेट में ही सीमित है
1: जी।
2: अभी एक दो स्टेट में और अभी काम चल रहा है जैसे कि उड़ीसा, तो वहाँ पे भी शायद अगले 1-2 साल में आपको दिखेगा कि वहाँ पे भी लगा हुआ है
1: जी,
2: लग जाएगा।
1: ये कौन से 8 स्टेट हैं?
2: ये है हमारा सबसे आगे तो हमारा गुजरात है आज के डेट पे, उसके पीछे है तमिलनाडु, उसके पीछे है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देन मध्य प्रदेश
1: जी।
2: तो यही सब स्टेट्स है जहाँ पे ऑलरेडी अभी पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे साइक्लोन, तो हमारा इंडिया जैसे कंट्री में क्या है कि पवन जो है ये मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि कम है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज विंड स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड से लेके 7-8 मीटर पर सेकेंड तक होता है, तो इसको हम एक्चुअली मॉडरेट मानते हैं। तो ये विंड में हम टेक्निकली बोलते हैं कि क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 साइड्स है, तो जो क्लास 1 होता है वो सबसे बेहतर साइड्स होते हैं जहाँ पे पवन की गति बहुत ज्यादा है, और क्लास 3 साइड्स होते हैं जहाँ पे मॉडरेट है। तो हमारा जो विंड के साइड से वो मॉडरेट है, एट द सेम टाइम हमें साइक्लोन भी देखना पड़ता है
1: जी।
2: तो हमारे जो पवन चक्कियों को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है, तो उसका परिणाम होता क्या है कि हमें थोड़ी सी वो जो डिजाइन है उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा
1: जी।
2: बोलने का मतलब कि हमारा जो उसका टावर हो, गियर बॉक्स हो, ब्लेड हो, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं पवन चक्की का, वो सब एकदम मजबूत बननी चाहिए ताकि वो साइक्लोन को देख पाए, वो साइक्लोन में गिरे ना।
1: ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं क्या इसके लिए हम मशीनरी आयात करते हैं या ये भारत में निर्मित है सर?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को बताते हुए आपके श्रोताओं को कि भारत शायद विश्व में 5 या 6वां कंट्री है जहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट इंडिया में ही बनते हैं
1: जी।

0: और इनफैक्ट हम आयात नहीं करते, हम निर्यात करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो मेरे पास डाटा है, हम 12,000 करोड़ से ज्यादा की पवन चक्की या पवन चक्की का कंपोनेंट भारत से बना के
1: हमने
0: अलग
1: लिया
0: कंट्री
1: है
0: को निर्यात करते हैं, और
1: जी।
0: जिसमें यूरोप भी है, यूएसए भी है, हम उस कंट्री को निर्यात करते हैं।
1: जी
0: बट ऐसा नहीं कि हम आयात नहीं करते, तो इसको बनाने के लिए जो कुछ कंपोनेंट है, इनपुट मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स है, तो वो सब हम कुछ आयात भी करते हैं।
1: जी, तो एक तरह का संतुलन इसमें बना हुआ है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है।
0: बिल्कुल
1: जी, मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम सौर ऊर्जा से अगर तुलना करें, तो सौर ऊर्जा के लिए हम हर किसी को प्रेरित करते हैं कि वो अपने ओर से योगदान करें, और उनके पास जो भी स्थान है, छोटा स्थान भी हो, घर की छत है या खेत है, वहां से वो सौर ऊर्जा जो है उसमें योगदान कर सकते हैं, सोलर पैनल्स वहां लगा सकते हैं। क्या पवन चक्की के लिए भी ऐसा कुछ संभव है कि छोटे स्तर का कुछ उत्पादन वो कर पाए?
0: बिल्कुल संभव है, बट ये सोलर के तरह जितना सोलर अभी हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, शायद पवन चक्की का जो छोटा संरचनाएं है वो
1: जी
0: आपको नहीं मिलता देखने के लिए। उसका बहुत सारे कारण है, बट जो सबसे प्रमुख कारण होगा वो यही है कि कितना कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। जैसे अगर सोलर और विंड, जाहिर सी बात है कि हर कोई तुरंत कंपेयर करेगा कि मेरे
1: जी
0: पास अगर कुछ पैसा है तो वो पैसा से मैं सोलर लगाऊं या विंड लगाऊं। अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको जेनरेशन ज्यादा होता है, अगर विंड लगाते हैं तो कम होता है, तो आपका नेचुरल जो प्रेफरेंस है वो सोलर की तरह चला जाता है।
1: जी
0: बट ऐसा नहीं है कि विंड से नहीं हो सकता है। इनफैक्ट अगर जो छोटे छोटे विंड टर्बाइन्स भी मार्केट में उपलब्ध है, जो
1: जी
0: 1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट तक, इवन 100 किलोवाट भी आता है, 500 वाट, 200 वाट, ये सब छोटे छोटे पवन चक्के भी मार्केट में उपलब्ध है। बट इसको जब आप सोलर के साथ कंपेयर करेंगे थोड़े महंगे लगेंगे।
1: जी
0: बट अगर मान लो आप रिमोट एरिया में है जहां पे आपको मेन ग्रिड नहीं मिलता है, या मेन ग्रिड से बिजली जो है कंटिन्यूअसली नहीं मिलता है, तो उस क्षेत्र में अगर आप पवन चक्की, सोलर और बैटरी, ये तीनों को लगा देते हैं, तो आपको शायद ग्रिड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब
1: जी
0: आप अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में अपने ही घर के लिए। तो
1: जी
0: ये संभव है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस जगह पे है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं,
1: जी
0: और आप कितना बड़ा अच्छा सिस्टम घर पे बनाना चाहते हैं।
1: जी तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं, इसके बाद हमारी बातचीत जो है इसका सिलसिला जारी रहेगा।
0: आपने देश के बारे में पूछा है, पवन के बारे में पूछा है, तो पवन चले पूर्वाई।
1: जी

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, इससे हमारी जानकारी बढ़ रही है पवन ऊर्जा को लेकर। साथ ही कुछ तकनीकी पहलू भी एकदम आम शब्दों में, साधारण भाषा में हम समझ पा रहे हैं। पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप एक साइंटिस्ट भी हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हमारे साथ हैं, उद्यमी हैं और भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से आप जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जो ये संघ है आपका, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ, ये किस प्रकार से काम करता है, क्या भूमिका है इसकी?
1: ये एक संस्था है
0: जी,
1: जो जितने भी हमारे टरबाइन के निर्माता हैं उन सबको आपस में जोड़ के रखे हुए है। समय समय पर जो उनके परेशानियां या चीजें हैं
0: जी,
1: उनको मिनिस्ट्री के साथ या इन सब से साथ मिलके या और जगह पे मिलके, जैसे डिस्कॉम्स हैं, तो इन सब के साथ मिलके एक उसका सोल्यूशन एक निकालते हैं
0: जी।
1: इसमें जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सभी जुड़े हुए हैं
0: जी।
1: मैं आपको, जैसे प्रवीर जी अभी बता रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लगभग 70-80% तक चीजें जो हैं कंपोनेंट और ये सब है
0: जी,
1: हम यहाँ भारत में ही निर्माण कर रहे हैं, और उसका स्टैंडर्ड भी जो है ना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। ताकि जो अभी बता रहे थे कि ज्यादा हवा चल रही है तो सब में कैसे उसको रोका जा सके, तो ये सारी चीजें जो है ना, हम इन सब को अपने मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार हमारे जो एक मशीन्स हैं उनका टेस्टिंग और उनकी जो एक टाइप टेस्ट रहते हैं
0: जी,
1: जो हम बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे यहाँ इस्तेमाल हों, और इस वजह से कम उसके अंदर जो है हमारा दुर्घटनाएं हों। मंत्रालय जो है हमारे ऊपर एक नजर रखता है कि हम जो है इस चीज को, ये टरबाइन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके पूरा जो है इसकी पूरी हिस्ट्री हमारे मैन्युफैक्चरिंग की और सब के ऊपर नजर रखता है
0: जी।
1: और समय समय पर वो उसमें बदलाव भी देता रहता है, ताकि एक विश्व के मानक या हमारे अपने भारतीय मानकों के हिसाब से ये चलता रहे।
0: क्या कभी लैंड एक्विजिशन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या हुई है भूमि अधिग्रहण को लेकर?
1: ये वाकई ही एक प्रश्न ऐसा है जो एक द्विधापूर्ण रहता है हर एक जो भी पवन ऊर्जा का उद्यम लगाना चाहता है। क्या होता है कि पवन ऊर्जा की या पवन चक्कियां जो है इकट्ठी साथ साथ, जैसे आप सौर ऊर्जा को देखते हैं लगातार लगे हुए हैं
0: जी,
1: ये लगातार नहीं होते, इनके बीच में कुछ दूरी रखी जाती है ताकि एक का ब्लेड चलने से और दूसरे के चलने से उन दोनों के हवा का टकराव ना हो, और उन दोनों के टकराव को रोकने के लिए उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता है। इसके भी मानक बने हुए हैं
0: जी,
1: और जो मानक हमारे सिस्टम से या बहुत प्रयोग करके या बहुत उसके ऊपर जो है स्टडी करके बनाए गए हैं, तो उसमें जितना हमारा ब्लेड का डायामीटर या उसका व्यास रहता है उसके 3 गुना या 5 गुना दूरी उससे रखनी पड़ती है, ताकि दोनों ही टरबाइंस का आगे पीछे सामने साइड में कहीं पर भी हमारा इसका आपस में हवा का टकराव ना हो और उसकी वजह से एक बवंडर ना पैदा हो
0: जी।

0: बवंडर पैदा होने से हमारी मशीन जो एक लिमिट तक जो घूम सकती हैं वो थोड़ी सी हो जाती है और हमें वो मशीन को रोकना पड़ता है
1: जी। तो इसके लिए फिर जमीन भी काफी ज्यादा चाहिए होती है।
0: हाँ देखिए, हर टरबाइन जो है लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर के बीच में एक लगता है, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगला भी उसी तरह से। पर ये 2.5 हेक्टेयर जो जगह है ये ऐसे नहीं, इसके ये किस साइज की या कितनी बड़ी हम टरबाइन लगा रहे हैं उनके ऊपर, और आजकल जो है इसके बीच के दूरी के ऊपर कई लोगों ने सौर ऊर्जा भी लगानी शुरू कर दी है ताकि उसको विंड सोलर हाइब्रिड का कार्य किया जा सके,
1: यानी दिन में सौर ऊर्जा मिलती रहे और पवन चक्कियां जो है रात भर काम करती
0: रहे। यही नहीं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक संसाधन हमें बनाने पड़ते हैं विंड मिल के लिए, उनका भी उचित इस्तेमाल हो जाता है
1: जी।
0: कि जिस समय जैसे सुबह 8 से 7 बजे से 4 बजे तक हमें सौर ऊर्जा मिलती है, उसके बाद हमारी पवन ऊर्जा का उत्थान होता है, तो वो जो ग्रिड लगी है, जो हमारी तारे हैं, जो हमारे सब स्टेशन लगे हैं, उनमें वो उस बिजली को पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं ताकि जो खाली समय रह जाता है हमारे पवन जिस समय अच्छी नहीं मिलती उस समय सूरज मिल जाता
1: जी। आपसे जानना चाहूंगी प्रबीर जी, हम अक्सर युवा जो हैं आजकल वो घूमना बहुत पसंद करते हैं, और ऐसे में जब हम नई जगह पर जाते हैं उस जगह की हिस्ट्री भी जानते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी समझते हैं और वहां जो हाइलाइट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, तो जहां पवन चक्कियां होती हैं वो पूरा क्षेत्र अगर हम बात करें तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्या उस क्षेत्र में भी कुछ योगदान कर सकता है, और क्या ये पूरा एरिया सेफ होता है अगर हम पवन चक्कियों को नजदीक से देखना चाहें तो?
2: बिल्कुल, जैसे कि तनेजा जी ने भी बताया कि ये जो पवन प्रोजेक्ट्स है ये ज्यादातर रिमोट प्लेस पे ही होते हैं और शहर से थोड़ा दूर भी होते हैं
1: जी।
2: किसी भी पवन चक्की के प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पे अच्छे रास्ते बन जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, लोगों की इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है
1: जी।
2: तो जाहिर सी बात है कि फिर वो पर्यटन में भी योगदान करता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा होगा होटल से रहने के लिए भी अच्छी मिलेगी
1: जी,
2: तो पर्यटन पे भी वहाँ पे सहायता होता है। अगर आप देखने भी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सेफ होते हैं ये, जैसे इन्होंने बताया कि हमारा पूरा हम जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम बनाते हैं
1: जी।
2: हमारा अपना ही BIS स्टैंडर्ड है और हमारा मंत्रालय का एक मैकेनिज्म है जिसको हम RLMM बोलते हैं, अभी हमने उसका नाम परिवर्तन करके ALMM कर दिया है
1: जी,
2: दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्हिच मींस कि जो प्रत्येक मैन्युफैक्चरर जितने भी मॉडल बनाते हैं हर मॉडल की जो क्वालिटी है उसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस मंत्रालय खुद रखता है
1: जी।
2: फिर वो लिस्ट बनती है, तो सिर्फ वो लिस्ट में आने के बाद ही वो इंडिया में लग सकते हैं, तो जितने भी टर्बाइन लगे हुए हैं
1: जी
2: वो निश्चित रूप से वो क्वालिटी को कंप्लाई करते हैं
1: जी,
2: तो ये बिल्कुल ही सेफ होते हैं। हाउएवर ये बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं
1: जी,
2: जैसे कि मैंने बताया कि जो सेफ्टी होता है उसको कभी जीरो नहीं किया जा सकता, उसको हम कम करते हैं
1: जी,
2: तो ऐसा नहीं है कि उसके नीचे जाके हमेशा खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर पवन चक्की लगा है तो वे बिल्कुल सेफ है, इनफैक्ट जैसे इन्होंने बताया कि एक पवन चक्की से दूसरे पवन चक्की के बीच में जगह खाली होता है
1: जी,
2: तो वहाँ पे इनफैक्ट कृषि भी होती है, सोलर का पैनल भी लगाया जा सकता है या उस जमीन का दूसरा उपयोग भी कराया जा सकता है
1: जी।
2: इनफैक्ट सोलर और विंड में ये भी एक पार्थक्य है कि वहाँ पे उनको कंटिन्यूअस लैंड चाहिए और सारे के सारे लैंड में सोलर मॉड्यूल लग जाता है, बट पवन चक्की के लिए हम उसको फुटप्रिंट एरिया बोलते हैं, जहाँ पे वो पवन चक्की खड़ा है और उसके चारों तरफ थोड़ा जगह छोड़ना पड़ता है कि कभी मेंटेनेंस के लिए क्रेन का मूवमेंट हो, बाकी जो जमीन है वो दूसरे उपयोग में आ सकते हैं और वहाँ पे लोग भी रह सकते हैं। कंटिन्यूअस रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है वो ये बोलता है कि 500 मीटर तक का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत साउंड भी आता है, तो वो साउंड के कारण हमारा आज का गाइडलाइन है कि 500 मीटर तक का कोई ड्वेलिंग क्लस्टर नहीं होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई अगर गांव है गांव बसा हुआ है तो वहाँ से फिर वो 500 मीटर दूर ही रखेंगे उसको
1: जी। लेकिन ऐसे घूमने के लिए जा सकते हैं समझने के लिए या रिसर्चर्स
2: और वो सड़क से आई थिंक उसका जो हाइट होती है टिप हाइट तक आप मान के चलिए
1: जी,
2: उतना दूर में कोई सड़क नहीं रहता, मतलब जो कॉमन लोगों का यातायात का सड़क होता है वहाँ से वो उतना मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, ताकि अगर कभी किसी कारणवश वो गिर गया तो वहाँ पे जाते हुए लोगों को वो ना लगे
1: जी। और वैसे भी बहुत ऊंची होती है तो दूर से भी दिखाई देती है।
2: बिल्कुल, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी है, इट इज नॉट ओनली मैकेनिकल हजार्ड। वो गिरेगा भी नहीं तो क्योंकि वो बिजली पैदा करते हैं और बिजली संरचना का एक हिस्सा है
1: जी,
2: तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी रहता है
1: जी।
2: तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वहाँ पे लोग जाए उसको छुएं।
1: एक निश्चित दूरी से देखा जा सकता है जी। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो टर्बाइन्स है इनकी कितनी लाइफ होती है और जब वो

0: पानी हो जाती है तब उनका क्या किया जाता है?
1: तो जो टर्बाइन्स है उनका लाइफ निश्चित रूप से 25 साल होते हैं, बट उनकी हम बोलते हैं जब डिजाइन लाइफ, जब उनका सर्टिफिकेट लेते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से
0: जी।
1: कुछ पुराने टर्बाइन्स है जिसमें वो 20 साल भी था, बट आजकल के जितने टर्बाइन है वो 25 साल के लिए बनते हैं। और इनफैक्ट लोग अभी सोच रहे हैं कि इसको 30 साल या 35 साल किया जाए, क्योंकि जितना टर्बाइन का लाइफ ज्यादा होगा तो उसमें हमें जो पर यूनिट बिजली पैदा करने के जो कॉस्ट लगता है वो कम होगा, तो हमें और सस्ते में बिजली मिलेगी
0: जी।
1: तो कोशिश यही रहता है इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, कि इसका लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। और आपको जान के खुशी होगी कि जो पवन चक्कियां होती हैं इसमें जो भी मटेरियल लगती है, जिस पदार्थ से बनते हैं, उसका 85% मेटल्स होते हैं
0: जी।
1: तो जो मेटल्स होते हैं हम सबको पता है कि वो रिसाइकल हो जाते हैं, और इसका कॉस्ट इनफैक्ट हमें कभी भी स्क्रैप जो है, चाहे वो आप कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, यू नेम ए मेटल, स्टील ले लो, उसका कॉस्ट हमेशा बढ़ता ही है, तो स्क्रैप वैल्यू भी बढ़ेगा आगे जाके, और उसको हम 100% रिसाइकलिंग करा सकते हैं। बाकी जो 10-15% रह जाता है वो होता है वो जो ब्लेड, जो पंखा के बारे में बात किया, वो पंखा नॉर्मली हमारा ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स रेजिन से है उसमें, तो वही है जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। बट एंड ऑफ लाइफ के बाद उसका भी बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसको डिस्पोज करने का तरीका भी है। उसको हम जला सकते हैं, वो उसका जो आस बनता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, या तो उसको जो वो बहुत बड़े होते हैं उसको काट के, इनफैक्ट आप जो शेडिंग होती है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, बस स्टैंड हो, साइकिल स्टैंड हो, और इनफैक्ट यूरोप में बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे वो सब जो सिटिंग प्लेसेस है, इट इज यूज लाइक ए शेड। और अभी बहुत ही नए चीज है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी एक ऐसा रेजिन लोग अभी डेवलप कर चुके हैं जहाँ पे जो ग्लास फाइबर से या कार्बन फाइबर से वो ब्लेड बना है, 25 साल बाद हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं, जिस रेजिन से वो बनता है कुछ और केमिकल प्रोसेस करके वो 100% वो भी रिसाइकल हो जाएगा
0: जी।
1: तो पवन एक ऐसा अक्षय ऊर्जा बनने जा रहा है जहाँ पे 100% चीज एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से रिसाइकल हो जाएगा
0: जी।
1: और आपको एक और जानकारी देता हूँ कि जितने अक्षय ऊर्जा टेक्नोलॉजी है, चाहे सोलर हो, बायोमास हो, हाइड्रो हो, पवन हो, इनफैक्ट पवन शक्ति एक ऐसा शक्ति है जहाँ पे हम उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट
0: जी।
1: लाइक एक यूनिट बिजली पैदा करने में आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्यात किया है, लाइक जो मैंने बता रहा हूँ स्टील लगा है, कुछ लगा है, तो ये सबको बनाते हुए आपको कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा,
0: बिल्कुल,
1: तो उससे कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने वायुमंडल में छोड़ा है, तो सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट पवन ऊर्जा का होता
0: जी।
1: तो पर्यावरण के लिए ये सबसे फ्रेंडली है
0: जी। यानी बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो एक यूनिट बिजली बनाने के लिए अन्य माध्यमों से हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पर्यावरण में, पवन ऊर्जा में वो सबसे कम है। और एक लाभ ये भी है कि जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी टर्बाइन्स है, वो रिसाइकल हो जाती है, और जो भी हम उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण के हित में भी है और हमारे हित में भी है जी। तो चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओम जी, जो आपका संघ है, आपने बताया कि कई तरह की समस्या आती हैं और उसका हम समाधान निकालते हैं, और मंत्रालय से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और मंत्रालय की अपनी गाइडलाइंस है जिनको आप सब लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है अगर वो जुड़ना चाहें तो क्या उन्हें दूसरे बिजनेस जो है उन्हीं के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा, या वो अपने आप भी अप्रोच कर सकते हैं? जैसा आपने कलाकारों का बताया कि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या उसका तरीका है, वो कहाँ अप्रोच करें, क्या कोई वेबसाइट है इसकी, कोई लिंक है?
2: देखिए आज के दिन क्योंकि ज्यादातर पवन ऊर्जा जो लग रहे हैं
0: जी
2: वो बिल्डिंग पे लग रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक जो छोटे उद्योग में इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं उनके लिए भी ये संभव है कि वो एक मशीन, दो मशीन, चार मशीन लेके लगा दें। अभी क्योंकि उनको डिस्काउंट्स में जो है थोड़ा सा उनके लिए डिस्काउंट अपने सुविधा अनुसार उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं, तो एक किस्म के स्वयं इस्तेमाल के लिए जिसे हम कहते हैं कैप्टिव पावर कंजम्पशन, के एक उद्योग में अगर मान लो 10 मेगावाट का या 5 मेगावाट का कुछ उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो अपनी पवन चक्कियां लगाकर और किसी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक पवन चक्की लगाकर उसको अपने ही क्षेत्र में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा बहुत हो रहा है जिसमें कैप्टिव पावर जो है एक किस्म से अपनी पावर बना के अपने आप ही इस्तेमाल करते हैं इसको, ऐसा संभव है और हुआ भी है। और इस पावर को कई बार ये मॉल्स वगैरह वाले ये सब भी अपने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितने मॉल्स हैं उनको पावर जो है डिस्कॉम की पावर महंगी मिलती है और अपनी पावर उससे कुछ बचत कर पाते हैं, इसलिए इस कैप्टिव पावर का एक उपयोग जो है।

0: लोग कर सकते।
1: जी, तो एक तरह से ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर हम चाहें तो पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं और उससे भी कमाई हो सकती है। जी, हमने बचपन में ये कविता पढ़ी है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, लेकिन इस हवा का जादू जो है वो आज हमें समझ में आया कि पवन ऊर्जा जो है वो किस तरह से कारगर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान है, पर्यावरण में भी इसका योगदान है और जो आम जन है उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान है। इसके लिए मंत्रालय है जो नीतियां बनाता है और सहायता करता है और इसके लिए इस तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं वो संघ भी हैं जो कि जागरूक कर सकते हैं, जिनसे मदद ली जा सकती है। तो चलते चलते ओम जी, आपकी पसंद का ये गाना हमारे श्रोताओं के लिए।
0: पंछी नदिया पवन के झोंके,
1: जी
0: ये एक अच्छा गाना हो सकता है।
1: बिल्कुल, ये गाना बहुत अच्छा है, हमारे कार्यक्रम की थीम से मैच कर रहा है। पवन के झोंके जो है बहुत ही जादू का काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हमने बात की पवन ऊर्जा के बारे में और कार्यक्रम में हमारे साथ थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में आज आपने हमें पवन ऊर्जा जो है उसकी पूरी कार्य प्रणाली वो समझाई। हमारे साथ कार्यक्रम में रहे उद्यमी ओम तनेजा जी जो कि भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपना समय हमें देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। प्रबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार
0: जी। ओम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अति धन्यवाद, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके, हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, धन्यवाद।
0: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आप बच्चों को हाथ में एक खिलौना लेते हुए खेलते देखेंगे जो हवा से घूम रहा है और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखेंगे, उनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको समझ में आएगा और पर्यावरण से आप थोड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और दिलीप झा। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 111। स्टार्टअप्स रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स
5: डिफेंस केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। आइए अब सुनते हैं ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम में सुनिए सुनीता धाकड़ की आवाज में ब्रज लोकगीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकमंजरी, जिसमें आपने सुने सुनीता धाकड़ की आवाज में ब्रज लोकगीत। आइए अब सुनते हैं नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। मोहित चौहान की आवाज में सुनिए यह पहला गीत। फिल्म का नाम है कमीने। संगीत निर्देशन है विशाल भारद्वाज का और बोल लिखे हैं गुलजार ने।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

वीर सारा फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में आपने सुना ये गीत। अगला गीत सुनिए तुलसी कुमार और केके के स्वर में फिल्म रेडी से।

वेणु दयाल और अनुष्का नंजंदा की आवाज में फिल्म एक मैं और एक तू का ये गीत सुनिए। अमिताभ भट्टाचार्य का गीत और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ

दोहराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Pair Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Roli, Carnado and Daniel Martin. And that is the end of this news bulletin.
1: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत मुनक़िद एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां वजीर आला ने अपने खिताब में कहा,
2: केंद्रीय संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल जिसने अपनी स्थापना काल के से लेकर के अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में देश के अंदर केंद्र के साथ साथ 22 राज्यों में अपनी सरकार अपने दम पर अपनी विचारधारा को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस राजनीतिक दल के गोरखपुर जनपद के विशेष प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मैं आप सबका इस पूरे आयोजन के प्रति मैं जिला इकाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
1: इससे कबल वजीर आला ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िद जनता दर्शन प्रोग्राम में मुख्तलिफ अज़ला से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी। इस दौरान वजीर आला ने अफसरान को अहकाम दिए कि वो पूरी हसासियत से ये यकीनी करें कि बगैर किसी तफरीक के सबको इंसाफ मिले और जल्द ही उनकी दिक्कतों का तस्फिया किया जाए। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए एजाजिया तकसीम को लेकर आज पूरी रियासत में उनके एजाज में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में मुनक़िद रियासती सतही जलसे में वजीर आला योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के एजाज में इजाफा शुदा एजाजिया तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। वाज़ेह रहे कि इनका एजाजिया 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये फी माह करने का फैसला किया गया है। इजाफा शुदा एजाजिया 1 अप्रैल से नाफिज किया गया है। रियासत में जारी डिजिटल मर्दमशुमारी के पहले मरहले के तहत खुदशुमारी का अमल 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाले इस अमल में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में खुदशुमारी का डिजिटल फॉर्म भरा। वजीर आला ने रियासती आवाम से इस अमल में शराकतदारी दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा कि यह मुल्क की पहली मुकम्मल तौर से डिजिटल मर्दमशुमारी है। इसका खास मकसद सही एदादोशुमार जुटाकर मुल्क की तरक्की और बहबूदकारी स्कीमों की आउटलाइन तैयार करना है। मरकजी सानवी तालीम बोर्ड CBSE ने तालीमी सेशन 2025-26 के दर्जा 12 के बोर्ड इम्तिहान के नतायज के ऐलान होने के बाद तुलबा और तालिबात के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का ऐलान किया है। बोर्ड ने इस मरतबा तशखीस के अमल को और ज्यादा सही और शफाफ बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है।
1: CBSE ने 1 जुलाई से दर्जा 9 के तुलबा के लिए 3 जुबानों की पढ़ाई लाजमी करार दी है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और कौमी स्कूल तालीमी निसाब 2023 के मुताबिक इन 3 जुबानों में से कम 2 हिंदुस्तानी ओरिजिन की जुबानें होनी चाहिए। CBSE ने वाजह किया है कि दर्जा 10वीं में तीसरी जुबान R3 के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और R3 के लिए मुकम्मल तशखीस पूरी तरह से स्कूल पर मबनी और इंटरनल होगी। दिल्ली NCR की तरह उत्तर प्रदेश में भी SCR तैयार हो रहा है। UPSCR के डेवलपमेंट प्लान के तहत कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या के दरमियान नमो भारत कॉरिडोर बनाने और रैपिड रेल चलाने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट का वसी खाका लखनऊ तरक्याती अथॉरिटी में मुशीर एजेंसी ने दिया है। इसमें नयागंज कानपुर, उन्नाव बशीरतपुर, नवाबगंज बंथरा, अमौसी लखनऊ, सुशांत गोल्फ सिटी, जुग्गौर बरेल, सफदरगंज भिटरिया और अयोध्या में स्टेशन की तजावीज है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। NCRTC और उत्तर प्रदेश हुकूमत मिलकर मुश्तरका तौर से इस पर आगे काम करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल बांटेंगे। यह इस महाना रेडियो प्रोग्राम की 134वीं कड़ी होगी। और महकमे मौसमियात के कयास के मुताबिक मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते रियासत में दस्तक देगा। इस साल मानसूनी सीजन में मामूल

0: से कम बारिश के इम्कान हैं। महकमा आबपाशी और आबी वसायल की जानिब से रियासत के सभी 18 डिवीजनों में 31 मई तक सैलाब कंट्रोल रूम कायम करने के अहकाम दिए गए हैं। सैलाब और मुतासर इलाकों की निगरानी के लिए ये कंट्रोल रूम 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव के मीटर्स पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी अब सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल मंडल।

नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके मन पसंद कार्यक्रम बाल मंडल में, और मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी राशि दीदी। तो कैसे हैं आप लोग? इंतजार तो पूरे हफ्ते करते हो, और जब संडे आ जाता है तो हमारी मुलाकात हो ही जाती है। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक खास विषय के बारे में। आज का हमारा विषय है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। लेकिन अगर बात विश्व और दूर संचार की हो गई है, तो पहले मैं आपको विश्व में बैठे बैठे दूर दराज के दर्शन करवाऊंगी और सीधा ले जाऊंगी आपको तारों की ओर। तो आइए गीत सुनते हैं मेरी ओर से आपके लिए।

तारे जमीन पर। वैसे नन्हे मुन्ने दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपको यहाँ से बैठे बैठे तारों की सैर करा दी और आपके लिए तारों को जमीन पर उतार लाई हूँ। जैसा कि मैंने गीत सुनने से पहले कहा था कि आज का हमारा विषय है विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस। बच्चों, ये नाम सुनने में थोड़ा बड़ा जरूर लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान और मजेदार है। हम सब रोज मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं।

टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बातें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग हमारी आवाज या हमारे संदेश को सिर्फ कुछ ही सेकंड में कैसे सुन लेते हैं? दरअसल ये सब संभव होता है दूर संचार तकनीक की वजह से। दूर संचार का मतलब है ऐसी व्यवस्था या तकनीक जिसके माध्यम से हम दूर बैठे लोगों तक अपनी बात, संदेश, तस्वीर या जानकारी पहुंचा सकते हैं। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट, वीडियो कॉल, ईमेल, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़कर रख दिया है। पहले के समय में लोग चिट्ठियां लिखते थे जिनके पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज हम एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बातें कर सकते हैं। बच्चों, हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि तकनीक और जानकारी हमारे जीवन को कितना आसान और बेहतर बना सकती है। इसके साथ ही हमें ये भी सिखाया जाता है कि तकनीक का उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। आज के समय में इंटरनेट बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत मदद कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस, शैक्षणिक वीडियो, डिजिटल के बारे में जानना हो, कोई नई भाषा सीखनी हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में जानकारी चाहिए हो तो इंटरनेट उसकी मदद कर सकता है। लेकिन बच्चों, हर अच्छी चीज़ का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। मोबाइल और इंटरनेट की ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना, उनका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग बहुत नुकसानदायक भी होता है। कई बच्चे तो घंटों मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं जिससे पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें तकनीक का उपयोग संतुलित तरीके से करना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेट पर केवल अच्छी और सही जानकारी देखें, किसी अनजान व्यक्ति से अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। मोबाइल का उपयोग पढ़ाई और सीखने के लिए करें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना ना भूलें और सबसे ज़रूरी, तकनीक का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें। बच्चों, सोचिए अगर दूर संचार की सुविधा ना होती तो क्या होता? ना हम तुरंत किसी से बात कर पाते, ना ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते, ना देश दुनिया की खबरें तुरंत मिल पाती और ना ही रेडियो के माध्यम से हम सब एक दूसरे से जुड़ पाते। तकनीक ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। आज हम घर बैठे दुनिया की नई खोजें, खेल, मौसम, विज्ञान और कई ज़रूरी जानकारियों के बारे में तुरंत जान सकते हैं। अभी देख लीजिए, अभी जब मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी कार्यक्रम के, एक क्लिक में मैंने आपको सुना दिया वो गाना जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाया। सारे सिंगर्स आप मिल तो सकते नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से। बच्चों, यही कारण है कि सूचना और संचार आज की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। प्यारे बच्चों, हमें ये याद रखना चाहिए कि तकनीक तभी अच्छी है जब उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। अगर हम मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग सीखने, दूसरों की मदद करने, नई जानकारी पाने के लिए करेंगे तो ये हमारे भविष्य को और बेहतर बना सकता है। आइए इस विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम तकनीक का उपयोग समझदारी, सुरक्षा और अच्छे के लिए करेंगे, है ना? तो चलिए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते ही आपका मनपसंद कार्यक्रम बाल मंडल।

जी हाँ प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, हम फिर आ गए हैं आपके आपका मनपसंद कार्यक्रम बालमंडल में। मैं हूँ आपके साथ आपकी प्यारी राशि दीदी। और अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी विश्व दूरसंचार एवं सूचना दिवस के बारे में और सुनाए गीत। अब वक्त हो चला है बाल गीत को श्रवण करने का, जिसका शीर्षक है देखो यू मत सवे गवाओ।

बच्चों देखो यूं मत समय गवाओ। वैसे भी समय बात करें तो सुना होगा आपने, बड़े बुजुर्ग कहते हैं समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो भैया अभी जो आपने सुना था बाल गीत, उसका शीर्षक था देखो यूं मत समय गवाओ। मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, आपसे भी मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि समय का सही सदुपयोग करें और समय पर समय रहते हुए काम कर लीजिए, चाहे वो आपका होमवर्क हो, चाहे वो आपके माँ बाप का कोई दिया हुआ काम हो, वरना बड़ी परेशानी हो जाती है। तो चलिए अब वक्त है रोचक जानकारी में। आपका विषय है भारत कोश। बच्चों अब जानते हैं भारत कोश के बारे में। भारत कोश ये भारत सरकार की एक बहुत ही उपयोगी डिजिटल सुविधा है जिसे वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत कोश करता क्या है, तो इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। बच्चों पहले अगर किसी को सरकार से जुड़ा हुआ कोई शुल्क या भुगतान करना होता था तो उसे दफ्तर जाना पड़ता था, राइट? लंबी लाइन में लगना पड़ता था और काफी समय भी लगता था। लेकिन अब मोबाइल और इंटरनेट की मदद से बहुत से काम घर बैठे ही हो जाते हैं। भारत कोश एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जहां लोग सुरक्षित तरीके से सरकारी भुगतान कर सकते हैं। बच्चों आज के समय में डिजिटल दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि मम्मी पापा मोबाइल से बिजली का बिल भर देते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर देते हैं, टिकट्स बुक कर लेते हैं और पैसे भी भेज देते हैं। इससे समय की बचत होती है और काम भी जल्दी से हो जाता है। भारत कोश इसी तरह के लोगों का काम को आसान करना और तेज बनाता है। आज हमारा भारत डिजिटल इंडिया की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्कूल स्मार्ट हो चुके हैं, कक्षा में स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं और कई काम अब ऑनलाइन होने लगे हैं। आने वाले समय में और भी ज़्यादा काम डिजिटल हो जाएंगे, इसलिए हमें भी अभी से तकनीक को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे आज तकनीक सीखेंगे वही आगे चलकर देश को नई दिशा देंगे। हो सकता है बच्चों कोई बच्चा बड़ा होकर वैज्ञानिक बने, कोई इंजीनियर बने या कोई नई तकनीक बनाकर दुनिया को और आसान बना दे। लेकिन बच्चों तकनीक जितनी अच्छी है उतनी ही ज़रूरी है कि हम जैसे बच्चे इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग हमेशा पढ़ाई सीखने और अच्छी जानकारी के लिए ही करना चाहिए आपको। हमें कभी भी अपनी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ तो साझा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इंटरनेट पर हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। तो बच्चों भारत कोश जैसी डिजिटल सुविधाएं हमें ये सिखाती हैं कि अगर तकनीक का सही उपयोग किया जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और तेज़ हो सकती है। इसलिए हमें भी समझदारी के साथ साथ तकनीक का उपयोग करना चाहिए और एक स्मार्ट, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनना चाहिए। बच्चों मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि समय मत गवाइए और इसीलिए हमने सुना था एक बाल गीत। तो बच्चों अगर आप भी समय को बचाना चाहते हैं तो खुद जानकारी बढ़ाइए चल की तरफ और थोड़ा सा तकनीक को सीखने का प्रयास कीजिए। अभी गर्मियों की छुट्टी

0: आ रही हैं, समर कैंप जगह जगह पर लगे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप जाकर के समर कैंप में कुछ AI से रिलेटेड सीख सकते हैं, कुछ तकनीकी चीज़ें सीख सकते हैं जो आपको आगे चलकर मदद भी करेंगी। तो बच्चों, अब है वक्त एक कहानी को सुनने का, जिसका शीर्षक है मुन्ना हाथी, और हमारी कहानीकार है प्रगति गोयल।
1: बच्चों, ये कहानी है मुन्ना हाथी की। मुन्ना हाथी का कारोबार सारे जंगल में फैला था। सारे पेड़ पौधों पर उसका एक छत्र अधिकार था। जहां भी उसका मन करता, वहीं जाकर पेड़ों की डालें तोड़ता, पत्ते चबाता और पेड़ों को हिलाता। किसी की मजाल नहीं थी कि उसको रोक पाए। जंगल में शेर ही उसकी बराबरी का जानवर था, किंतु उसे पेड़ पौधों से क्या लेना देना, उसे तो जानवरों के मांस से मतलब था। मुन्ना खूब पत्ते खाता, घूमता और मौज मस्ती करता। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जंगल के रास्ते से कारों का काफिला निकला। रंग बिरंगी कारें देखकर मुन्ना का भी मूड हो गया कि वह भी कार में घूमे। हॉर्न बजाकर लोगों को सड़क से दूर हटाए और सर से कट मारकर आगे निकल जाए। दौड़कर वह टिल्लू मल के शोरूम में जा पहुंचा और अपने मन की बात टिल्लू मल को बताई। टिल्लू मल से अच्छी सी कार दिखाने को कहा। टिल्लू मल का सर चकरा गया। अब हाथी के लायक कार वो कहां से लाए, इतना विशाल काय जानवर और इतनी छोटी कार। बोला, भैया तुम्हारे लायक कार कहां मिलेगी, इतनी बड़ी कार तो कोई कंपनी नहीं बनाती। परंतु मुन्ना हाथी ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि अब तो मैं यहां से कार लेकर ही जाऊंगा। अरे भाई, तुम्हारे लायक कार कंपनी को अलग से आदेश देकर बनवानी पड़ेगी, टिल्लू मल ने हाथी को समझाना चाहा। हाथी ने कहा, तो बनवाओ, इसमें क्या परेशानी है। अरे भाई, बहुत बड़ी कार बनेगी। तो मुन्ना हाथी ने कहा, तो बनने दो, इसमें तुम्हें क्या कष्ट है। जब कार चलेगी तो जंगल के बहुत से पेड़ काटने पड़ेंगे। हाथी ने कहा, क्यों क्यों काटने पड़ेंगे पेड़। तो टिल्लू मल ने कहा कि भाई, कार इतनी बड़ी होगी तो पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे। क्या पेड़ काटना ठीक होगा अपने जरा से शौक के लिए, तुम जरा सोच कर मुझे बताओ। अरे टिल्लू मल जी, कार के लिए पेड़ काटना, अपनी मौज मस्ती के लिए जंगल काटना, ये मुझे स्वीकार नहीं है। जंगल ही तो जीवन है। ऐसा कहकर हाथी जंगल वापस चला गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ पौधे हमारा जीवन है। पेड़ पौधे ही हमारे पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं। इनसे ही हमें दैनिक जीवन की सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो इन्हें हमें काटना नहीं है, बल्कि इनका संरक्षण करना है।
0: बच्चों, सुना आपने, जंगल को बचाना है, पेड़ों को काटना नहीं है, बल्कि इनका संरक्षण करना है। कहानी तो बड़ी मजेदार थी और शीर्षक था मुन्ना हाथी। और हमने आपको बताया था कि हमारी कहानी प्रगति गोयल जी। तो बच्चों, अब वक्त हो चला है एक गाना सुनने का, एक गीत। जैसे कि आप प्यारे से बच्चे हैं, मैं भी प्यारी सी बच्ची हूँ, और इसलिए हम सबका दिल बच्चों के जैसा है। लीजिए मेरी ओर से एक गीत।

जी हाँ बच्चों, अभी आपने सुना एक गीत, दिल तो बच्चा है जी। और अब फाइनली हमारे पास वक्त हो चला है आपके मनपसंद सेगमेंट चलते चलते का। अच्छा बच्चों, अब समय आ गया है आज के हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम को यहीं पर समेटने का, लेकिन जाते जाते आपसे एक बहुत ही ज़रूरी और दिल को छू लेने वाली बात ज़रूर कहना चाहती हूँ। बच्चों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, सूरज तेज चमक रहा है, धूप बहुत गर्म हो गई है और हर कोई इससे बचने की कोशिश कर रहा है। हम लोग तो घरों में पंखे, कूलर या एसी के सामने बैठकर आराम फरमा लेते हैं, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले छोटे छोटे बेजुबान जीव जैसे पक्षी, कुत्ते, गाय और अन्य जानवर इस तेज गर्मी में बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके पास ना तो ठंडी जगह होती है और ना ही पानी मांगने का कोई भी साधन। बच्चों ज़रा सोचिए, जब हमें बहुत तेज़ प्यास लगती है और हमें तुरंत ठंडा पानी मिल जाता है तो हमें कितनी राहत मिलती है।

ठीक वैसे ही इन जानवरों और पक्षियों को भी पानी की जरूरत होती है, लेकिन वो बोलकर हमें बता नहीं सकते, इसलिए उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम आपकी बहुत बड़ी अच्छाई बन सकता है। जैसे अपने घर की छत पर, बालकनी में, आंगन में या किसी पेड़ की छाया में एक साफ कटोरी या बर्तन में पानी अवश्य रखिए। हर दिन आप इसको एक रूटीन में डाल सकते हैं। करना बस यह है कि जब आप सुबह उठें तो बस अपने घर के बाहर, बालकनी, छत आदि स्थानों पर एक कटोरी में पानी ज़रूर भरकर रखें। अगर घड़ा टूटा पड़ा हो तो उसमें पानी भर दीजिए। इससे छत पर आने वाली गिलहरी या कुएं या कौए आदि जब आएंगे आपकी छत पर तो उनको पानी आसानी से मिल जाएगा, जिससे उनको गर्मी में राहत मिल सकती है। तो बच्चों, आपसे बस यही कहना था मुझे। जाते जाते बस इतना कहूँगी कि आज हमने की है ढेर सारी बातें और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी हमारे बाल श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल मंडल। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में गजल।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुनी ये गज़ल, बोल थे मुद्दत हुई है। अगली प्रस्तुति सुनिए, इसे लिखा है आमिर मिनाई ने, बोल है ना शौक के वस्ल, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गजल। लीजिए सुनिए ये अगली पेशकश, इसे लिखा है मिर्जा गालिब ने। बोल हैं बस एक दुश्वार है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में गजल। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़।

0: को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय

0: वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80 रुपये 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपये 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपये 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के

0: आज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अब नाटक अंजाम। आलेख है अतुल पारिजात का।
1: आजकल ये इवनिंग न्यूज बहुत बेकार अखबार हो गया भाई, बहुत बोरियत है। इस पेपर में पढ़ने लायक कुछ नहीं है, बस वही पुरानी सड़ी सड़ाई खबरें हैं। पर तुम्हारा नॉवल बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है।
2: मजेदार मिस्ट्री है।
1: अच्छा, तुम्हारी सूरत से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहीं और खोई हुई हो। पता है पिछले 10 मिनट से तुमने यही पेज खोल रखा है।
2: नहीं, मैं तो कुछ और सोच रही थी।
1: मैं देखता हूँ किसका फोन है।
2: रहने दो, तुम थके हो, मैं ही देख लेती हूँ।
1: बैठी रहो, मैं ही देखता हूँ। हेलो हेलो, कौन है भाई? हेलो, अजीब बदतमीज इंसान है, बोलता ही नहीं।
2: अजीब बात है, पर कहीं हमारा फोन खराब तो नहीं हो गया?
1: नो, मैंने दूसरी ओर से किसी के जोर से सांस लेने की आवाज सुनी है, और फिर किसी ने फोन का रिसीवर भी रखा है। मैंने रिसीवर रखने का क्लिक सुना है संगीता।
2: अच्छा,
1: चलो जाने दो।
2: 9:30 तो कब का बज चुका है, आज क्या देर से जाओगे?
1: हाँ भाई हाँ। वाह संगीता, आज तो कॉफी बड़ी टेस्टी बनी है, थोड़ी और है क्या?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। पर आज तुम्हें ऑफिस को देर नहीं हो गई है?
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी काफी टाइम पड़ा है।
2: काफी टाइम पड़ा है, देखो 9:30 तो कब के बज चुके हैं।
1: यार ऐसा लगता है तुम्हें मुझे ऑफिस भेजने की जल्दी हो रही है, मुझसे पीछा छुड़ा रही हो।
2: नहीं बाबा नहीं।
1: कॉफी बहुत टेस्टी थी संगीता।
2: डियर, क्या बात है?
1: मतलब?
2: मेरा मतलब है कुछ गड़बड़।
1: गड़बड़? कैसी गड़बड़?
2: कुछ नहीं, मगर पिछले 2-3 दिन से तुम अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो।
1: अजीब तरह से?
2: मैं देखती हूँ।
1: बैठी रहो संगीता, फोन नहीं उठाऊंगा।
2: अरे मैं उठा लूंगी तो क्या हो जाएगा?
1: नहीं, फोन नहीं रिसीव करूंगा।
2: ठीक है, तुम ही रिसीव कर लो।
1: हेलो हेलो हेलो, उधर से कोई बोलता ही नहीं, पता नहीं क्या ड्रामा है, वही कल शाम जैसा।
2: हाँ, पर हो सकता है।

0: फोन खराब हो गया हो।
1: ऐसा ही लगता है, मगर इस वक्त भी मैंने उधर से फोन रखने की क्लिक सुनी है।
0: नहीं, ये तुम्हारा वहम है।
1: हो सकता है। खैर, तुम इसकी कंप्लेंट लिखा देना।
0: ओके।
1: अच्छा, अब मैं चलता हूं, शाम को मिलेंगे। ओके, बाय।

0: हेलो, हाँ हरीश, 10 मिनट बाद कॉल करो यार, ऑफिस में बिल्कुल अभी आया हूँ। भैया कुर्सी पर बैठ तो जाऊं।
1: एक्सक्यूज मी सर।
0: ओह यस मिस नंदा।
1: सर, मिस्टर विजय शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं?
0: नहीं, आप उन्हें वेट करने को कहें। और हाँ, आप जरा मेरे पास आइए।
1: ओके सर, मैं अभी आई। हाँ सर, क्या बात है?
0: प्लीज सिट डाउन मिस नंदा।
1: थैंक यू सर, मेरी नोटबुक तैयार है।
0: नहीं नहीं, मुझे कोई डिक्टेशन नहीं देना है मिस नंदा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
1: जी कहिए।
0: आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज। मैं
1: नहीं नहीं, क्या बात है सर?
0: मिस नंदा, मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। असल में मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिस पर मैं आपकी एडवाइस चाहता हूँ मिस नंदा।
1: आपकी पर्सनल प्रॉब्लम और मेरी एडवाइस?
0: गलत मत समझिए, मैं एक प्रॉब्लम पर किसी लेडी की राय जानना चाहता हूँ। मतलब मेरा मतलब है, आप मेरी सेक्रेटरी नहीं, वरन एक लेडी की तरह मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करें।
1: ओके सर, मैं कोशिश करती हूँ।
0: थैंक यू मिस नंदा। एक औरत है जो हमेशा से बड़ी प्रैक्टिकल टाइप की है। इकाई की औरत इमोशनली रिएक्ट करने लगती है, वो खुली खिड़की से देर तक खाली सड़क को ताकने लगती है। उससे बात करो तो जैसे सुन ही नहीं पाती, जैसे कहीं और खोई हुई हो। इस चेंज्ड बिहेवियर को आप क्या कहेंगे मिस नंदा?
1: मैं कहूंगी इस औरत को प्यार हो गया है।
0: गुड, मैंने भी यही सोचा था। अब सपोज ये औरत एक मैरिड वुमन है और इसका हस्बैंड भी उसके साथ उसी कमरे में है, तो आप समझ रही हैं ना?
1: यस सर।
0: ऐसे में कई बार फोन पर ऐसे कॉल आते हैं जिनके जवाब में ये रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट देती हैं।
1: तो क्या सर?
0: अब देखिए, सपोज अगर ऐसे किसी भी सिचुएशन में एक औरत का हस्बैंड फोन अटेंड करता है तो दूसरी तरफ से कुछ नहीं बोलता है और फोन काट दिया जाता है।
1: सर एकदम साफ बात है, जो फोन कर रहा है वो सिर्फ वाइफ से बात करना चाहता है, बस। वो नहीं चाहता कि इस औरत के हस्बैंड को कुछ भी पता चले।
0: बस यही मुझे जानना था। थैंक यू मिस नंदा, अब आप जाइए और प्लीज मिस्टर विजय शर्मा को यहाँ भेज दीजिए।
1: यस सर। मिस्टर विजय शर्मा
2: जी,
1: मिस्टर सिकंदर खन्ना आपका वेट कर रहे हैं।
2: थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खन्ना साहब।
0: आइए मिस्टर शर्मा, आइए, भीतर आ जाइए और इस दरवाजे को भीतर से बंद कर लीजिए।
2: ओके सर।
0: बैठिए।
2: थैंक्स।
0: मेरे लिए क्या खबर है?
2: मेरे पास पूरी रिपोर्ट है सर।
0: देखें क्या है आपकी रिपोर्ट।
2: आपने जो 4 लोगों के नाम बताए थे मैंने उन्हें चेक किया था।
0: फिर कौन निकला वो आदमी जिससे वो मिलती है?
2: मैं उनकी केवल एक मीटिंग पकड़ सका हूं, बाकी हर दफा वो मेरे हाथ से निकल गई सर।
0: ये कौन सी बात हुई?
2: देखिए सर, आपने चेतन शर्मा, अहलूवालिया, राजधवन और अशोक मिश्रा, ये 4 नाम मुझे दिए थे।
0: ये दिए थे
2: मिस्टर खन्ना? मुझे पता चला कि आपकी वाइफ संगीता जी और ये राजधवन एक ही स्कूल के पढ़े हैं, ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, और यहां तक कि राज के लैपटॉप पर संगीता जी का स्क्रीन सेवर भी लगा रहता था। लोगों ने यहां तक बताया कि कॉलेज में इनका फ्रेंड सर्किल सोचता था कि ये आपस में लव करते हैं, मगर पता नहीं क्या हुआ कि ये लोग अलग अलग हो गए।
0: मगर क्यों?
2: आपके फादर इन लॉ को ये दोस्ती पसंद नहीं थी, शायद यही रीजन था। इसके बाद अभी 3 महीने पहले ये राजधवन यहां शहर में आया और फोन कंपनी के रिकॉर्ड बताते हैं कि इसने 5-6 बार आपके घर फोन भी किया है।
0: यस यू राइट। तभी उस शाम मिस्टर परेरा की पार्टी में अनायास उस राजधवन से मिलकर वो कैसे खिल गई थी। राजधवन, वो दो कौड़ी कार के

0: नो दैट्स ऑल। मिस्टर खन्ना, क्या मैं उनकी जासूसी चालू रखूं?
1: नो, इट्स इनफ। अब जासूसी नहीं, कुछ सॉलिड करने का टाइम आ गया है। मैं जानता था, मेरा शक भी इसी धमन पर था। मिस्टर विजय, नाउ यू गो, अपना पेमेंट ले लें, आगे जब जरूरत होगी आई कॉन्टेक्ट यू। ओके,
0: थैंक यू मिस्टर खन्ना।
1: हाँ, राज साहब, पहचाने हूँ मैं। अरे भाई, मैं संगीता का हस्बैंड सिकंदर खन्ना हूँ।
2: ग्रेट, व्हाट अ सरप्राइज सर। भाई, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा। आप कैसे हैं मिस्टर खन्ना?
1: आई एम वेरी फाइन, थैंक यू मिस्टर राज। भाई, आपको इसलिए तकलीफ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बढ़िया आर्किटेक्ट की जरूरत है।
2: आप मुझे? मगर मैं
1: जनाब, यहाँ पड़ोस के हिलॉक पॉइंट पर मेरी बहुत सारी लाइन पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर एक अच्छा सा रिजॉर्ट बना लो, और मैं चाहता हूँ आप मेरा ये काम कर दें।
2: मगर मिस्टर खन्ना,
1: मगर वगैरह कुछ नहीं मिस्टर राज, मैं आपको वो स्पॉट दिखाना चाहता हूँ ताकि आप अपना काम अभी से शुरू कर दें।
2: वो तो ठीक है मिस्टर खन्ना, मगर आपका ये साइट कैसा है?
1: कैसा है ये बताने के बजाय मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मिस्टर राज, प्लीज मना मत कीजिए। मैं बस एक घंटे बाद आपको पिक कर रहा हूँ।
2: पर मिस्टर खन्ना, आज मेरी एक मीटिंग फिक्स है।
1: अरे भाई, उसे कैंसिल कर दीजिए। मेरी बात समझे, मेरा ऑफर आपकी मनमानी प्राइस है, प्लीज मना मत कीजिए मिस्टर राज।
2: अब भला मैं क्या कह सकता हूँ मिस्टर खन्ना, ठीक है।
1: बस तो एक घंटे में आपको पिक करता हूँ।
2: ओके खन्ना साहब।
1: बस मैं आया ही समझिए, और हाँ, लंच हम लोग रास्ते में कर लेंगे।
2: फाइन, थैंक यू।
1: मिस नंदा?
3: यस सर।
1: आई एम लीविंग फॉर द डे, आप मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए।
3: ओके सर।
1: हेलो, हाँ जगदीश, मैं गैराज में आ रहा हूँ, और हाँ, मुझे ब्लू वाली गाड़ी चाहिए। क्या कहा? उसके ब्रेक खराब है? अच्छा, और पैसेंजर साइड के अगले गेट का लॉक भी अभी तक जाम पड़ा है। कोई बात नहीं, मैं वही गाड़ी लेकर जाऊंगा। उसका टैंक फुल है ना? ओके, ठीक है।

0: मिस राज, अब हम चल रहे हैं हिलॉक पॉइंट की उस खूबसूरत पहाड़ी पर। एक ऐसी जगह जा रहे हैं मिस राज, जहां से 80 फीट नीचे एक खूबसूरत झरना गिरता है।
1: वाओ, सो ब्यूटीफुल प्लेस। आपने जगह बहुत शानदार चुनी है।
0: यही तो हमारी पसंद है राज साहब। बस आ गए हम अपने स्पॉट पर।
1: बहुत सुंदर लोकेशन है सर। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये मुझे चांस दिया मिस्टर खन्ना।
0: मैंने कहाँ चांस दिया राज साहब, आपका नाम तो मुझे संगीता ने सुझाया। उसने बताया कि आप कितने बड़े आर्किटेक्ट हैं।
1: अरे नहीं खन्ना साहब, आई एम नथिंग। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं था कि इतने सालों के बाद भी वो मुझे पहचान लेगी।
0: पर देखिए, उसने मिस्टर परेरा की पार्टी में आप पर एक नजर डाली और पहचान लिया।
1: हाँ जी, ये तो कमाल की बात थी सर। करीब 8 साल बाद मिले थे हम।
0: भाई क्यों नहीं पहचानती, एक जमाने में तो आप लोग स्वीट हार्ट्स थे ना। क्यों थे ना?
1: नॉट एग्जैक्टली सर, पर हाँ, हम अच्छे दोस्त जरूर थे। काफी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते थे।
0: तभी तो वो आज भी आपको नहीं भूली है राज।
1: आपने जगह बहुत शानदार चुनी है। खैर खन्ना साहब, मैं आपको एक ऐसा रिजॉर्ट बनाकर दूंगा जिससे कभी कोई नीचे ही ना गिर सके।
0: मुझे पता है मिस्टर राज। अब हम इस कार को यहीं पर छोड़कर इससे थोड़ी नीचे उतरकर जरा आसपास का मुआयना कर लें और फिर यहीं से गाड़ी पैक करके लौट लेंगे।
1: वो तो सही है खन्ना साहब, पर आपकी इस कार के ब्रेक एकदम राइट है ना, वरना।
0: हाँ बिल्कुल राइट है, डोंट वरी मिस्टर राज, डोंट वरी। फिर भी अगर आप डर रहे हैं कि कार यहाँ से फिसलकर झरने में गिर जाएगी, तो प्लीज जरा नीचे उतर आइए और पहियों के आगे पत्थरों की ओट

0: लगा लीजिए।
1: हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। कमबख्त ये दरवाजा तो जाम हो गया है, खुलता ही नहीं।
2: अरे अरे सॉरी मिस्टर राज, कभी कभी दरवाजा फंस जाता है। डोंट वरी, आप बैठे रहें, मैं नीचे उतर कर पत्थरों पर सपोर्ट लगा देता हूँ।
1: पर खन्ना सर, आपने हैंड ब्रेक तो लगाया ही नहीं है।
2: उसकी कोई जरूरत नहीं है।
1: पर खन्ना साहब, ये ढलान तो बहुत खतरनाक है, अगर नीचे गिर गए तो।
2: डोंट वरी मिस्टर राज, मुझे पता है क्या करना है।
1: पता है क्या करना है? देखिए देखिए खन्ना साहब, कार नीचे फिसल रही है।
2: कार फिसल रही है, और कार तो फिसलेगी राज।
1: मिस्टर खन्ना, कार के ब्रेक फेल हो रहे हैं। मिस्टर खन्ना, हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रहा। मिस्टर खन्ना कार नीचे जा रही है। मिस्टर खन्ना, मैं मर जाऊंगा। बचाओ बचाओ मिस्टर खन्ना।
2: गुड बाय मिस्टर राज, गुड बाय।
1: बचाओ मिस्टर खन्ना, बचाओ। बच गया, गाड़ी अटक गई, बच गया मैं।
2: अरे ये कार नीचे गिरते गिरते रुक कैसे गई? और ये राज कार से नीचे उतर रहा है।
1: मिस्टर खन्ना, ये क्या है? आप जान बूझ कर मुझे कार में बंद कर निकल गए।
2: जान बूझ के? आप ठीक कह रहे हैं राज, जान बूझ के निकल गया था।
1: आपने मिस्टर खन्ना, आपने मेरा मदद करना चाहा।
2: एग्जैक्टली, मैं यही चाहता हूँ मिस्टर राज, यही चाहता हूँ।
1: मगर क्यों? पर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मिस्टर खन्ना? क्या पागल है मिस्टर खन्ना?
2: नहीं नहीं, अगर आप मुझे जानते तो ऐसा कभी नहीं कहते राज। मेरी कोई चीज कभी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझे? अब तुम ऐसी गलती करोगे तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना राज।
1: कैसी गलती? ये क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर खन्ना?
2: ये बकवास नहीं है मिस्टर राज, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुम जो मुझसे छीनना चाहते थे वो तुम नहीं छीन पाए, और मेरी कोई चीज मुझसे कभी नहीं छीन सकता।
1: आप पागल है मिस्टर खन्ना, आप पागल है। बताइए भला मैंने आपकी कौन सी चीज छीनी है मिस्टर खन्ना? देखिए मेरे पास मत आइए मिस्टर खन्ना, अब दूर हट जाइए मिस्टर।
2: मैं पागल नहीं हूं आज, मगर आज तुम्हारी मौत।
1: नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे
2: इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए ताकतवर होना बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं खन्ना साहब, मुझे धक्का मत दीजिए।
2: नहीं, जाओ मिस्टर राज, नीचे जाओ।

0: इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई इंस्पेक्टर साहब। मेरा दोस्त राज।
1: बैठिए बैठिए और शांति से बताइए कि क्या हुआ।
0: मेरा नाम सिकंदर खन्ना है इंस्पेक्टर साहब। मैं इस समय हिल्लौर पॉइंट से आ रहा हूं। मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई इंस्पेक्टर साहब। आज
1: अच्छा तो मिस्टर खन्ना, आप कार के टायरों में पत्थर की ओट फंसा ही रहे थे, तभी आपकी कार फिसल गई।
0: हाँ सर, हाँ सर, मैं उसमें से बाहर कूदना चाह रहा था, मगर इधर कार का दरवाजा खुला और उधर कार झरने में गिर गया इंस्पेक्टर साहब, और वो बेचारा फिसल कर नीचे झरने में गिर गया इंस्पेक्टर साहब।
1: फिर आपने क्या किया?
0: मैं क्या कर सकता था इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कर सका। हे भगवान, मैं कुछ नहीं कर सका।
1: मैं समझ सकता हूँ। वैसे मौका वारदात

0: ऑफ पॉइंट से कुछ ही दूरी पर जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स का स्टडी कैंप लगा हुआ है, उसमें आपको किसी की हेल्प मिल सकती थी। मैंने सोचा शायद किसी ने आपको देखा होता।
1: काश काश कोई वहां होता इंस्पेक्टर साहब।
0: एनीवे, हमने आपका बयान नोट कर लिया है मिस्टर खन्ना। जैसे ही हमें लाश या कोई खबर मिलती है हम आपको बताएंगे। हाँ, अगर हमें लाश मिली तो आपको आकर अपने दोस्त को पहचानना होगा।
1: What a tragedy, sir. मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा इंस्पेक्टर साहब। कभी नहीं देख पाऊंगा।
0: तसल्ली रखिए खन्ना साहब,
2: संगीता संगीता
3: तो तुम हो डियर?
2: हाँ, मैं हूं डार्लिंग। बैठे तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं।
3: बात इस समय क्या बात है?
2: कोई खास नहीं। क्या फोन ठीक हो गया?
3: फोन? हाँ हाँ, मैंने फोन की कंप्लेन की थी, मगर वो तो कह रहे थे हमारा फोन ठीक है।
2: हाँ तो वो ठीक कह रहे थे। संगीता, हमारा फोन खराब था ही नहीं।
3: क्या मतलब? तो फिर वो कॉल्स? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं।
2: तुम जानबूझकर समझना नहीं चाहती संगीता, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो।
3: नाराज क्यों होते हो? मगर ये क्या बात हुई?
2: डियर, बात ये हुई कि फोन सही था और जो कॉल्स उस पर आती थी ना, वो तुम्हारे लिए होती थी। और ये कॉल्स जो कि मेरे सामने आती थी और तुम उन्हें रॉन्ग नंबर कहकर फोन काटती थी, और जब मैं फोन अटेंड करता था ना, उधर से वो फोन काट देता था। मैंने तुम्हारी असलियत पता कर ली है, समझी? अब अगर तुम ये सिम कन्फेस कर लो तो अच्छा है, वरना।
3: कन्फेस? क्या कन्फेस? तुम्हें क्या उलझनू बोल रहे हो?
2: ये उलझनू है, ये बकवास है। क्यों झूठ पर झूठ बोल रही हो संगीता? Why don't you own your sin?
3: Sin? कैसा sin? क्या एक डिक्टेटर और पत्थर दिल हस्बैंड से अलग होकर जीने की कोशिश करना एक sin है? किसी अच्छे इंसान से प्यार करना एक sin है? क्यों सिकंदर, क्यों?
2: बिल्कुल sin है, 100% sin है। खैर जाने दो, अब ये सिन तुम नहीं कर पाओगी संगीता। मैंने सारा खेल खत्म कर दिया संगीता। ना बांस है ना बजेगी बांसुरी। एक बात याद रखना, मैं सिकंदर हूं सिकंदर। ना कोई मेरी चीज छीन सकता है और ना कोई मेरी चीज मुझे छोड़कर कहीं जा सकती है, समझी? तुम भी नहीं जा सकती संगीता, तुम भी नहीं।
3: I want divorce from you, सिकंदर। मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ।
2: डाइवोर्स? कहाँ जाओगी डाइवोर्स लेके? तुम्हारा प्रेमी तो he is no more dear and you have no choice, संगीता।
3: क्या? तुमने उसे मार डाला?
2: पता नहीं।
3: मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं खूनी के साथ नहीं रह सकती।
2: ठीक है, जाओ, चली जाओ, मगर आज दोपहर को जो सचमुच हुआ था ना, उसे तो सुनती जाओ संगीता। ये असली वाली कहानी तो पुलिस भी नहीं जानती।
3: तुमने उसे मार डाला, तुमने उसे कत्ल कर दिया सिकंदर।
2: नहीं डियर, बिल्कुल नहीं, वो तो एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट।
3: तुमने उसे मारा है? ओह नो, मैं जानती हूँ, तुमने उसका मर्डर किया है। और अब ये सब मुझे सुनाकर तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। मैं तुम्हें खूब जानती हूँ सिकंदर।
2: हाँ, अगर तुम मुझे जानती हो तो तुम्हें ये भी पता होगा ना कि कोई मुझसे मेरी चीज छीन नहीं सकता, और मैं हर कीमत पर अपनी चीजें अपने पास रखता हूं संगीता।

0: ज्यादा ड्रामा मत करो डार्लिंग, मत करो,
1: नहीं तो मुझे तुम पर सख्ती करनी पड़ेगी। यू नो
2: मैं पुलिस में जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगी।
1: संगीता वापस आओ।
2: नहीं मैं जा रही हूँ सिकंदर, मैं जा रही हूँ।
1: संगीता लौटाओ, देखो अगर मैं उठ गया ना पता नहीं क्या कर डालूंगा। प्लीज कम बैक लाइक ए गुड वाइफ, कम बैक।
2: मैं जा रही हूँ।
0: पुलिस क्या करेगी संगीता जब मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम हिस्टेरिक न्यूरोसिस के मरीज हो, तुम्हारे नींद की गोलियां और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी तो यही कहेंगे ना। फिर क्या होगा, फिर तो पुलिस भी लौट जाएगी। तुम लौट आई संगीता। लो मैं खुद ही आ रहा हूं।
3: गुड इवनिंग मिस्टर खन्ना।
0: अरे आप इंस्पेक्टर खान, वो भी मेरी वाइफ के साथ।
3: ये तो मुझे पोर्च में मिल गई थी, मैं खुद ही यहाँ आपके पास आ रहा था।
0: आइए आइए अंदर चलते हैं। कम इनसाइड डियर।
3: थैंक यू।
0: बैठिए बैठिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब आप चाय लेंगे कॉफी लेंगे?
3: नो थैंक यू, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मिस्टर खन्ना आपके दोस्त की लाश हमने रिकवर कर ली है।
0: इतनी जल्दी रिकवर कर ली? गुड वर्क इंस्पेक्टर साहब। क्या आप यही बताने के लिए मेरे पास आए हैं?
2: नाटक मत करो सिकंदर, तुमने तुमने उसे मारा है सिकंदर, तुमने।
0: प्लीज संगीता प्लीज कूल डाउन, कूल डाउन। मैं अभी तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब आई एम सॉरी, मेरी वाइफ को माफ कीजिएगा, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, दरअसल ये बीमार है, शी सफरिंग फ्रॉम हिस्टेरिक न्यूरोसिस।
3: तभी ये मर्डर वर्डर की कोई कहानी मुझे सुना रही थी।
0: डियर अब आप अंदर जाकर आराम कीजिए।
2: नहीं, मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी एक खतरनाक खूनी है।
0: ओह, देखो तुमने फिर वो चीजें देखनी शुरू कर दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती।
2: तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मर्डर किया है।
0: ओके, चलो अंदर चलते हैं। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं जरा इनको अंदर पहुंचा के आता हूं।
3: मगर मिस्टर खन्ना ये झूठ नहीं बोल रही है, आपने खून किया है, वहां लोग मौजूद थे, वहां एक नहीं पांच विटनेस थे जिन्होंने आपको खून करते हुए देखा है।
0: नहीं वहां कोई नहीं था, ये झूठ है, ये बकवास है।
3: वो पांच लड़कियां थी जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट्स, जिनका एक कैंप वहीं पास में लगा था, शायद मैंने आपको बताया भी था।
0: आप झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, आपने इस बीमार औरत की बकवास पर यकीन करके कहानी गढ़ी है। मगर मत भूलिए मेरे वकील अदालत में आपकी इल्जाम की धज्जियां उड़ा देंगे। ये औरत मेंटली सिक इंस्पेक्टर, और इसका बयान कोई कोर्ट कभी नहीं मानेगा। ठहरिए मैं आपको इसके इलाज के पर्चे और दवाइयां दिखाता हूं।
3: रहने दीजिए, पहले मैं ही आपको सब कुछ दिखा देता हूं। ये उन पांच लड़कियों के बयान की जेरोक्स है मिस्टर खन्ना, जो मौकाए वारदात पर अपनी दूरबीनों से बर्ड वॉचिंग कर रही थी, और जिन्होंने आपको अपने दोस्त को मार के नीचे ढकेलते और बाद में कार को भी झरने में फेंकते हुए देख लिया था।
0: ओह नो।
3: इतना ही नहीं, उनमें से दो लड़कियों के पास जूम लेंस वाले पावरफुल कैमरे भी थे, जिन कैमरों से उन्होंने आपका यह कारनामा कैद करके पुलिस को दे दिया है। We have that video with us, Mr. Khanna.
0: Bad luck.
3: तो Mr. सिकंदर खन्ना, मैं आपको Mr. राजधवन के मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ।
2: क्या सिकंदर, तुमने उस बेचारे राज को मार डाला, उसने क्या किया था?
0: वो innocent soul था। देखो संगीता, इस दुनिया में दो इनोसेंट सोल हैं, एक तुम हो जो अब सड़ोगी, और दूसरा तुम्हारा प्रेमी, तुम्हें ब्लैक कोर्स करने वाला वो राज धवन जो उस झरने में मरा पड़ा है।
2: मगर राज वो मेरा प्रेमी नहीं था, तुमने उस बेकसूर

0: हेलो हेलो, कौन? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ तो बोल। हेलो हेलो, तूने फिर से फोन कर दिया। हेलो,
1: ना कि तुमने बेवजह एक बेकसूर आदमी को मार डाला है। और सिकंदर, अब दुनिया का हर खून मुझे तुमसे डाइवोर्स ग्रांट करेगा। तुम खूनी हो, खूनी सिकंदर। तुम जेल में सड़ोगे और मैं तुम्हारे पास से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर।
0: वो आदमी है कौन?
1: ये तुम कभी नहीं जान पाओगे, कभी नहीं जान पाओगे सिकंदर।
2: चलिए मिस्टर सिकंदर खन्ना, जेल की कोठरी आपका इंतजार कर रही है। दरोगा जी, लगाइए हथकड़ी और ले चलिए इनको।

आप सुन रहे थे अभी नाटक अंजाम। आलेख था अतुल पारिजात का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत गुंजन।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

यू आर लिसनिंग आकाशवाणी आगरा। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन, और अगली पेशकश सुनिए सोनू निगम की आवाज में फिल्म गरम मसाला से।

उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में आपने सुना फिल्म गुप्त का ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीत में ढाला था विजू शाह ने, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हुए हैं। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। केंद्र परिसभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर नियमित आकाशवाणी प्रसारण के साथ हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र पर उपस्थित हैं। संध्या के 5 बजने को ही आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए मददगार हैं। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज आबूधाबी स्थित बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। आबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का अग्र केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर भक्तिपरक फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुर संध्या में। रोज की तरह कार्यक्रम युववाणी होगा 5:30 पर। आज के कार्यक्रम में तीव्र रेल रूपांतरण विषय पर होगी चर्चा। साथ ही सुनिएगा रचनात्मकता सिर्फ शौक नहीं अधिकार है विषय पर भावना सिंह की वार्ता। शाम 6:00 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्रामीलोक का। आज के कार्यक्रम में विकास की पहली सीढ़ी है शिक्षा और विश्व रक्तचाप दिवस जैसे विषयों पर होगी चर्चा। साथ ही डॉक्टर संदीप सिंह से सुनिएगा वार्ता। विषय रहेगा DAP खाद का संतुलित और सुरक्षित प्रयोग। कार्यक्रम मजदूर मंडल में आज की चर्चा में जानेंगे विश्व दूर संचार दिवस के बारे में। इसके अलावा नितेश वर्मा हमें बताएंगे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के विषय में। समय रहेगा 6:30। सात बजकर दस मिनट पर होगी वार्ता। विषय है बाल साहित्य के अस्तित्व का संकट और वार्ताकार हैं

राधा कृष्ण दीक्षित कार्यक्रम विविधा में 7:31 में आज के कार्यक्रम में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर विशेष भेंटवार्ता प्रस्तुत की जाएगी। विषय है उच्च रक्तचाप के कारण, लक्षण और इससे बचाव। और वार्ताकार डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल से बातचीत करेंगे अनिंद्र सिंह। रात्रि 10 बजे आनंद लीजिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का यह प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये तो था आज की सांध्यकालीन और सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब जानते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में क्या है खास। कल सुबह 6:05 पर होगा कार्यक्रम वंदना और 6:25 पर कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे यानी बेसेंट के विचार। गायक कलाकार सुरेश वाडेकर और रविंद्र साठे से सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान कल सुबह 6:35 पर। खेती की बातें क्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनिएगा चंद्रभान सिंह रावत से वार्ता। विषय रहेगा गर्मियों में खाली समय में किसान भाई क्या करें।

कल सुबह 7:10 का समय होगा स्वास्थ्य चर्चा का। कल के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बांझपन कारण और उपचार विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी डॉक्टर परिणीता बंसल। कल सुबह 7:31 का समय रहेगा आसपास की घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास का। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद उठाइएगा कार्यक्रम गीतांजलि में। समय 8:45। कल सुबह 9:45 का समय रहेगा लोक संगीत का और पंडित भीमसेन जोशी प्रस्तुत करेंगे ख्याल गायन कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में। समय 10:30। अभी आपने जाना आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी की आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:10:20। आइए अब आनंद लेते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का।

दोस्तों, ईश्वर के करीब होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके प्रति दयालु रहें, उसके साथ न्याय करें और उसके सभी प्राणियों के प्रति दया करते रहें, क्योंकि भरोसा सिर्फ हमें उसी ही पर है।

दोस्तों, ईश्वर एक है जो सत्य है, सृष्टिकर्ता है, निर्भय है, सर्वव्यापी सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान और अजरामर है और वो सभी में मौजूद भी है। तो आखिर उसका भजन गाए बिना कैसे रहे।

दोस्तों वो अल्लाह ही है जो सबसे पहले और सबसे बाद में है, वो सबके सामने भी है और वो सबसे छिपा हुआ भी है, वो दुनिया की हर शय का जानने वाला भी है। तभी तो हम उससे दुआ करते हैं कि ये अल्लाह हम सबको नेक राह चलाना मेरे अल्लाह।

अभी आपने सुना भक्ति भरा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। संध्या के 5:30 और 20 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्ते, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। हाजिर है आपकी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट एक साथ। पर उससे पहले कुछ हालचाल सुनाइए। संडे आराम वाला दिन, आई एम श्योर आप ना रिजुविनेटेड ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। वैसे आज के दिन को और भी इंटरेस्टिंग और स्पेशल बनाने के लिए मेरे पास एक खास तरीका है, एक ऐसा तरीका जो हमारी दूरियों को नज़दीकियों में भी बदल देगा। हाँ, अब आप कहेंगे अरे कनिका पहेलियाँ मत बुझाइए, जल्दी से बताइए। तो बता दूँ दोस्तों, आज से हम फ़ोन लाइंस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और आप अपनी पसंद के गाने की फरमाइश भी कर सकते हैं। हुआ ना स्पेशल मौका। चलिए बिना देरी किए आपको फ़ोन नंबर भी बता देती हूँ। फ़ोन नंबर है 0562-350-1852। दूसरा नंबर है 0562-970-337। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं जल्द ही आपसे कनेक्ट करूँगी और हम आपको सुनवाएंगे आपके पसंद के कुछ गीत। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के दिन के बारे में। दोस्तों, हम आज मना रहे हैं विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, जो कि हर साल 17 मई को मनाया जाता है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि इन्फॉर्मेशन और

0: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का सबसे बड़ा आधार बन चुकी है, और इस बात से आप भी एग्री करते हैं, हमारे हर कंफ्यूजन का इलाज पल भर में हमें मिल जाता है। किसी दूसरे देश में कॉल करनी हो या वीडियो कॉल, एक क्लिक में हो जाती है। पढ़ाई के लिए चाहिए हो, ट्रेडिंग करनी हो, बैंकिंग या हेल्थ केयर, इन सब में कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है ये डिजिटल नेटवर्क, इस पर हम बिल्कुल निर्भर हो चुके हैं। इवन आज देखिए, हमारा आपका मिलना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो हो पा रहा है। लेकिन हमें कभी कभी चैलेंजिंग सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें आज का दिन याद दिलाता है कि हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ही करना है और डिजिटल स्पेस को एक सेफ स्पेस बनाना है। वैसे दोस्तों, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इंडियन रेलवेज को भी बेहतर बनाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं, भारतीय रेल की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। पहले से तेज, सुरक्षित और अधिक कुशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कि हर दिन करोड़ों यात्रियों का सफर आसान और सुरक्षित बना रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी बुनियाद यानी कि रेलवे ट्रैक की। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने अपने बड़े पैमाने पर इन ट्रैक्स को अपग्रेड किया है। 2014 से लगभग 55,000 किलोमीटर को ट्रैक मजबूत बनाया गया है, जिससे ट्रेनों की स्पीड और स्टेबिलिटी में काफ़ी बढ़ोतरी आई है। अब रेलवे में नए और लंबे रेल पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे कम आते हैं यानी कि यात्रा ज़्यादा आरामदायक हो जाती है। अब रेलवे सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी से चल रही है। अल्ट्रासोनिक और डिजिटल इंस्पेक्शन सिस्टम की मदद से पटरियों की छोटी छोटी खराबी भी पकड़ ली जाती है, यानी कि दिक्कत बढ़ने का तो स्कोप ही ख़त्म। इसके साथ ही ट्रैक मेंटेनेंस अब और भी मॉडर्न हो चुका है। बड़ी बड़ी मशीन्स, रेल ग्राइंडिंग मशीन्स की मदद से काम सटीक और सुरक्षित हो गया है। दोस्तों, दिन प्रतिदिन हमें बदलाव तो दिखता जा रहा है, और ये भी दिख रहा है कि कैसे ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो है स्ट्रेंथन हो रहा है। इन्हीं बदलावों से इंडियन रेलवे काफ़ी ज़्यादा तेज़ और आगे बढ़ चुका है। वैसे दोस्तों, बातें तो हमारी यही चलती रहेंगी और हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन इस पल हम मिलने वाले हैं हमारे आज के पहले कॉलर से।
1: नमस्ते, आपका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। मेरी बात किन से हो रही है फिलहाल?
2: तान्या से।
1: तान्या, तो अपने कार्यक्रम में आपकी पसंद सेगमेंट में आपको सुनवाने वाले हैं आपका पसंद का गीत, लेकिन उससे पहले मुझे जानना होगा क्या है आपके पसंद का गीत, तो बताइए।
2: धुरंधर मूवी का जाइए सजना प्लीज प्ले कर दीजिए।
1: अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया का मोस्ट वायरल सॉन्ग आपने चुना है। लगता है आपको ये मूवी भी बड़ी पसंद है।
2: हाँ जी,
1: तो आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं धुरंधर मूवी से जाइए सजना।

0: नमस्ते, आपका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में।
1: वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आज का हमारा युवाणी कार्यक्रम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। वैसे इंटरेस्टिंग तो बहुत कुछ है दोस्तों, जैसे कि हमारी क्रिएटिविटी, और आप तो जानते ही हैं आज के समय में क्रिएटर्स इकोनॉमी को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। लोगों के टैलेंट को, उनकी स्किल्स को वो स्ट्रॉन्ग करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप को चुन रहे हैं, और इसमें जो मुकम्मल करने वाली जो ज़रिया है वो है हमारी क्रिएटिविटी। चलिए दोस्तों, क्रिएटिविटी के बारे में हम बातचीत करते हैं और हमारे आज की वार्ताकार भावना सिंह से मिलते हैं, जो कि हमें बताने वाली हैं रचनात्मकता सिर्फ शौक नहीं, अधिकार है।
2: दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अफसर बनो, लेकिन शायद ही हमसे और आपसे किसी ने यह पूछा हो कि तुम क्या बनना चाहती हो, तुम्हारे भीतर क्या है, तुम किस चीज को जीते हो। क्योंकि रचनात्मकता को अक्सर एक शौक, एक टाइम पास माना जाता है, जबकि यह हमारी आत्मा की आवाज होती है। रचनात्मकता वह शक्ति है जो समाज में नवाचार को जन्म देती है। आपको पता होगा कि जब किसी बच्चे को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपनी कल्पना को आकार देने का अवसर मिलता है, तब वह न केवल आत्मविश्वासी बनता है बल्कि समाज में भी कुछ नया बदलाव लाता है। दोस्तों, रचनात्मक उद्योग जिसमें कला, डिजाइन, फिल्म, टेलीविजन, साहित्य और संगीत जैसे क्षेत्र शामिल हैं, आज के समाज में संस्कृति और नवाचार जीवन की रेखा हैं। रचनात्मकता एक बौद्धिक संपदा है। इन क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा केवल कानूनी सुरक्षा से कहीं अधिक है। यह रचनात्मकता का सार है जो जुनून को बढ़ाता है और कलाकारों और रचनाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। इस प्रकार रचनात्मक उद्योगों में उनकी सुरक्षा की अनिवार्यता को समझना व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए सर्वोपरि है। दोस्तों, यह मान लेना कि रचनाएं केवल कलाकारों की बापौती हैं बहुत ही गलत बात होगी। रचनात्मकता सिर्फ कुछ रंग भर देने का नाम नहीं है, ये वो रोशनी है जो हमारी सोच को दिशा देती है। यह वो शक्ति है जो हमें भीड़ से अलग बनाती है। जब कोई बच्चा खाली पन्ने पर कुछ रंग बिखेरता है तो ये केवल खेल नहीं रहा होता बल्कि अपनी दुनिया गढ़ रहा होता है। आपने देखा होगा आज की तेज रफ्तार और आपस में जुड़ी दुनिया में रचनात्मकता एक मूल्यवान संपत्ति है जिसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। आप चाहे कलाकार, लेखक, संगीतकार या उद्यमी हो, आपके रचनात्मक प्रयास आपके अनूठे विचारों और कड़ी मेहनत का प्रतिबिंब हैं। मूल रूप से बौद्धिक संपदा की सुरक्षा में आपके रचनात्मक कार्यों और विचारों को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी और व्यवहारिक उपाय शामिल हैं, जिनमें आविष्कार, कलात्मक रचनाएं, ब्रांड नाम, लोगो और व्यापार का रहस्य शामिल है। अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करके आपको यह नियंत्रण करने का पूरा कानूनी अधिकार मिलता है कि आपकी रचनाओं का उपयोग और वितरण कैसे किया जाता है। यह सुरक्षा न केवल आपको अपने प्रयासों का

0: प्रतिफल प्राप्त करने की अनुमति देती है, बल्कि दूसरों को उचित प्राधिकरण के बिना आपके काम से लाभ उठाने से भी रोकती है। साथियों, आप ही बताइए, क्या अब्दुल कलाम की कल्पनाओं ने ही उन्हें महान वैज्ञानिक नहीं बनाया? क्या रवींद्रनाथ टैगोर की कविता सिर्फ शौक थी? और क्या अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी रचनात्मकता को नहीं जीते तो क्या हम बल्ब की रोशनी को जान पाते? नहीं ना, उन्होंने अपनी रचनात्मकता को एक अधिकार की तरह जिया और इसलिए वे इतिहास में अमर हो गए। हमें समझना होगा कि रचनात्मकता को दबाना एक आत्मा को चुप कराना है। यह हर बच्चे, हर युवा, हर इंसान का अधिकार है कि वह अपने विचारों को शब्दों में, रंगों में, सुरों में या किसी भी रूप में व्यक्त कर सके और उसका पूरा श्रेय ले सके। यह केवल कला, संगीत या लेखन तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उद्देश्य है। नए रचनात्मक विचारों से नए समाधान खोजना, नव प्रवर्तन करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना संभव है। आपको नहीं लगता कि हम लोग बार बार रचनात्मकता को विलासिता के रूप में देख रहे हैं, जिस पर केवल कुछ विशेष लोगों के ही गुण नजर आते हैं, जबकि यह नजरिया गलत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता की क्षमता होती है और इसे विकसित करने का उसे पूरा अधिकार है। चूंकि रचनाकारों और रचनात्मक उद्योगों में शामिल लोगों को तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक बाजार में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और वाणिज्यिक अवसरों को अधिकतम करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमारा मूल अधिकार है कि हम अपनी रचनात्मकता को पहचानें, उसे विकसित करें और समाज के विकास में अहम भूमिका निभाएं। युवा साथियों, जब भी हम रचनात्मकता की बात करते हैं तो हमें अक्सर यह बताया जाता है कि यह हमें रोजी रोटी नहीं देगा और शिक्षा प्रणाली के साथ हमें प्रश्नों को रटने और अंक प्राप्त करने तक सीमित कर दिया जाता है। दोस्तों, आज हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो छात्रों को उनका अधिकार प्राप्त करा सके, जहां वे समझें, प्रश्न करें और अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। आज के समय में जब पूरी दुनिया नवाचार की ओर अग्रसर हो रही है, तो हमें भी यह समझना होगा कि रचनात्मकता को बढ़ावा देना केवल आवश्यकता नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। रचनात्मकता न केवल आत्मविश्वास का माध्यम है बल्कि समाज को आगे बढ़ाने की एक सशक्त शक्ति भी है। इसे शौक तक सीमित करना अन्याय होगा, यह बात हमें समझनी होगी। इसीलिए यह जरूरी है कि हम रचनात्मकता को एक अधिकार की तरह देखें और हर किसी को इस अधिकार का प्रयोग करने का अवसर दें। हम और आप सभी यह जानते हैं कि एक रचनात्मक समाज ही प्रगति कर सकता है। जब लोग नए विचारों को अपनाते हैं और प्रश्नों के नए समाधान खोजते हैं, तब समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है। साथियों, चाहे आप एक स्थापित कलाकार हों, एक उभरती हुई रचनात्मक प्रतिभा हों या रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायी हों, अपने उद्योग में बौद्धिक संपदा की पेचीदगियों को समझना सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बौद्धिक संपदा सॉलिसिटरों के साथ मिलकर काम करके आप अपने रचनात्मक प्रयासों की सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं, व्यवसायिक अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और प्रतिस्पर्धी रचनात्मक परिदृश्य में संस्कृति और नवाचार के विकास में योगदान देना जारी रख सकते हैं। एक रचनात्मक व्यक्ति या संस्था के रूप में आपके पास विभिन्न बौद्धिक अधिकार होते हैं जो आपको अपनी रचनाओं पर विशेष नियंत्रण प्रदान करते हैं। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि रचनात्मकता केवल एक शौक नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। रचनात्मकता कोई लग्जरी नहीं, कोई टाइम पास नहीं, हमारी पहचान है, हमारा अधिकार है। हमें इसे पहचानना, स्वीकार करना और प्रोत्साहन देना चाहिए। एक रचनात्मक समाज ही सशक्त, समृद्ध और प्रगतिशील हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसे सिर्फ शौक बनाकर मत जिए, इसे खुलकर अपनाएं और अपनी रचनात्मकता से इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाएं।
1: बहुत खूबसूरत कहा अभी भावना जी ने कि अपनी रचनात्मकता से हम इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब जरा खेल दुनिया सेगमेंट में आपको ले चलते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में, जो कि हमारे यहाँ हमारे देश की पावर करें।

दोस्तों सोचिए, जो खिलाड़ी होते हैं उनको बेहतर ट्रेनिंग मिले, उनको एक अच्छे कोच मिले, उनको मॉडर्न खेल सुविधाएं मिले और अच्छे इंस्ट्रूमेंट मिले, यही सारी चीज़ें तो हम सभी चाहते हैं ना। और इन सभी कामों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष व्यवस्था है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय खेल विकास कोष, यानी कि NSDF, जिसकी स्थापना 1998 में चैरिटेबल एंडाउंसमेंट एक्ट 1890 के तहत की गई थी।

0: इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में खेलों को मजबूत बनाना और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करना। इस कोच को सरकार, निजी कंपनियों, NRI और दान देने वाली संस्थाओं के सहयोग से फंड मिलता है। NSDF सिर्फ फंड बल्कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, कोचिंग, खेल ढांचे का विकास, उपकरण उपलब्ध कराना और खेलों पर रिसर्च को भी बढ़ावा देता है ना दोस्तों। ये हमें एक आगे बढ़ाने वाला एक मजबूत सहारा है NSDF। चलिए दोस्तों, अब ज़रा हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा। दोस्तों, आज है 17 मई और आज के दिन एक और दिवस मनाया जाता है जो कि है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। ये दिन उच्च रक्तचाप जागरूकता माह का हिस्सा है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की धमनियों में रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता फैलाना और इसकी पहचान को बढ़ावा देना, इसके रोकथाम व नियंत्रण के उपाय को समझना। चलिए दोस्तों, हम भी अपनी समझ को गहरा बनाते हैं और आज के हम सफर से मिलते हैं।
1: आपका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में, आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं हम। क्या मैं जान सकती हूँ किसने कॉल किया है?
2: जी, मैं सनी कुमार बोजो बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार के चढ़ुआ गांव से।
1: अरे वाह, तो सनी आप हमें बिहार से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन करके। तो फिलहाल वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम में आपकी पसंद सेगमेंट का और हम जानना चाहेंगे कि आप कौन से गीत की फरमाइश करना चाहते हैं।
0: हमारे साथ हैं न्यूट्रिशनिस्ट गरिमा जी, स्वागत है आपका।
3: जी कनिका जी, थैंक यू।
0: जैसे कि आप जानते हैं हम आज हाई ब्लड प्रेशर डे मना रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हमारे ईटिंग पैटर्न्स, खान पान की आदतें किसी प्रकार ब्लड प्रेशर पर असर डालती हैं?
3: जी बिल्कुल, अगर हम हाई बीपी की बात करें तो हमारा डेली खाना पीना ब्लड प्रेशर पर सीधा इफेक्ट करता है। जैसे अगर हम ज्यादा नमक वाली चीजें खा लें, नमकीन हुआ, पापड़ हुआ, चार फ्राइड स्नैक्स हुए या फिर कोई भी प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड, ये अगर हम ज्यादा खाते हैं तो बॉडी में सोडियम बढ़ सकता है और सोडियम बढ़ने से क्या होता है, वाटर रिटेंशन। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि ब्लड वेसल्स पर बेसिकली प्रेशर पड़ता है। तो खाने के अलावा अगर हम देखें कि क्या क्या हाई बीपी कर सकता है, उसमें रात को हैवी डिनर करना हो गया या टाइम पर खाना खाना ना हुआ, या अगर आप डाइट में फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, वेजिटेबल्स कम ले रहे हैं, फाइबर कम ले रहे हैं या चाय कॉफी ज्यादा ले रहे हैं, तो ये भी बीपी को अफेक्ट करते हैं। या फिर आप ओवरवेट हो या ओबीज हो और डाइट के अलावा स्ट्रेस हो गया, नींद की कमी हो गई या फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, ये सब चीजें भी है जो हाई बीपी के रीजंस हो सकते हैं।
0: जी, ये तो बात हो गई रीजंस की, लेकिन एक बात जो हम सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम कैसे हाई ब्लड प्रेशर से बचाव कर सकते हैं?
3: बिल्कुल, एज यू सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज इट इज। तो हाई बीपी से बचने के लिए सबसे पहले अपने डेली हैबिट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे खाने में नमक कम करें और जितना भी प्रोसेस्ड फूड होता है वो अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड ना करें, पार्ट ना बने डेली लाइफ का। शुगर इनटेक भी कम रखना है हमें, इनकी जगह घर का सिंपल और नेचुरल खाना लें, फ्रेश फूड्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड, दाल, स्प्राउट्स, कर्ड या होल ग्रेन्स, फाइबर रिच फूड लें। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बीपी फ्रेंडली डाइट वही है जिसमें नमक कम

0: ज्यादा हो और प्रोसेस्ड फूड कम हो।
1: जी
0: और इनके अलावा अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो अपनी डेली लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस, जैसे रोज मॉर्निंग वॉक्स पर जाएं, थोड़ा योगा करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, अपना डेली स्ट्रेस लेवल कम रखें, उसको मैनेज करें, ये सब भी हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं।
1: जी तो छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आ सकते हैं। मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस विशेष दिन पर आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मेरा मैसेज लिसनर्स को बस यही होगा कि हाइपरटेंशन बेसिकली बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन ये धीरे धीरे बीमारी डेवलप होती है। तो इसको डेवलप ना करने के लिए आप अपनी डेली लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए और अपनी जो एक्टिविटीज है लाइफ की उसमें इंटरेस्ट लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए फिरिए, थोड़ा इंजॉय कीजिए लाइफ को, लेकिन खाने पीने का ध्यान रख, जो बाहर हमें प्रोसेस्ड फूड मिलता है उसको अवॉइड करें।
1: थैंक यू गरिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।
0: जी थैंक यू सो मच।
1: तो दोस्तों आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि हमारा ये जो गलत खान पान है, अधिक नमक खाना, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कई सारे रोगों को मिटा देता है और जो कि कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी बन सकता है। इसलिए आप संतुलित आहार लें, तनाव नियंत्रण में रखें और ब्लड प्रेशर की जांच समय समय पर करवाते रहें। चलिए दोस्तों, एक बार फिर बारी आ चुकी है हमारे आज के अगले कॉलर से मिलने की।
2: आपका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में, आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं हम। क्या मैं जान सकती हूँ किसने कॉल किया है?
3: जी मैं सनी कुमार बोजो बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार के चढ़वा गांव से।
2: अरे वाह, तो सनी आप हमें बिहार से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन करके। तो फिलहाल वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम में आपकी पसंद सेगमेंट का, और हम जानना चाहेंगे कि आप कौन से गीत की फरमाइश करना चाहते हैं।
3: जी तो मेरा एक फेवरेट गाना है इन दिनों, दिल ही तो स्काई पिंक है, ये गाना सुनना चाहते हैं।
2: अच्छा, बहुत ही बेहतरीन गाना आपने चुना है एक उम्दा मूवी से। तो सनी आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं ये गाना।
3: थैंक यू।

दोस्तों, एक बात तो हम सभी जानते हैं, स्वस्थ समाज और सभ्य समाज किसी भी देश की प्रगति की सबसे मजबूत नींव होते हैं। जब लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तभी एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। तो क्यों ना दोस्तों, हम आज के इस दिन पर डिसाइड कर लें कि अब से हम हेल्दी और माइंडफुल एक्टिविटीज़ को अपने रूटीन में उतार लेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल घड़ी की सुइयां कर रही हैं इशारा कि हम आपसे जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही नॉलेज रिच बातों के साथ। आप सभी सुनते रहिए, बने रहिए आकाशवाणी आगरा पे। आपकी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह का नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। संध्या के 6 बज चुके हैं और प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक

राम राम किसान साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना दैनिक कार्यक्रम ग्रामीलोक और मैं हूं आपकी रेडियो बहन सोमा जैन। हर दिन की तरह आज भी कार्यक्रम में लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी जानकारियां। वैसे आज का हमारा एक कार्यक्रम और भी खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे तीन ऐसे विषयों की जो हमारे गाँव, हमारे परिवार और हमारे भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे शिक्षा की, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस की और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की। किसान साथियों, यदि कोई पूछे कि गांव का असली विकास कैसे होता है तो उसका जवाब है शिक्षा, सही जानकारी और अच्छे स्वास्थ्य से। अगर शिक्षा होगी तो समझ होगी, अगर सही जानकारी होगी तो प्रगति होगी और अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मेहनत और खुशहाली दोनों बनी रहेगी। तो है ना, ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई और हमारे खुद के विकास के लिए बहुत जरूरी। किसान

साथियों, आज समय बदल रहा है। पहले खेती केवल अनुभव से चलती थी, अब जानकारी और तकनीक भी उतनी ही जरूरी हो गई है। आज हमें जानना पड़ता है कि मौसम कब बदलेगा, कौन सा बीज बेहतर है, मिट्टी की जांच कैसे होगी, कौन सी सरकारी योजना चल रही है, फसल का सही दाम कहाँ मिलेगा, यानी ऐसी कितनी ही जानकारियाँ आज के समय की जरूरत है। और ये सब संभव होता है शिक्षा से। जी हाँ, शिक्षा से। आज यदि किसान पढ़ा लिखा है तो वो बैंक का काम खुद कर लेता है, ऑनलाइन आवेदन भर सकता है, सरकारी योजना की जानकारी ले सकता है। ऐसे में बिचौलियों से बचकर वो बेवजह रुपया भी नहीं खर्च करता। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, शिक्षा जीवन को समझने की ताकत देती है। शिक्षा का मतलब है सही और गलत की पहचान, अपने अधिकार समझना, नई तकनीक सीखना और जीवन को बेहतर बनाना। अगर हम किसान साथी मौसम की जानकारी सीख लें, मोबाइल का उपयोग सीख लें, तो पूरा गांव बदल सकता है। शिक्षा इन सब चीज़ों को सीखने की ताकत देती है। इसलिए संकल्प लो कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। भाई, बेटियों की शिक्षा भी बेटों की शिक्षा की तरह बहुत ज़रूरी है। बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना है और अपने गांव के हर बच्चे को, हर व्यक्ति को शिक्षित बनाना है। ये तो रही बात शिक्षा की, चलो अब बात करते हैं आज के दिन की। साथियों, आज 17 मई है और हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। आज के दिन का उद्देश्य है लोगों को ये समझाना कि सूचना और संचार तकनीक यानी मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं समाज को आगे बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण है। आज मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं है, आज मोबाइल से हम मौसम की जानकारी ले सकते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं और बैंक का काम भी मोबाइल से हो सकता है। और तो और, सरकारी योजनाओं के बारे में भी हमें मोबाइल से जानकारी मिल सकती है। और हमारा आकाशवाणी का ये कार्यक्रम भी तो मोबाइल ऐप पे सुना जा सकता है। किसान साथियों, आज भले ही मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का समय है, लेकिन एक समय ऐसा था जब जानकारी का सबसे बड़ा सहारा रेडियो हुआ करता था। आज भी गांव में शाम को हम रेडियो से समाचार सुनते हैं, खेती की जानकारी लेते हैं, मौसम जानते हैं, गीत संगीत सुनते हैं। अभी आपकी हमारी बातचीत भी तो रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम में हो रही है। संचार और जानकारी समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। दूर संचार का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक सूचना पहुंचाना। साथियों, पहले चिट्ठियां आई, फिर टेलीफोन आया, मोबाइल और इंटरनेट सब आए, लेकिन इन सब के बीच रेडियो ने हमेशा लोगों तक सबसे जल्दी, सरल और विश्वसनीय तरीके से संदेश पहुंचाया। हमारा रेडियो सस्ता है, बिजली कम खर्च करता है और दूर दराज गांवों तक भी पहुंच जाता है। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दिल से जुड़ता है। कई लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन रेडियो सुन सकते हैं। आज भी कई जगह इंटरनेट नहीं पहुंचता, पर हमारे रेडियो की आवाज़ पहुँच जाती है। इसलिए ये सच है कि आज भी रेडियो समाज को जोड़ने और जागरूक करने का एक मजबूत माध्यम है और इसकी खबरें जो है वो विश्वसनीय है। ये तो हमें रखना चाहिए कि हमें जो सूचना मिल रही है उस पर ऐसे ही भरोसा नहीं करें, कहीं किसी गलत अफवाह पर भरोसा तो नहीं कर रहे, इसकी जानकारी हमें हमेशा होनी चाहिए। तकनीक तभी लाभ देती है जब उसका सही उपयोग हो, इसलिए अनजान लोगों को बैंक की जानकारी नहीं दे, बच्चों को ज़रूरत के अनुसार ही मोबाइल दे। किसान साथियों, अगर शिक्षा नहीं होगी तो तकनीक का सही उपयोग मुश्किल हो जाएगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सही जानकारी पहचान सकता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकता है और नए अवसरों का लाभ उठा सकता है। में शिक्षा और तकनीक दोनों साथ साथ चलती है।

0: 2017 में ही है, यानी आज का दिन विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस तो मनाया ही जाता है, साथ ही आज के दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में भी याद रखते हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अक्सर जो लोग इस समस्या से गुजर रहे होते हैं वो कहते हैं, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन ये बीमारी चुपचाप दिल, दिमाग और किडनी पर असर डालती है। सर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, जल्दी थक जाना, नींद ठीक से ना आना, ये सब लक्षण यदि बार बार हो तो हमें जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। हम किसान बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कई बार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। अक्सर यही सोचते हैं, अभी काम जरूरी है, बाद में देखेंगे। पर याद रखो साथियों, अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो मेहनत भी रुक जाएगी। इसलिए जरूरी है समय पर भोजन करें, ज्यादा नमक और तेल से बचें, रोज थोड़ी सी कसरत, व्यायाम या योग करें। हाँ, सबसे जरूरी है कि आपको तनाव से बचना है। कुछ भी परेशानी लगे तो रक्तचाप की जांच जरूर। अच्छा गांव वही है जहाँ बच्चे पढ़े लिखे हों, किसान जानकारी से खेती करता हो, महिलाएं जागरूक हों और सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य तो समाज आगे बढ़े। शिक्षा अंधकार से प्रकाश को ले जाती है, जानकारी प्रगति का रास्ता है, अच्छा स्वास्थ्य जीवन को मजबूत बनाता है। इसलिए स्वास्थ्य का बच्चों को शिक्षा दें, तकनीक यानी जानकारी संचार का उपयोग करें। तो भाई आज इस बात पर आपको भी कुछ जानकारी देते हैं, भाई कार्यक्रम में हम आपको बात बताते हैं। तो आइए अब हम कार्यक्रम में आपको डीएपी खाद के संबंध में जानकारी देते हैं। अपनी वार्ता, खेती में खाद का उपयोग तो हम सब करते हैं भाई, वो जरूरी है, पर खाद पॉलिसी डाली जाए, कब डाली जाए, कैसी हो, कितनी हो, इन प्रश्नों की अगर सही जानकारी हमारे पास हो तो हमारी फसलें हमें अधिक लाभ देंगी और होगी भी स्वस्थ। इसी उद्देश्य से आपको डॉक्टर संदीप की वार्ता सुनवाते हैं। विषय है डीएपी खाद का संतुलित और सुरक्षित प्रयोग।
1: मैं डॉक्टर संदीप सिंह आपसे किसान भाइयों बात करूंगा डीएपी खाद का संतुलित और सुरक्षित प्रयोग। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन और देश की खाद्य सुरक्षा काफी हद तक खेती पर निर्भर करती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न उत्पादन, अनाज आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों ने आधुनिक कृषि तकनीकी को अपनाया है और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इन रासायनिक उर्वरकों में डीएपी खाद का विशेष स्थान है। लगभग हर किसान इस उर्वरक का नाम जानता है और अधिकांश किसान इसका उपयोग भी करते हैं। कई किसान तो बुवाई के समय सबसे पहले डीएपी की व्यवस्था करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बिना अच्छी फसल संभव नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, यह समझना बहुत आवश्यक है कि कोई भी उर्वरक तभी तक लाभकारी होता है जब तक उसका उपयोग संतुलित मात्रा में और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। यदि उर्वरकों का प्रयोग अंधाधुंध या असंतुलित प्रयोग किया जाता है तो वह मिट्टी, फसल, पर्यावरण और किसान की आर्थिक स्थिति सभी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। डीएपी खाद क्या है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसका महत्व क्या है, इसका संतुलित एवं सुरक्षित उपयोग कैसे करें और अधिक प्रयोग से क्या नुकसान हो सकता है और

टिकाऊ कृषि के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कि डीएपी क्या है। डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। यह एक प्रमुख रासायनिक उर्वरक है जिसमें मुख्य रूप से दो पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। सामान्यतः डीएपी में लगभग 18% नाइट्रोजन और 40% फॉस्फोरस पाया जाता है। यही कारण

हैं। यह विशेष रूप से फसल की शुरुआती वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि पौधों के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन पौधों को हरित वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। यह क्लोरोफिल निर्माण में सहायता करता है। क्लोरोफिल वही तत्व है जो पौधों को हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संभव बनाता है। जब पौधों को पर्याप्त नाइट्रोजन मिलती है तो उनकी पत्तियां हरी भरिया रहती हैं, पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और तनों का विकल्प तेज होता है। नाइट्रोजन पौधों की कोशिका वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब बात करते हैं हम फास्फोरस की। फास्फोरस पौधों की जड़ों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पौधों को मजबूती प्रदान करता है। बीज अंकुरण, पुष्पन, फलन और दोनों के विकास से इसकी बड़ी भूमिका होती है। फास्फोरस पौधों में ऊर्जा संचरण की क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। यदि पौधों को पर्याप्त फास्फोरस ना मिले तो उसकी जड़ कमजोर रह जाती हैं और पौधे ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि किसान बुवाई के समय डीएपी का उपयोग आधार खाद के रूप में करते हैं। किसान भाइयों, भारत में गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, सरसों, चना, अरहर, मूंग, सब्जियों तथा कई फसलों में डीएपी का व्यापक प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति के बाद जब अधिक उत्पादन वाली किस्मों का प्रयोग बढ़ा तब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी तेजी से बढ़ा और डीएपी किसानों की पहली पसंद बन गया। डीएपी के कई लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि फसल की शुरुआती वृद्धि को तेज करता है, बीज अंकुरण अच्छा होता है और पौधे जल्दी मजबूत बनते हैं। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है कि डीएपी जड़ों के विकास में सहायता करता है। मजबूत जड़ें पौधों को मिट्टी से अधिक पानी और पोषक तत्व लेने में मदद करती है। किसान भाइयों, तीसरा लाभ है उत्पादन में वृद्धि। संतुलित मात्रा में डीएपी का उपयोग से गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा लाभ यह है कि फास्फोरस दोनों की गुणवत्ता सुधारता है, जिससे अनाज भरा हुआ और चमकदार बनता है। किसान भाइयों, अब हमें इस विषय के दूसरे पक्ष को भी समझना होगा कि आज कई किसान अनुशंसित मात्रा में कहीं अधिक डीपी का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ किसान यह मानते हैं कि अधिक खाद डालने से अधिक उत्पादन मिलेगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। अत्यधिक डीएपी के प्रयोग से मिट्टी का पोषण संतुलन बिगड़ने लगता है। डीएपी में पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होते। यदि किसान लगातार केवल डीएपी और यूरिया का ही प्रयोग करते रहें तो मिट्टी में जिंक, सल्फर, आयरन और पोटाश जैसे आवश्यक तत्वों की कमी होने लगती है। आज देश में कई क्षेत्रों में जिंक की कमी गंभीर समस्या बन चुकी है। जिंक की कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। सल्फर की कमी विशेष रूप से तलनी फसलों में दिखाई देती है। इससे तेल की मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की जैविक गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होने लगती है। मिट्टी कठोर हो सकती है और उसमें कार्बन की मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता घटने लगती है। परिणाम ये होता है कि किसान को हर वर्ष अधिक उर्वरक डालना पड़ता है, लेकिन उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती है। अत्यधिक डीएपी उपयोग का प्रभाव केवल मिट्टी तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। अत्यधिक फास्फोरस वर्षा या सिंचाई के पानी के साथ बहकर तालाबों, नदियों और जल स्रोतों तक पहुंच जाता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। किसान भाइयों,
डीएपी

का संतुलित उर्वरक प्रयोग समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि डीएपी का संतुलित उपयोग कैसे किया जाए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है मिट्टी परीक्षण, क्योंकि इसके माध्यम से खेत की मिट्टी में उपलब्ध प्रमुख एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की वास्तविक स्थिति ज्ञात होती है। मिट्टी परीक्षण यह निर्धारित करती है कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर तथा अन्य आवश्यक तत्वों की उपलब्धता कितनी है और कितनी तत्वों की कमी है। इसके आधार पर किसान फसल की आवश्यकता एवं मिट्टी उर्वरकता के अनुसार संतुलित और वैज्ञानिक उर्वरक प्रबंध अपना सकते हैं। बिना मिट्टी परीक्षण के उर्वरकों का प्रयोग अनुमान के आधार पर किया जाता है, जिससे पोषण, उत्पादन लागत में वृद्धि और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक या अनावश्यक उर्वरक प्रयोग से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी की जैविक सक्रियता की कमी तथा पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। मिट्टी परीक्षण से सही उर्वरक एवं उनकी उचित मात्रा का निर्धारण संभव होता है, जिससे उर्वरकों पर प्रयोग होने वाला व्यय कम होता है, फसल उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है तथा मिट्टी की दीर्घकालीन उर्वरकता बनी रहती है। इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें मिट्टी का निशुल्क वैज्ञानिक परीक्षण करें उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है। इस कार्ड में मिट्टी की पोषक स्थिति, पीएच, ईसी, जैविक कार्बन तथा आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी के साथ फसलवार उर्वरक अनुशंसाएं दी जाती हैं, जिससे किसान संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपना कर टिकाऊ, लाभकारी एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि कर सकते हैं। डीएपी डालने की सही विधि क्या है? डीएपी का अधिकांश उपयोग बुवाई के समय आधार खाद के रूप में किया जाता है। इसे मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर डालना चाहिए। यदि इसे कतारों में उचित दूरी पर डाला जाए तो पौधों को पोषक तत्व अधिक आसानी से उपलब्ध होंगे। डीएपी का लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर डालना लाभकारी माना जाता है। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर डीएपी का प्रभाव बेहतर होता है, सूखी मिट्टी में इसका प्रभाव कम हो सकता है। किसान भाइयों, अब विभिन्न फसलों में डीएपी के उपयोग के बात करते हैं। गेहूं में डीएपी का उपयोग बुवाई के समय में किया जाता है। इसे प्रारंभिक वृद्धि अच्छी होती है और पौधे मजबूत बनते हैं। धान में रोपाई के समय खेत की तैयारी के समय डीएपी डालना लाभकारी होता है। इससे पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं और कल्ले अधिक निकलते हैं। मक्का में फास्फोरस की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए डीएपी का संतुलित उपयोग पौधों की बढ़वार और दोनों के विकास में सहायक होती है। दलहन फसलों में कम मात्रा में डीएपी उपयोग होती है, इससे जड़ों में ग्रंथियां और विकास अच्छा होता है। सरसों और अन्य तिलहनी फसलों में फास्फोरस तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। प्रिय किसान भाइयों, उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, सही समय पर उर्वरकों का प्रयोग। फसल की आवश्यकता के अनुसार सही समय पर उर्वरक डालने से पोषक तत्वों का उपयोग बेहतर होता है। दूसरा, सही विधि अपनाना। ब्रॉडकास्टिंग की बजाय कतारों में उर्वरक डालना अधिक लाभकारी होता है। तीसरा है सिंचाई प्रबंध। उर्वरक डालने के बाद उचित सिंचाई करके पोषक तत्व पौधों तक आसानी से पहुंचते हैं। चौथा है जैव उर्वरकों का प्रयोग। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और पीएसबी जैसे जैव उर्वरक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक करते हैं। किसान भाइयों, जागरूकता बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करना आवश्यक है। सही मात्रा, सही समय, सही उर्वरक के संकल्प के साथ देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो लाखों किसानों तक संतुलित उर्वरक उपयोग का संदेश पहुंचाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य संरक्षण एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी

0: परीक्षण आधार उर्वरक संबंध प्रबंधन संतुलित एनपीके उपयोग पर जैविक एवं जैव उर्वरकों के प्रयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। किसानों रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक उपयोग को कम करने हेतु नैनो यूरिया नैनो डीएपी नैनो उर्वरकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो पोषण तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ाने लागत कम करने और पर्यावरण प्रदूषण घटाने में सहायक है। इसलिए किसान भाइयों हमेशा कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उर्वरक प्रबंधन अपनाएं, विशेषकर डीएपी का प्रयोग करते समय। किसान भाइयों एवं बहनों कृषि और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि हम मिट्टी और पानी की सुरक्षा नहीं करेंगे तो भविष्य में खेती करना कठिन हो जाएगा। धन्यवाद।
1: साथियों अभी हमने सुनी डॉक्टर संदीप सिंह से वार्ता, विषय था डीएपी खाद का संतुलन, संतुलित और सुरक्षित प्रयोग। हमने जाना कि कृषि और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहाँ सही खाद का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है वहाँ हम ये भी मानते हैं जो कृषि है और पर्यावरण उनका आपस में बहुत अच्छा संबंध है। पर्यावरण का संबंध सिर्फ कृषि से ही नहीं, हमारे जो तीज त्यौहार है साथियों उनसे भी होता है। जी हाँ, हमारी लोक धरोहर में अगर हम बात करें तो हमारी जो धरोहर में हमारे त्यौहार आते हैं कहीं ना कहीं वो हमें पर्यावरण से प्रेम सिखाते हैं। अब अगर हम बात करें तो साथियों हमारे ये जो त्यौहार होते हैं वो सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम होते हैं। हमारे ये त्यौहार हमें प्रकृति की रक्षा करना भी सिखाते हैं और ऐसा ही एक त्यौहार जो भारतीय संस्कृति परिवार और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व को दर्शाता है हमने बीते कल मनाया। जी साथियों बीते कल हमने वट सावित्री का व्रत मनाया। गाँव में ये व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये व्रत भारतीय नारी की श्रद्धा विश्वास प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वट यानी बरगद का पेड़। हमारी संस्कृति में बरगद के पेड़ को दीर्घायु स्थिरता और जीवन का प्रतीक माना गया है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और सूत बांधकर अपने परिवार के सुख दुख की कामना करती हैं। हमारे व्रत सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि महिलाओं के मिलने जुलने लोकगीत गाने और एक दूसरे के सुख दुख बांटने का अवसर भी बनते हैं। कहते हैं सावित्री ने अपने पति सत्यवान के पुण्य जीवनदान के लिए यमराज को प्रसन्न किया। ऐसे व्रत सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं होते बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम भी बनते हैं। सुबह सुबह महिलाएं स्नान करके नए वस्त्र पहनती हैं, पूजा की थाल सजाती हैं, फल फूल रोली दीपक और सूत लेकर वट वृक्ष के पास जाती हैं और वहां मिलकर गीत गाती हैं, पूजा करती हैं। ये व्रत हमें परिवार का सम्मान, रिश्तों की मजबूती और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी सिखाते हैं। हमें समझना होगा कि परिवार की खुशहाली सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। पति पत्नी दोनों का सम्मान, सहयोग और विश्वास ही परिवार को मजबूत बनाता है। वट सावित्री व्रत हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है। बरगद का पेड़ केवल पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए इस पर्व पर हमें एक संकल्प और लेना चाहिए और वो ये कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उन पेड़ों की रक्षा भी करेंगे। साथियों आज की हमारी नई जो पीढ़ी है वो आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपराओं को याद रखना भी उतना ही ज़रूरी है। त्यौहार हमें जड़ों से जोड़ते हैं। जब बच्चे घर में वट सावित्री जैसे पर्व देखते हैं तो उन्हें परिवार संस्कार और हमारी जो संस्कृति है उसकी समझ आती है और यही खास बात है हमारे इन लोक धरोहरों की। तभी इस लोक धरोहर को बचाना हमारा कर्तव्य है।

हमारी लोक धरोहर, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। तो साथियों, अपनी इस पहचान को हमें बनाकर रखना है, अपने बच्चों को इनके बारे में बताना है, तभी तो हम अपने कार्यक्रम में इन धरोहरों की बात भी करते हैं। तो आज हमने कार्यक्रम में आपसे बहुत सारी बातें करी किसान भाइयों और बहनों। हमने बात करी शिक्षा की, कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमने बात करी कि आज के वक्त की ज़रूरत है कि हमें हर चीज़ की जानकारी हो, सूचना हमारे पास हो, और हाँ, सेहत बहुत ज़रूरी है, अपने बीपी का ध्यान रखें। आगे कल फिर आपसे मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो बहन सोमा जैन को दीजिए आज्ञा और स्वीकार करें मेरा राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक। मिलियन देव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 और 18 सेकंड हुए हैं। अब समय है मजदूर भाइयों के दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपके रेडियो साथी रिंकू चौरसिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही खास कार्यक्रम मजदूर मंडल में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब भाई? आप लोग इस तपती गर्मी में अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल तो रख रहे हैं ना? क्योंकि भाई आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है और हम तो बस यही चाहते हैं कि आप सब लोग इस गर्म मौसम में अपने साथ साथ अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें, ख्याल रखें, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। तो चलिए साथियों, आगे की चर्चा करने से पहले अब हम पूछ लेते हैं आपसे आज का प्रश्न। साथियों, आज का प्रश्न है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, इस प्रश्न का जवाब हम आपको चर्चा के अंत में देंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए अपने इस खास कार्यक्रम मजदूर मंडल का। साथियों, आनंद से याद आया कि अगर हम बात करें पुराने समय की, तो तब ना तो हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, ना कोई रेडियो और ना ही इंटरनेट जिससे हम अपना मनोरंजन कर सकें, और ना ही कोई ऐसी तकनीकी सुविधा होती थी जिससे कि हम दूर शहर में रह रहे अपने परिवार के लोगों या फिर मित्रों से बात कर पाए, है ना साथी? उस पुराने समय में अगर किसी को अपने परिवारजन से बात करनी होती थी या कोई सूचना भेजनी होती थी, तो वे पत्र और दूतों का सहारा लेते थे। तब एक संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में महीनों तक का समय लग जाता था। लेकिन साथियों, आज के समय में तकनीकी सुविधा के चलते हर चीज़ संभव और सुलभ हो पा रही है। आज हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से हम कुछ ही सेकंड में दुनिया की किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से आसानी से जुड़ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, जो कि दूरसंचार तकनीकी की सबसे बड़ी देन है, जो कि आज के समय में दुनिया भर के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं दूरसंचार, क्योंकि आज है विश्व दूरसंचार दिवस, जो कि आज ही के दिन यानी कि 17 मई को विश्व भर में मनाया जाता है, जिसको मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को सूचना और संचार के महत्व के बारे में जागरूक करने के साथ दुनिया के सभी हिस्सों में रहने वाले लोगों तक इंटरनेट और उन्नत तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति डिजिटल क्रांति से अछूता ना रह जाए। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, आज दूरसंचार तकनीकी की सुविधा हर जगह उपलब्ध है, जो कि आज हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही बन चुकी है। और यदि बात करें साथियों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, तो आज दूरसंचार की क्रांति ने गांव और शहर के बीच की खाई को पाटकर गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों को ही बदल दिया।

आज भारत इंटरफेस फॉर मनी और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए बैंकिंग सेवाएं अब सीधे गांव तक पहुंच गई हैं, जिसके जरिए लोग घर बैठे पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें अब शहरों के बैंकों में चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गई है। वहीं किसान भाई मोबाइल ऐप और इंटरनेट के माध्यम से मौसम की सटीक जानकारी, नई कृषि तकनीकों और मंडी भाव और पल पल की जानकारी उसका जो है प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज शहर क्या गांव व देहात में रहने वाले बच्चे भी स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल कक्षाओं से जुड़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त की जा सकती है। वहीं गांव व देहात में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी होने पर ई संजीवनी जैसी सेवा के माध्यम से ग्रामीण नागरिक भी घर बैठे अब शहरों के बड़े डॉक्टरों से परामर्श और इलाज प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज दूरसंचार का महत्व केवल शिक्षा, व्यापार आदि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की सुरक्षा और प्रशासन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज सेना, पुलिस और आपदा प्रबंधक विभाग ये सभी संचार तकनीक की सहायता से अपना काम तेजी से कर पा रहे हैं। किसी भी जगह प्राकृतिक आपदा या संकट के समय दूरसंचार लोगों तक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन साथियों, इन सभी सुविधाओं के चलते और इनका उपयोग करते हुए हमें कुछ बातों को समझना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आज दूरसंचार तकनीक ने हमारे जीवन को बेहद सरल और सुविधापूर्ण बना दिया है, उसी तरह इसके कई सारे दुष्प्रभाव भी हैं, जिनके बारे में जानना और उनसे सावधान रहने की हम सभी को ज़रूरत है। जिस तरह से आज हम सभी लोग मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, उससे साथियों समय की बर्बादी तो होती है, साथ ही मानसिक तनाव और कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आए दिन बढ़ रही हैं, जिसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। इसी के साथ इसके गलत इस्तेमाल से गलत सूचना और साइबर अपराध भी समाज के लिए आज चुनौती बनते जा रहे हैं। इसलिए हम सभी को इस तकनीक का बड़े ही सोच समझ कर सावधानी और जिम्मेदारी के साथ इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि इस तरह के अपराध हमारे आसपास भी न हो पाए। क्योंकि साथियों, दूरसंचार केवल एक सुविधा नहीं है, बल्कि ये लोगों को लोगों से जोड़ने का एक माध्यम भी है, जो कि पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह जोड़ रहा है। और यही इस तकनीक की अपार शक्ति है, जिसके कारण आज मानव कल्याण के साथ साथ समाज व देश में आगे बढ़ रहा है और प्रगति कर रहा है। और चलिए साथियों, चर्चा के बाद अब हम बता देते हैं आपको आज के प्रश्न का जवाब। साथियों, आज हमने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है, जिसका जवाब है 17 मई, यानी कि आज ही के दिन। ये साथियों, आज ही के दिन यह दिवस विश्वभर में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में बढ़ते रक्तचाप के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके खतरों के बारे में शिक्षित करना है, जिससे हम सही समय पर इसके खतरे से अपना बचाव कर पाएँ और स्वस्थ रह पाएँ। तो चलिए साथियों, बातें आगे और भी करेंगे, फिलहाल समय है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये मधुर गीत।

साथियों, आज के ज्ञान सागर में हम बात करेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक धरोहर जल महल के बारे में, जो कि केवल एक महल ही नहीं बल्कि राजस्थान की शाही संस्कृति, स्थापत्य कला और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम भी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी राजस्थान का हम नाम लिया जाता है या लेते हैं, तब तब हमारे मन में विशाल किले, रंग बिरंगी संस्कृति, राजपूतानी शान और ऐतिहासिक महलों की तस्वीर उभरने लगती है। और उन्हीं ऐतिहासिक धरोहर में जल महल का भी विशेष स्थान है, जो कि अपनी अनोखी बनावट और पानी के बीच स्थित होने के कारण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। साथियों, जल महल शहर के बीच स्थित मानसागर झील के मध्य बना हुआ है। चारों ओर पानी के बीच बना होने पर यह महल किसी सपने जैसा प्रतीत होता है, और जब इसे दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो यह महल पानी में तैर रहा हो, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। विशेष रूप से शाम के समय जब सूर्य की किरणें झील के पानी पर पड़ती हैं, तब इसका दृश्य और भी ज़्यादा मनमोहक हो जाता है। साथियों, इस महल के इतिहास के बारे में बात करें तो इस महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराज सवाई जय सिंह द्वारा अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी रानियों और पंडितों के स्नान के लिए बनवाया गया था। लाल बलुआ पत्थरों से बने इस महल में सुंदर मेहराबें, छतरियाँ और नक्काशीदार खिड़कियाँ इसकी भव्यता को और बढ़ाती हैं। और इस महल की सबसे अनोखी बात तो ये है कि इस महल की 5 मंजिल है, लेकिन पानी के ऊपर इस महल की केवल 1 मंजिल दिखाई देती है, जबकि 4 मंजिल पानी के अंदर रहती है। और इस महल की यही विशेषता इसे दुनिया भर के और महलों से अलग बनाती है, जो कि वाकई में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। साथियों, बताते चलें कि यह जल महल केवल इतिहास धरोहर ही नहीं बल्कि पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र भी है, जिसका दीदार करने के लिए देश विदेश से हर रोज़ यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ आकर वे इस महल की खूबसूरती को देखते हैं और इसी के साथ फोटोग्राफी भी करते हैं, राजस्थान की संस्कृति को करीब से देखते हुए उसे महसूस भी करते हैं, और साथ ही इस अद्भुत स्थापत्य कला की प्रशंसा करते थकते नहीं। तो साथ ही हम सभी के लिए ये सभी ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करते हुए उसकी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण के बारे में सोचना जरूरी है, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को भी इस भारत की महान धरोहरों के बारे में बता पाए, समझा पाए। क्योंकि तो साथियों, इस तरह की धरोहरें अद्भुत होती हैं, जिनका संरक्षण करना बेहद ज़रूरी है। साथियों, पुराने समय में जिस तरह से ये आश्चर्यचकित कर देने वाली धरोहरें हमें अचंभे में डालती हैं, उसी तरह आज की नई

0: ये भी हमें दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देती है। जी हाँ साथियों, आज के आधुनिक दौर में एआई का सहारा लेकर खेती की जा सकती है। आज वैज्ञानिकों द्वारा कुछ ऐसी मशीनें और सेंसर, ड्रोन और मोबाइल ऐप विकसित किए जा चुके हैं, जिससे किसानों को फसल की बुआई, मौसम और सिंचाई की सही जानकारी मिल पाती है। इसी के साथ मिट्टी की जांच और सही खाद की जानकारी, जैसे किस जगह पानी की कमी है और किस जगह कितनी खाद डालनी है, खेत में कौन सी फसल अच्छी रहेगी, ये सब अब आप घर बैठे एआई तकनीक के द्वारा जान सकते हैं। इससे साथ ही हमारे किसान भाइयों को कई सारे लाभ होंगे। एक तो उससे फसल के खराब होने की संभावना कम होगी और एआई तकनीक उपकरणों और ऐप द्वारा खेत की निगरानी करते हुए खेत में सही समय पर खाद और दवा का सही उपयोग होने पर कम पानी में भी अच्छी खेती हो सकेगी। तो साथियों, ये थी नई खोज एआई द्वारा खेती, जिसमें एआई की मदद से खेत, फसल, पानी, खाद और रोगों की जानकारी पहले से ही मिल जाती है और इससे समय, मेहनत और खर्चा भी कम होता है और उत्पादन भी दुगनी तेजी से बढ़ता है। तो वही ना साथियों, फायदे की बात। और वैसे भी साथियों, हम सभी अपने आज के दौर में कुछ ऐसी सारी सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं, फ़ायदा देने वाली चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हम सभी के लिए लाभदायक होती हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं जो जाने अनजाने में हमें हमारे आसपास के वातावरण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। साथ ही हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की और उससे बने चीज़ों की, जैसे थैली। साथियों, हम अपने दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके उपयोग से कई सारी परेशानियाँ पर्यावरण को बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसको जानना हम सभी के लिए आज बेहद ज़रूरी है। तो आइए साथियों, आज की वार्ता में हम जानते हैं कि प्लास्टिक या प्लास्टिक कचरे से प्लास्टिक पर्यावरण को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या होते हैं और किस तरह से इसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। वार्ता का नाम है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जिसके वार्ताकार हैं नितेश वर्मा।
1: प्लास्टिक पदार्थों के बिना आज जिंदगी अधूरी है। जीवन के हर क्षेत्र में प्लास्टिक ने अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली है। अपने अच्छे टिकाऊपन और सस्ते होने के कारण प्लास्टिक से बनी वस्तुएं आम जीवन में काफी प्रचलन में आ गई हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशानियों का कारण बन गए हैं, वे हैं प्लास्टिक के बने हुए थैले, जिन्हें सभी कूड़ा घरों, नदी नालों एवं सड़कों पर देखा जा सकता है। प्लास्टिक की बनी चीजों का हिंदुस्तान में जितना उपयोग होता है, उतना शायद दुनिया में और कहीं नहीं होता। प्लास्टिक मूल रूप से विषैला नहीं होता है, परंतु प्लास्टिक के थैले और उसके दूसरे उत्पादों को बनाने में रंग, रंजक, धातु और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि उन्हें विषैला बना देते हैं। अत्यधिक आण्विक आकार होने के कारण प्लास्टिक सहज रूप से मिट्टी में घुल मिल नहीं सकता, अर्थात अपघटित नहीं हो सकता। अतः इसे पूर्णतः अपघटित या नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे पूर्णतः अपघटित होने में 1,000 साल तक लग जाते हैं। उपयोग में प्लास्टिक की वस्तुएं जितनी सुविधाजनक होती हैं, इनका निपटान उतना ही कठिन होता है। प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल से होने वाली समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे प्लास्टिक का कचरा नालियों और सीवेज व्यवस्था को ठप कर देता है। यही कारण है कि बाढ़ आने पर लोगों के घरों में गंदा पानी भरने लगता है। नदियों में भी इनकी वजह से बहाव पर असर पड़ता है और पानी के दूषित होने से मछलियों की मौत हो जाती है। जानवर कचरे में पड़े भोजन के साथ पन्नियों को खाकर अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। बड़ी संख्या में मवेशियों की मौतें पॉलीथीन के कचरे को खाकर होती हैं। पॉलीथीन रंग, रंजक और रसायन को मिलाकर बनाई जाती है। इनमें से कुछ रसायन कैंसर को जन्म देते हैं। प्लास्टिक के कुछ घटकों जैसे बेंजीन और विनाइल क्लोराइड को कैंसर का कारण जाना जाता है, और तरल हाइड्रोकार्बन पृथ्वी और हवा को दूषित करते हैं। प्लास्टिक के उत्पादन के दौरान कुछ कृत्रिम रसायन जैसे कि एथिलीन ऑक्साइड और बेंजीन उत्सर्जित होते हैं, जो पारिस्थितिकी प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा तांत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यह बाढ़ का भी एक प्रमुख कारण है। जहां ये मनुष्य में सांस व त्वचा रोगों को जन्म देता है, वहीं खेतों की उर्वरा शक्ति को भी कम कर रहा है। प्लास्टिक कचरा प्राकृतिक माहौल को बिगाड़ता है। इससे पौधों,

जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्यों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में सामान्यतः उपयोग होने वाले उपाय ना काफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि वह नई परेशानियों को जन्म दे रहे हैं। प्लास्टिक कचरे को बड़े बड़े लैंडफिल जगहों में मिट्टी में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके सड़ने की अवस्था में जो विषैले पदार्थ निकलते हैं वो मिट्टी में अवशोषित होकर भूजल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी कम कर देते हैं। प्लास्टिक पदार्थों को जलाना भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि उसे जलाने पर जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्जीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्सिन आदि निकलती हैं। अतः इसे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही इसे जमीन में गाड़ा जा सकता है। पिछले करीब 2 दशकों से वैज्ञानिक प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की तकनीकों के विकास में जुटे हुए हैं। आज प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन, पुनः उपयोग और पुनः निर्माण समय की मांग है। देश के वैज्ञानिकों की नई तकनीकों एवं प्रौद्योगिकी से न केवल कचरे से निजात मिल सकता है, बल्कि नए उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए किए जा रहे नीतिगत, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रयासों को जानेंगे, जो स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में मदद कर रहे हैं, जिसमें कि पहला है प्लास्टिक को जैव अवकर्षण बनाना। वैज्ञानिकों ने जैव अवकर्षण प्लास्टिक बनाने में सफलता हासिल कर ली है। जैव अवकर्षण प्लास्टिक का मतलब है ऐसी प्लास्टिक जो जैविक अपघटन द्वारा खत्म किया जा सके या खाद एवं जैविक कचरे में तब्दील किया जा सके। जैव अवकर्षण प्लास्टिक ऐसे पदार्थों से बने होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवी, जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, अपने भोजन के रूप में लेकर उन्हें अपघटित कर देते हैं। दूसरा है प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल, डीजल और खाना बनाने वाली एलपीजी गैस का निर्माण करने की तैयारी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक प्लास्टिक कचरे को ईंधन में तब्दील करने का सफल प्रयोग कर चुके हैं और अब इस प्रयोग को विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। इस तकनीक का बहुत बड़ा फायदा देश में ईंधन की आपूर्ति में होगा और साथ ही प्लास्टिक कचरे से भी निजात मिलेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्लांट नगर पालिका और नगर निगम जैसे संस्थान आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि उनके कंधों पर शहर का प्लास्टिक और पॉलिथीन जैसा कचरा साफ करने की जिम्मेदारी है, जिसका इस्तेमाल वो इस रूप में कर सकते हैं। तीसरा उपाय है जो कि CSIR द्वारा दिया गया है। CSIR की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ने प्लास्टिक के कचरे से सस्ती टाइलों का निर्माण किया है, जिसका उपयोग कम लागत के शौचालय के निर्माण में किया जा रहा है। इस तकनीक को स्मार्ट टॉयलेट मेड ऑफ वेस्ट प्लास्टिक बैग्स का नाम दिया गया है। इसमें चौथा उपाय है, आज देश के लगभग सभी राज्यों में प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने का प्रयोग किया जा रहा है। हाल ही में केरल प्लास्टिक के कचरे से 400 मीटर सड़क तैयार की गई है। यह प्रयोग तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में पहले ही किया जा चुका है। सड़क निर्माण में इस कचरे का उपयोग हो जाने से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा सकेगा और साथ ही सस्ती व टिकाऊ सड़क बनाना आसान हो जाएगा। प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने पर 10% तक डामर की बचत होती है। पांचवा उपाय है प्लास्टिक पुनःचक्रण अथवा प्लास्टिक रीसाइक्लिंग। प्लास्टिक पुनःचक्रण का अर्थ है कि प्लास्टिक के कचरे को दोबारा किसी उपयोगी वस्तु में बदलना, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलों को पिघलाकर उन्हें प्लास्टिक की कुर्सियां या मेज बनाई जाती हैं। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि प्लास्टिक वेस्ट से सजावट के सामान भी बनाए जाते हैं। प्लास्टिक कचरे के पुनः चक्रण से पेन, पेंसिल स्टैंड, यहाँ तक कि पॉलीथीन इकट्ठा करके चटाई का भी निर्माण हो रहा है। यही नहीं, हल्के वाहनों का उत्पादन करने में इंजन सबसे अहम है। एल्यूमिनियम की बजाय फाइबर प्लास्टिक इस्तेमाल करके कार के वजन को 20% तक कम किया जा सकता है। पहले तो पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, फिर भी

0: जहाँ तक प्लास्टिक वेस्ट की बात है, तो इसके सदुपयोग को बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है और सरकार को चाहिए कि वो इसके बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा दे।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जिसके वार्ताकार थे नितेश वर्मा। और साथियों, इस वार्ता के बाद अब बारी है आपकी सेहत से जुड़ी बातें करने की। तो साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हमें कई तरह की समस्याएं, जैसे पेट में जलन, लू लगना या शरीर में कमजोरी महसूस होना, इस तरह की साथियों समस्या होने लगती हैं। लेकिन साथियों, अगर समय रहते हमने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो ये समस्या हमारे स्वास्थ्य पर भारी पड़ जाती है। तो आइए साथियों, आज जानते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमें इस गर्मी के मौसम में राहत तो देगा ही, साथ में ही इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने में लाभकारी साबित होता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं छाछ की, जिसे आम भाषा में हम मठा के नाम से भी जानते हैं। इसके कई सारे फायदे होते हैं, जिनमें से कुछ आपके लिए हाजिर हैं। जैसे कि साथियों, इस गर्मी के मौसम में यदि किसी को कमजोरी और थकान महसूस हो, तो वे छाछ का सही उपयोग करके गर्मी के कारण होने वाली कमजोरी थकान को दूर कर सकते हैं। उसके लिए आप 1 गिलास छाछ में थोड़ा सा भुना जीरा और धनिया पाउडर मिलाकर पी सकते हैं। ऐसा करने से शरीर में नई ताजगी और ऊर्जा तो बनी रहेगी, साथ ही थकावट और कमजोरी भी दूर होगी। साथ ही इन दिनों पेट में जलन होना भी एक आम समस्या है, जो कि किसी को भी हो सकती है। इसके लिए आप सादा ठंडी छाछ में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पी। ऐसा करने से पेट की गर्मी तो कम होगी, साथ ही पेट की जलन में भी राहत मिल सकेगी। और साथ ही वो गर्मी तो पड़ ही रही है, और गर्मी के दौरान लू लगने के चांसेस और संभावना काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऐसे में साथियों, 1 गिलास छाछ में कुछ पत्तियां पुदीने की और थोड़ा काला नमक मिलाकर आप दोपहर में पी सकते हैं। ऐसा करने से आपको इस भीषण गर्मी में लू से अपना बचाव कर सकेंगे और शरीर में भी आपको ठंडक बनी रहेगी। तो साथियों, ये तो थी कुछ ज़रूरी सेहत टिप्स, जिससे आप अपना शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। और हम आपको एक ऐसा गीत सुनाने जा रहे हैं जो बढ़ती गर्मी में आपको कहीं ना कहीं राहत पहुंचाएगी। तो आइए सुनवाते हैं आपको ये मधुर गीत।

तो साथियों, इस राहत भरे गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो दीजिए अनुमति अपने रेडियो साथी रिंकू चौरसिया को। नमस्कार।

अभी हमारे मजदूर भाइयों ने सुना कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को है, आइए अब सुनते हैं दिल्ली से समाचार।

0: जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रॉब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउडडाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
1: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार

0: सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
1: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगे पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Gothenburg, Sweden this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. He was received at the airport by the Swedish Prime Minister Ulf Kristersson.

0: majority in the Keralam Assembly elections. However, the alliance was unable to decide its chief ministerial phase due to lobbying by different camps and protests by workers at the ground level. In the United Arab Emirates, a drone strike triggered a fire outside the Baraka nuclear power plant in Abu Dhabi today. According to the Abu Dhabi Media Office, the blaze broke out in an external electrical generator located outside the plant's perimeter. Authorities said that there were no injuries and no impact on radiological safety levels. In Russia, four persons were killed, including an Indian worker, in the largest Ukrainian drone attack on Moscow and nearby regions in more than a year. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said at least 12 people were injured in the overnight strikes, while Russian authorities claimed that 81 drones targeting Moscow were intercepted. In badminton, India's Shreyansi Valishetty clinched the silver medal in the women's singles at the Baoji China Masters in China today. She went down to local favourite An Chi-yeon in straight sets 14-21, 6-21 in the summit clash of the Super 100 event at the Baoji City Gymnasium. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru have set a target of 223 runs for Punjab Kings in Dharmashala, chasing the target Punjab Kings 185 for 6 in 18.1 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज आप सुनेंगे बाल साहित्य के अस्तित्व का संकट विषय पर वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: बालकों की सुकोमल संकल्पनाओं को सहेज कर उन्हें कहानी, कविता, नाटक आदि के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य सुदीर्घ काल से भारतीय जन साहित्य में होता चला आ रहा है। बाल साहित्य पर बालकों के मनोरंजन के साथ साथ उनके बौद्धिक व नैतिक विकास की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। बच्चे की इच्छा, आकांक्षा, प्रवृत्ति और संवेदनशीलता को ठीक प्रकार से समझ बूझ कर उनके मनोनुकूल साहित्य का सृजन दुरूह कार्य है। वास्तव में बाल साहित्यकारी की भूमिका एक ऐसे सजग प्रहरी की होती है जो बालक के हर कदम पर उसके साथ चौकन्ना रहकर उसकी उंगली पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उसका मार्गदर्शन करे, क्योंकि आज का बालक राष्ट्र का भावी नागरिक है। बचपन में उसके अंदर बैठाए गए आदर्श, संस्कार और आस्था बड़े होकर उसे उसी रूप में कहीं न कहीं प्रभावित अवश्य करते हैं। एक अंग्रेजी विद्वान ने कहा है कि किसी देश की समृद्धि और उसकी सभ्यता के विषय में जानने की जिज्ञासा हो तो उस देश के बच्चों को देख लीजिए, आपको तुरंत ही ज्ञात हो जाएगा कि वह देश कितना खुशहाल है। ऐसे में यह सहज ही अनुमान हो जाता है कि बाल साहित्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। क्या आप आज तक दिनकर की कविता "हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झंगोला"? सुभद्रा कुमारी चौहान की "मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी"? और गोला सिंह नेपाली की "बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल" को भुला पाए हैं? हाँ, यह तो संभव है कि आप उन साहित्यकारों के नाम भूल गए हों, लेकिन "उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले" आज भी आपकी मधुरिम स्मृतियों में बसी हुई है। आइए देखते हैं कि बाल साहित्य की सृजनशीलता के इतिहास का कालक्रम आरंभिक काल, मध्यकाल व वर्तमान काल तीन भागों में विभाजित कर उसकी किस प्रकार समीक्षा की जाए। बाल साहित्य के लेखन की परंपरा से पूर्व अपने लाडलों को दादा दादी, नाना नानी, शौर्य पराक्रम, परी राक्षस, राजा रानी की कविताएं और कहानियां सुनाया करते थे, जो सुनकर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहे। आरंभिक काल में थोड़ा बहुत फेरबदल के पश्चात वही गीत कहानियां बाल साहित्य का अंग बने। यहाँ यह भी उल्लेख आवश्यक है कि आज भी आरंभिक काल की कथा वस्तु बाल साहित्य का आधार बनी हुई है। मध्यकाल में भी कविता और कहानी प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य का अंग बनते रहे। मध्यकाल और वर्तमान काल दोनों को मिला जुलाकर देखें तो श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, ठाकुर श्रीनाथ सिंह, राम नरेश त्रिपाठी, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, श्रीमती शकुंतला सिरोठिया, डॉक्टर शोभनाथ लाल, तुरसन पाल पाठक, डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जैसे अनगिनत साहित्यकारों ने बाल साहित्य को विस्तार प्रदान किया है। बाल साहित्य के लेखन की परंपरा से पूर्व अपने लाडलों को दादा दादी, नाना नानी, शौर्य पराक्रम

परी राक्षस राजा रानी की कविताएं और कहानियां सुनाया करते थे, जो सुनकर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहे। आरंभिक काल में थोड़ा बहुत फेरबदल के पश्चात वही गीत कहानियां बाल साहित्य का अंग बने। यहाँ यह भी उल्लेख आवश्यक है कि आज भी आरंभिक काल की कथा वस्तु बाल साहित्य का आधार बनी हुई है। मध्यकाल में भी कविता और कहानी प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य का अंग बनते रहे। मध्यकाल और वर्तमान काल दोनों को मिला जुलाकर देखें तो श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, ठाकुर श्रीनाथ सिंह, राम नरेश त्रिपाठी, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, श्रीमती शकुंतला सिरोठिया, डॉक्टर शोभनाथ लाल, तुरसन पाल पाठक, डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जैसे अनगिनत साहित्यकारों ने बाल साहित्य को विस्तार प्रदान किया है। आज प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य का सृजन हो रहा है। बच्चों की प्यारी अनेक बाल पत्रिकाएं तमाम संघर्षों के बावजूद भी जुटी हैं। बालवाणी, बाल वाटिका, बाल हंस, चंपक, बाल सखा, नंदन आज बच्चों को मनोरंजन ही प्रदान नहीं कर रही बल्कि उनकी बौद्धिक

0: कॉमिक्स के मकर जाल में उलझा बालमन, केबल टीवी, कार्टून फिल्मों और कंप्यूटर गेम में खोता बचपन, अधिक अंक लाने की माता पिता की जबरदस्ती तथा एकल परिवारों की स्थापना आदि ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो बाल साहित्य के सामने खतरे की घंटी बजा रही हैं। इसके साथ साथ बाल साहित्य साहित्य जगत में भी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। साहित्य के इतिहास, खासतौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास में बाल साहित्य को कोई स्थान नहीं है। आज भी बाल साहित्य के सृजन में अपना जीवन खपा देने वाले रचनाकारों को साहित्यकारों की पंगत में खड़े होने का गौरव प्राप्त नहीं है। इसका एक पक्ष यह भी है कि बाल साहित्य के रचनाकार भी बाल साहित्य के पुरातन स्वरूप को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनकी परियां आज भी आकाश से उतरकर धरती पर आती हैं, राक्षस रात में आकाश की सैर करते हैं, जादूगर छड़ी घुमाकर फलों के पेड़ और मिठाइयों का ढेर खड़ा कर देता है, या फिर उसके पौराणिक कथानकों और पात्रों के उबाऊ प्रस्तुतिकरण रोचकता का अपहरण कर रहे हैं। आज भी राजा और रानी की कहानी, शेर, चीते, मोर, बिल्ली और की कसरतें आरंभ काल से लेकर वर्तमान काल तक बाल साहित्य की कथा वस्तु बने हुए हैं। देखकर हैरानी होती है कि हमारी आदर्श आधारित लोक कथाओं की तुलना में यूरोपीय अवधारणा की परिकथाएं बच्चों को कहीं अधिक निकट जान पड़ती हैं। हमारी लोक कथाओं में बच्चों की उपस्थिति नहीं के बराबर होती है, पर बच्चों को अधिक प्रिय और निकट लगने के बावजूद परिकथाओं की परिकल्पनाओं बच्चों को एक सीमा तक ही लुभा पाती है। भारत में तो नहीं बल्कि यूरोपीय देशों में बच्चों में पनपने वाले विकर्षण का विश्लेषण अवश्य हुआ है। वहां पौराणिक मिथकों और लोक आख्यानों को तार्किक विवेचन के बाद उनके उचित स्थान पर रख दिया गया है। हालांकि भारत में भी बाल साहित्य अब ज्ञान और विज्ञान के समीप आ रहा है। वैज्ञानिक खोजें, विभिन्न यांत्रिक प्रणालियों की परिकल्पना और उसके चमत्कारिक प्रयोग बाल कहानी के अंग बनते जा रहे हैं। कविता भी अपनी कैंचुली छोड़ने को तैयार है, लेकिन अब यदा कदा यह ऐसा दिखने को मिल रहा है, बदलते इलेक्ट्रॉनिक युग में बाल साहित्य के सामने चुनौतियां खड़ी की हैं। वहीं बाल साहित्य के प्रकाशन की कोई केंद्रीय परियोजना नहीं है। भारत में तो नहीं बल्कि यूरोपीय देशों में बच्चों में पनपने वाले विकर्षण का विश्लेषण अवश्य हुआ है। वहां पौराणिक मिथकों और लोक आख्यानों को तार्किक विवेचन के बाद उनके उचित स्थान पर रख दिया गया है। हालांकि भारत में भी बाल साहित्य अब ज्ञान और विज्ञान के समीप आ रहा है। वैज्ञानिक खोजें, विभिन्न यांत्रिक प्रणालियों की परिकल्पना और उसके चमत्कारिक प्रयोग बाल कहानी के अंग बनते जा रहे हैं। कविता भी अपनी कैंचुली छोड़ने को तैयार है, लेकिन अब यदा कदा यह ऐसा दिखने को मिल रहा है, बदलते इलेक्ट्रॉनिक युग में बाल साहित्य के सामने चुनौतियां खड़ी की हैं। वहीं बाल साहित्य के प्रकाशन की कोई केंद्रीय परियोजना नहीं है। यहाँ तक कि दैनिक समाचार पत्रों से लेकर मासिक व पाक्षिक पत्रिकाएं भी बाल साहित्य की समीक्षा से नाक मुंह से उड़ रही हैं। फिर बाल साहित्य का बच्चों के हाथों तक पहुंचना भी सरल कार्य नहीं बचा है। भारत सरकार का प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट आदि बाल साहित्य के विस्तार में लगे हैं, परंतु वर्तमान कठोर चुनौतियों के चलते यह आवश्यक है कि बाल साहित्य अपना स्वरूप बदले, उसका आकर्षक प्रकाशन बढ़े, साथ ही बाल साहित्य के रचनाकार एकजुट होकर विचार मंथन करें वो सरकार द्वारा बालकों के लिए राष्ट्रीय बाल अकादमी की स्थापना की जाए। यह तो निश्चित ही है कि बाल साहित्य के अस्तित्व पर खतरे मंडरा रहे हैं, किंतु उसका धरातल बहुत मजबूत है। साहित्यकारों का एक वर्ग आज भी बाल साहित्य रचना में निमग्न है, परंतु डॉक्टर द्वारिका प्रसाद महेश्वरी इस खतरे से सचेत करते हुए कहते हैं कि बच्चे परिवार का अंग हैं, समाज का अंग हैं, देश का अंग हैं, दुनिया का अंग हैं, अतः जरूरी तौर पर उनमें रचना प्रक्रिया के जरिए ऐसे मूल्यों की चेतना प्रारंभिक स्तर पर ही जागृत की जानी चाहिए जो उन्हें आगे चलकर नागरिकता, सामाजिकता से कहीं अधिक जिम्मेदारी से जोड़ सके। दरअसल जब तक ऐसा साहित्य नहीं लिखा जाएगा तब तक वह श्रेष्ठ बाल साहित्य का दर्जा नहीं पा सकेगा।
1: कार्यक्रम विविध में अभी आपने सुनी बाल साहित्य के अस्तित्व का संकट विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:18 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार का मानना है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षकों के मानदेय से जुड़े मामलों को सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। श्री योगी ने यह बात आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5,00,000 तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और सकारात्मक कदम से बेसिक शिक्षा में कायाकल्प हुआ है। सरकार की मंशा है जब हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
1: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। वह आज गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के क्रम में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित इस सत्र में श्री योगी ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। श्री योगी ने केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्रप्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है, जिससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जो उन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5,00,000 रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के अभियान का क्रम है।
0: श्री योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रविकिशन शुक्ल, पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। इस अवसर पर श्री योगी ने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। उधर मकानों की

0: गिनती का पहला चरण 5 राज्यों राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां मकानों की सूची तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधा और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने आज पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। श्री गंगवार ने कहा कि जनपद में 1,985 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: मोदी योगी सरकार बड़े बड़े भाषण घोषणाओं में यकीन नहीं करती और जो घोषणा करती भी है वो धरातल पे, जमीन पे, गांव पे लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और उन योजनाओं को, खास तौर से स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पे पहुंचाने में आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती।
0: गाजियाबाद स्थित एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई, निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी वाले फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में आज से एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहु और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टर में बांटकर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए हैं। फतेहपुर जिले में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जारी रहने और कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चंदौली, चित्रकूट, उन्नाव और वाराणसी में कल भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून के 18 जून को दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने का भी पूरा अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनुदेशकों को 5,00,000 तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित

0: भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल, कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
1: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
2: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ,
5: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले?
5: ना,
4: पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और?
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
6: RBI कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 7:31। आइए सुनते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल से अनिंद्र सिंह की बातचीत। विषय है उच्च रक्तचाप के कारण, लक्षण और इससे बचाव।
8: आज मैं आपका दोस्त अनिंद्र सिंह फिर से एक नए विषय को लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, हम सब स्वस्थ दिखना चाहते हैं, लेकिन हमारे स्वस्थ होने में और स्वस्थ दिखने में बहुत अंतर सा नजर आने लगा है। कब कौन किस बीमारी से पीड़ित हो जाता है हमें शायद पता नहीं लगता। तमाम ऐसी लाइफस्टाइल बीमारियां आजकल आ गई हैं जिनसे हम में से हर दूसरा तीसरा व्यक्ति दो चार है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, BP की बीमारी भी ऐसी ही बीमारी है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
9: धन्यवाद। नमस्कार
8: डॉक्टर साहब। सीधा हम बीपी पे ही आते हैं। लाइफस्टाइल बीमारी बोला जाता है
9: जी,
8: पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। एक सामान्य आदमी अगर ये समझना चाहे कि उसका सामान्य जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, तो वो क्या समझे? क्योंकि रेंजेस जो है आजकल बहुत वेरी हो रही
9: है। नॉर्मल सामान्यतः जो हम बोलते हैं, एक ऊपर वाला बीपी जिसको सिस्टोलिक बीपी बोला जाता है
8: जी,
9: और एक नीचे वाला बीपी जो आमतौर पर बोलते हैं कि नीचे वाला बीपी जो डायस्टोलिक बीपी होता है हमारा, तो उन बीपी को हमारा जो नॉर्मल रेंज है हमें 130 ऊपर का और नीचे का 80, इससे 130/80 mmHg से नीचे रखना है। जो नॉर्मल गाइडलाइंस अभी हमारी नई रिसेंट आई है अमेरिकन कार्डियोलॉजी की और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, उसके अनुसार तो बहुत इंटेंसिव कंट्रोल चाहिए होता है ब्लड प्रेशर का। उनके अनुसार 120/80 नॉर्मल है और 130/80 से अगर बीपी ज्यादा हो रहा है आपका, तो मतलब आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई है। जो यूरोपियन सोसाइटी है हमारी, वो थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर देती है।
8: अच्छा।
9: उनके अनुसार हम कहते हैं कि 140/90 तक आप वॉच कर सकते हो, लाइफस्टाइल से आप कंट्रोल कर सकते हो, और अगर 140/90 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी जो है वो हो रही है, तो वहां आपको ध्यान रखना है और फिर पूरा प्रिकॉशन और दवाइयां शुरू करनी होती है।
8: ये तो नंबर की गेम हो गई
9: जी,
8: जहां हम देखते हैं कि इस रेंज में होना चाहिए, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स कहता है इस रेंज में होना चाहिए, लेकिन एक सामान्य तौर पे आदमी को कैसे वो जान पाए कि मान लो जैसे आपने कहा कि बीपी चेक कर लिया तो हमें कोई नंबर समझ में आते हैं कि 140 है, 190 है, 120 है, 70 है लोअर लिमिट में, लेकिन एक सामान्य आदमी सामान्य दिनचर्या में कैसे इन चीजों को जान पाएगा कि हमारा उसका ब्लड प्रेशर
9: बहुत बहुत ही अच्छा सवाल

0: पूछा आपने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इसमें हमारे पास बहुत सारे लोगों में, या बल्कि ज्यादातर लोगों में, इसका कोई लक्षण नहीं होते हैं
1: जी
0: शुरुआत में। इसीलिए ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को हम एक साइलेंट किलर कहते हैं, एक साइलेंट किलर
1: मैं
0: है।
1: वही कह रहा था शुरुआत में ही, मैंने कहा
0: जी
1: इसको तमाम नामों से जाना जाता है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग साइलेंट किलर भी बोलते
0: जी,
1: हैं। जी
0: तो इसलिए इसमें शुरुआत में तो या काफी हद तक कोई लक्षण होते नहीं है, और जो लक्षण होते हैं शुरुआत में वो सिर दर्द है, चक्कर आना है, थोड़ी सी घबराहट होना है, कभी सांस फूल गई, कभी धड़कन बढ़ गई, तो इन चीजों को हम लोग या कभी इग्नोर कर देते हैं कि किसी वजह से वैसे ही हो गया होगा, तो वहां हमारी चीजें मिस हो जाती हैं।
1: जी
0: कभी नाक से खून आ गया तो वहां फिर भी आदमी चेक कराता है कि हाँ हमें चेक करा लेना चाहिए। आइडियली हमें कम से कम 30 साल की उम्र के बाद साल में एक बार बीपी जरूर चेक कराना चाहिए। अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन चल रहा है तो 3 से 6 महीने में एक बार फिर भी चेक कराना चाहिए। अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको नियमित या आपके डॉक्टर के अनुसार जो सलाह दे रहे हैं वो, उसके अनुसार आपको चेक कराते रहना चाहिए,
1: तो नियमित जांच जो है वो ज्यादा
0: वो
1: जरूरी है।
0: जरूरी है।
1: आपने कहा कि जो है एक सामान्य तौर पे हाई बीपी, आपने कहा कि एक बीपी का जो उच्च रक्तचाप है
0: जी
1: उस हाई बीपी और जो एक आपका जो नॉर्मल जो सामान्य रक्तचाप होता है उसमें क्या अंतर होता है? माने हाई बीपी और जो सामान्य रक्तचाप है उसमें क्या होता क्या है, हाई बीपी में क्या होता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ।
0: जो हमारा हार्ट है वो दिल जो धड़कता है, ब्लड प्रेशर क्या है हमारा, जो हमारा हार्ट धड़कन देता है, धड़कन की वजह से जो बाहरी जो पेरिफेरल हमारी धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनमें जो प्रेशर आता है उसको हम रक्त का दबाव बोलते हैं। और जो रक्त का दबाव बढ़ने लगेगा और एक लिमिट से ज़्यादा हो गया तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जहाँ पर हमें जो स्टडीज हैं कि इस लेवल के ऊपर हमारे शरीर के लिए वो खतरनाक है, ब्रेन के लिए खतरनाक है, आइज के लिए खतरनाक है, या हमारे हार्ट पे उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, किडनी पर आएंगे, तो उस लेवल को हमने वहाँ पर डिनोट किया कि ये अब हमें हाइपरटेंशन यहाँ से होना शुरू हो गया, ये हाइपरटेंशन एक लिमिट है हमारी कि यहाँ
1: जी,
0: तक हमारे लिए ठीक है। और
1: इतने दबाव से रक्त जो है हमारे शरीर में प्रवाहित हो सकता है, उससे अगर
0: सेफ
1: ऊपर
0: लिमिट
1: जाता
0: है,
1: है सेफली
0: उससे
1: उस
0: अगर
1: लिमिट
0: ज़्यादा
1: से,
0: जा रहा है
1: तो वो हाई ब्लड प्रेशर
0: हाइपरटेंशन,
1: की श्रेणी में आ
0: बिल्कुल सही
1: जाता है। हर साल जो है दुनिया में लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाया जाता है, तो इसके बारे में कुछ बताएं।
0: जी। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है हमारे यहाँ मनाया जा रहा है 17 मई को हर साल 2005 से, ये
1: अच्छा
0: WHO ने शुरू किया, और इस साल हर साल जो है हमारे अलग अलग कंट्रीज की विभिन्न जो मेडिकल सोसाइटीज हैं वो इसमें अपना योगदान देती हैं। इसका शुरुआती उद्देश्य ही ये था कि हम जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोज करें, जिन ब्लड प्रेशर जिन लोगों को नहीं पता चल पाता है, अर्ली डायग्नोसिस होगी तो हम उसको अर्ली ट्रीटमेंट कर पाएंगे और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको पहले से रोक पाएंगे, और लोगों के जो कई बार इसके दुष्प्रभाव आ जाते हैं उनसे उनको होने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसकी वजह से एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया 2005 से, और अब एक एक कैंपेन बन गया है।
1: जी,
0: तो कई बार इसमें थीम्स भी दी गई कि नो योर नंबर्स,
1: माने आप अपनी लिमिट जाने के
0: मेजर
1: किस।
0: योर बीपी एक्यूरेटली। तो अभी इसी तरह की एक थीम है कि नो योर नंबर्स, करेक्ट योर बीपी एंड प्रोटेक्ट योर हेल्थ। तो इस तरह से इनको जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को हम मनाते हैं इसको।
1: ठीक, आपने कहा कि साइलेंट किलर होता है ये, तो
0: जी
1: लोगों तक इसके प्रति जागरूकता हो पाए और जो किलर जैसी नौबत आती है इसका प्रभाव जो है लोगों को घातक, उसको कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जा सके,
0: जी
1: और
0: और
1: शायद इसीलिए इसकी जरूरत आन पड़ी।
0: जरूरत है। और सबसे बड़ी परेशानी कि ब्लड प्रेशर एक समस्या है, वो अलग चीज है, लेकिन ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस होना और उसको पुअर कंट्रोल, अंडर
1: नियंत्रित
0: डायग्नोसिस,
1: किया जाना।
0: अंडर डायग्नोसिस के लोगों को पता ही नहीं है,
1: जी जी
0: और पुअर कंट्रोल, वो एक सबसे बड़ी समस्या है,
1: उसकी वजह से ज्यादा घातक हो
0: उसकी
1: जाता
0: वजह से
1: है।
0: ज्यादा घातक है। अगर हम जैसे भारत की ये बात करें, जो एक WHO का डाटा है उसके अनुसार भारत में करीब हर 100 में से 30 से 35 लोगों को ही पता है कि बीपी है, हर 3 में से 1 को बीपी की शिकायत होती है। अगर हम ये मान लें कि 100 लोगों को ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो उन 100 में से 30 या 35 को ही पता है कि ब्लड प्रेशर की शिकायत है,
1: जी
0: और उसमें से भी केवल 25 से 30 लोग ऐसे होते हैं जो दवाई लेते हैं, जो उसको
1: अच्छा
0: कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और उसमें से भी केवल 10 या 15 लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हम टारगेट लेवल तक प्रॉपर कंट्रोल होता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या है कि 100 में से 35 लोगों को पता है केवल ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसमें से 25 लोग केवल दवाई खा रहे हैं, और उसमें से भी केवल 10 से 15 लोगों का ब्लड प्रेशर टारगेट लेवल तक कंट्रोल है।
1: जी,
0: तो करीब करीब 85 लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है,
1: नहीं है, ठीक
0: और
1: है।
0: इन लोगों के जब दुष्प्रभाव आते हैं तो वो कभी पैरालिसिस होता है, कभी स्ट्रोक होता है, कभी हार्ट अटैक की बीमारी होती है, किसी की किडनी खराब होती है।
1: तो समय रहते जागरूकता ही सबसे बड़ा
0: सबसे बड़ा प्रिवेंशन
1: बचाव
0: इज
1: है।
0: बेटर देन क्योर, जो
1: जी
0: कहते हैं
1: जी
0: नॉर्मली, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: ठीक बात।
0: और इसकी वजह से अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 1 करोड़ डेथ हो जाती है हर साल,
1: हर साल 1 करोड़।
0: हर साल।
1: जी,
0: अगर हम
1: कितना बड़ा आंकड़ा है यह।
0: भारत की बात करें तो करीब 15 से 16 लाख लोग जो है हर साल ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से या इसके दुष्प्रभावों से उनकी मृत्यु हो जाती है।
1: आज के समय में देखें तो ये हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बड़ी कॉमन सी होती जा रही है, बहुत बढ़ रही है
0: जी।

0: तो कारण आपको क्या लगता है,
1: सबसे
0: तनावपूर्ण या
1: बड़ा,
0: भागदौड़ भरी जीवन
1: सबसे
0: शैली
1: बड़ा
0: हमारी या हमारा खान पान?
1: लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो अल्कोहल यूज, टोबैको, स्मोकिंग, एक ये खान पीन में पैकेट फूड्स जो पिज्ज़ा बर्गर पैक्ड फूड्स आते हैं, इनकी वजह से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन को बढ़ा रही हैं।
0: आजकल की जिंदगी ही ऐसी हो गई है जहां पे जो है हर व्यक्ति किसी न किसी टेंशन से तो जूझ ही रहा है,
1: जी
0: तो वो स्ट्रेस और ये सब एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा हैं, लेकिन इनके बाद भी आपकी सेहत आपकी अपनी सेहत है, तो उसका ख्याल रखना वो आपकी अपनी
1: ये
0: जिम्मेदारी।
1: आपके हाथ में है,
0: जी
1: आपको अपनी जिंदगी कैसे चलानी है वो आपके हाथ में, आपको अपने लिए समय निकालना है, आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ा योगा करना है, स्ट्रेस को जितना दूर रख सकते हैं दूर रखें, स्लीप डेप्रिवेशन, आजकल स्लीप जो है नींद बहुत कम हो गई है, या रात की शिफ्ट होती है, लोग देर देर तक काम करते रहते हैं,
0: बहुत
1: वो
0: सारे
1: एक
0: कारण
1: होता
0: हैं, उन
1: है,
0: कारणों पे अगर जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो
1: बहुत लंबी
0: जाएगी।
1: कहानी है।
0: हाँ, लेकिन ज्यादातर हम जो सामान्य लोग हैं वो समझते हैं, हाई बीपी जिसको हो जाता है, सबसे पहले ये कहा जाता है कि नमक बंद करो भाई,
1: जी
0: ज्यादा नमक नहीं खाना है,
1: जी
0: जंक फूड नहीं खाना है,
1: जी
0: प्रोसेस्ड फूड की आपने बात की, तो इन सब चीजों का रक्तचाप पे प्रभाव क्या पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ता है। नमक है जो सैचुरेटेड फैट है, प्रोसेस्ड फूड जिसकी हम बात करते हैं, चिकनाई की जो बात करते हैं, इन सब से हमारा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता है, बढ़ता है।
0: जी
1: इनसे जो धमनियां हैं हमारी, धमनियों की जो वॉल है वो थिकनिंग होती रहती है, स्टिफ हो जाती हैं, उनसे भी ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है, हाइपरटेंशन की बीमारी डेवलप होती है। तो
0: जी
1: कहते हैं कि जंक फूड कम करें, नमक कम करें, चिकनाई कम करें, तो इससे हमारा काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है।
0: आज जीवन शैली की आपने बात की थी, आजकल की जीवन शैली भी ऐसी है जहां पर हमें घंटों बैठ के काम करना पड़ता है, शारीरिक जो एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं उन पे विराम लगा है,
1: जी
0: मोटापे की आपने बात की, तो ये जो कारण हैं ये कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ा जो आपने बताया यही कारण कि आजकल जो है बच्चों में, यंग एज में भी ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी हो रही
0: जी
1: है,
0: जी
1: बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, फिजिकल एक्टिविटी ना होने से ओबेसिटी होना, और पैकेट फूड या जंक फूड ज़्यादा खाना। तो कोशिश वही करनी है कि आप सुबह शाम आधा घंटे निकालें, कभी प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जिन चीज़ों में खाने से बचा जा सकता है खाने से बचें, नॉर्मल खाना, हाई फाइबर डाइट, सलाद, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वो ज़्यादा लें, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग इन सब चीज़ें बंद करें बिल्कुल। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट डेली एक्सरसाइज या वॉक करें।
0: खासतौर से जो युवा पीढ़ी है उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि
1: जी
0: जिन सब चीज़ों की, जिन सब बातों को आपने अभी जिक्र किया,
1: जी
0: वो सारी बातें उस वर्ग को रिलेट करती हैं
1: बिल्कुल
0: और उनको चेतने की आवश्यकता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और आने वाले समय में तो ये पीढ़ी ही ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है, क्योंकि पहले वाली जो पीढ़ी थी वो तो फिर भी खेतों में काम करती थी,
0: जी
1: वो तो
0: जी
1: कहीं ना कहीं से एक्सरसाइज हो ही जाती थी, खुले में सांस ले रहे थे वे। यहाँ वाली पीढ़ी जो आने वाला समय है वो और ज़्यादा खराब है।
0: ठीक बात। डॉक्टर साहब, क्या बीपी के कारणों में आनुवंशिक कारण भी होते
1: बिल्कुल
0: हैं?
1: बिल्कुल होते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके माता पिता में किसी को भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा की शिकायत है,
0: जी
1: तो आप मान के चलिए कि आपके बच्चों में उससे 2 गुना ज़्यादा चांसेज हैं कि आपको हाइपरटेंशन की बीमारी या कभी उससे प्रभावित हो सकते हैं। किसी एक को भी है, अगर किसी दो को है, किसी तीन को है, तो ये 4 से 6 गुना तक भी हो सकती है
0: परिवार में अगर किसी की भी हिस्ट्री रही है तो आप जो है आपको
1: आपके
0: संभलने
1: आपको
0: की जरूरत है,
1: बिल्कुल
0: आपको
1: आपको वो
0: मुस्तैद
1: अब
0: रहना है कि
1: प्रॉपर
0: भाई
1: चेकअप कराना है,
0: बिल्कुल आप
1: आपको
0: भी
1: हर
0: शिकार हो
1: 6 महीने
0: सकते
1: से
0: हैं।
1: 1 साल में चेकअप कराते रहिए कि आपको भी कभी हो सकती है, तो
0: जी
1: उसके लिए
0: जी
1: आपको एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है।
0: प्रॉन हैं आप।
1: जी
0: किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शुरुआत हो रही है या है तो उसके लक्षण क्या नजर आते हैं, कैसे समझे कोई व्यक्ति कि उसको हाई ब्लड प्रेशर
1: जैसे
0: है?
1: मैंने पहले बताया कि इसके लक्षण कुछ भी नहीं समझ में आते पहले शुरुआत में, या लक्षण होते भी हैं तो नींद में सिर भारी हो जाना, कभी धड़ सा होना, कभी
0: जैसे
1: घबराहट
0: आपने
1: सी
0: कहा था कि
1: होना,
0: आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो जो है कोई ऐसे लक्षण नजर नहीं आएंगे, सिर्फ
1: जी
0: आपको ये ख्याल रखना है, जहन में रखना है कि हमारे
1: माता पिता में या
0: माता
1: किसी
0: पिता
1: को
0: में या किसी
1: है,
0: पीढ़ी में
1: परिवार
0: रहे
1: में
0: हैं
1: है
0: बीपी
1: जी,
0: की
1: तो
0: समस्या
1: हम
0: तो हमने
1: टाइम टू
0: उसे।
1: टाइम अपना चेक कराते रहें उसका,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: कभी आपको लगता है कि हमारी धड़कन बढ़ रही है या सांस फूल रही है, सिर दर्द हो रहा है, कभी भारीपन सा रहता है, तो उस टाइम पर ब्लड प्रेशर चेक करा लिया जाए बीच बीच में।
0: क्या ऐसे संकेत हैं जिनको नजरअंदाज न किया जाए?
1: सांस फूलना, धड़कन बढ़ना, और घबराहट सी होना, कभी सीने में कभी भारीपन सा लग रहा है, चलने में सांस फूल जाती है लोगों की कभी,
0: जी
1: है ना, कभी नाक से खून आ गया, तो ये सारे लक्षण हैं जो शुरुआत में हम बता सकते हैं कि इसको हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है।
0: ठीक बात। आपने कहा कि बीपी की जांच करते रहिए,
1: जी
0: घर में भी आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है एक मशीन रखते हैं
1: जी
0: और उससे बीपी चेक करते रहते हैं,
1: जी
0: तो वो कितना विश्वसनीय है?
1: नहीं, एक मेजरमेंट्स, रफ मेजरमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और करना चाहिए। एक घर में बीपी कई बार अलग होता है, कई बार आप डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो वो बीपी बढ़ जाता है
0: बढ़
1: वहाँ
0: जाता
1: पर,
0: है
1: तो इसको
0: वही।

0: व्हाइट कोट
1: इसीलिए
0: हाइपरटेंशन
1: मैंने ये
0: बोलते
1: चीज
0: हैं,
1: पूछी।
0: तो वो बढ़ जाता है।
1: हाँ
0: इसमें बहुत ज़रूरी है, और इसमें मल्टीपल रीडिंग्स लेनी चाहिए।
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: लेकिन उसका बीपी नापने का तरीका ज़रूर सही होना चाहिए। बीपी नापने का तरीका है कि आपको जब भी बीपी चेक कर रहे हैं तो आधा घंटे पहले आप कोई स्ट्रेस ना हो, शांत बैठे हों, उससे पहले आपने आधा घंटे पहले के अंदर चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, एल्कोहल किसी का सेवन ना किया हो। दूसरी चीज़, इस पर चेयर पर बैठे हैं तो पीठ सपोर्टेड होनी चाहिए, पीठ जो
1: हाँ,
0: है बैक
1: बैक
0: लगी होनी
1: सपोर्ट
0: चाहिए,
1: होना।
0: और फीट जो है आपके पैर ज़मीन पर होने चाहिए। तो रिलैक्स कंडीशन में बैठे हैं, जहाँ पीठ आपकी चेयर के पीछे है और पैर जो है ज़मीन पर है।
1: ये
0: दूसरा,
1: छोटी छोटी बातें
0: छोटी
1: हैं
0: छोटी बातें,
1: लेकिन
0: कफ
1: बहुत
0: लेवल जो है
1: महत्वपूर्ण हो जाती
0: हमारा हाथ पर उसके हार्ट के लेवल पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हम आगे झुक के बैठ गए या कहीं बैठ गए, तो उस टाइम पर जब हम लेते हैं तो वो लगभग लगभग एक्यूरेट बीपी आता है।
1: ठीक
0: उसमें
1: है।
0: हम मल्टीपल रीडिंग्स ले सकते हैं और दोनों हाथ में चेक करना चाहिए। कुछ
1: अच्छा
0: केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक में ज़्यादा आता है, एक में कम आता है। नॉर्मल डिफरेंस एक सब में होता है,
1: हाँ,
0: लेकिन कुछ केसेस में ज़्यादा डिफरेंस होता है,
1: सो
0: तो
1: दोनों में लेना
0: दोनों में भी
1: चाहिए।
0: चेक करना चाहिए।
1: अगर किसी को हाई बीपी लंबे समय तक है
0: जी,
1: तो उसके शरीर पे उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं?
0: उसके दुष्प्रभाव जो है, आप ऊप सिर से लेकर पैर तक आप कुछ भी देख लीजिए, हर
1: हाँ,
0: ऑर्गन्स पे उसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। हमारे यहाँ 100 में से 57 लोग जो स्ट्रोक के होते हैं, हाइपरटेंशन के, उनमें 57 लोगों में ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक का कारण ब्लड प्रेशर होता है, जो पैरालिसिस होती है जिनको। 24 से 25% जिनको हार्ट फेलियर होता है, हार्ट अटैक होता है, उनको भी 24 से 25% में बीपी ही एक कारण होता है, हाई बीपी। किडनी खराब हो जाती है लोगों की, किडनी वाले पेशेंट भी करीब करीब 24% लोग हैं कि 100 लोगों को बीपी है तो 24 लोगों की किडनी पे असर आ जाता है, खराब हो जाती है। लॉन्ग टर्म बहुत लंबा बीपी चल रहा है और अनकंट्रोल्ड है, तो ये किडनी खराब होने की संभावना 5 से 7 गुना तक बढ़ जाती है आपकी।
1: जी
0: आंखों पे असर आ जाता है, रोशनी खराब हो जाती
1: हाँ,
0: है,
1: मैं उसी पे आ रहा था। क्या
0: याददाश्त पे भी
1: डायबिटीज
0: फर्क
1: का
0: आता है।
1: भी बीपी से संबंध है?
0: बिल्कुल है, डायबिटीज अपने आप में एक हमारे लिए एक बड़ा
1: क्योंकि
0: खतरनाक बीमारी
1: डायबिटीज
0: है,
1: जिसको होता है उसका सीधा असर उसकी आंखों पे पहले
0: आंखों पे
1: दिखाई
0: पड़ता है।
1: देता है।
0: तो डायबिटीज और साथ में अगर हाइपरटेंशन हो गया, तो नीम और करेला एक साथ हो गए,
1: हाँ
0: दो चीजें एक साथ हो गई।
1: तो इस नीम और करेले की कड़वाहट को डॉक्टर साहब थोड़ा कम करते हैं और श्रोताओं को हम आपकी पसंद का एक गीत सुनवा देते
0: जी
1: हैं। तो
0: बिल्कुल,
1: कौन सा गीत आज हमारे श्रोताओं को आप सुनवाना चाहेंगे?
0: जो
1: अपनी
0: आपके
1: पसंद,
0: अच्छा लगे।
1: आपको अपनी पसंद का गीत सुनवाना है?
0: दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: क्या बात है, तो आपकी पसंद का ये गीत श्रोताओं को सुनवा देते हैं।

0: मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई कि लक्षण, कारण और उसके जो प्रभाव हैं उन पे हमने बातें की बहुत सारी। जीवन शैली हमारी इस तरह की है, तो इस जीवन शैली में क्या वो बदलाव छोटे छोटे जो हमारी इस उच्च रक्तचाप की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी हो सकते?
1: सारी चीज़ें घूम फिर के वही आती हैं। सबसे पहले तो अपनी डाइट पे ध्यान रखना है कि आपको जैसे है प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेट फूड्स, जंक फूड्स, इनका कम से कम इस्तेमाल या ना हो तो ना ही करें। दूसरा, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो नमक हम 5 ग्राम से कम डेली खाएं, कोई सा भी नमक खाएं वो 5 ग्राम से डेली कम खाएं। एक्स्ट्रा अचार, पापड़, चटनी, सॉस, बेकरी फूड्स जिनमें नमक छुपा हुआ होता है, ये
0: आपको जीभ
1: बताएं,
0: पे कंट्रोल करना
1: जीभ
0: है।
1: पे कंट्रोल करना है पहली चीज़, तो डाइट कंट्रोल।
0: ठीक।
1: दूसरा आता है ओबेसिटी, मोटापा आपको कंट्रोल करके रखना है, वो एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का और भी बीमारियों का, एक अपना बहुत बड़ा टॉपिक है ओबेसिटी। तीसरा है एक्सरसाइज, डेली हम कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, हफ्ते में कम से कम 5 दिन एरोबिक
0: ठीक
1: एक्सरसाइज, वॉक वगैरह।
0: जी।
1: चौथा एस, स्लीप, स्ट्रेस और स्मोकिंग, इनसे स्ट्रेस और स्मोकिंग से दूर रहना है,
0: और नींद
1: नींद
0: बेहतर
1: को
0: लेनी
1: बेहतर
0: है।
1: रखना है। तो एक निमोनिक मैंने बनाया डज, कि आपको क्या करना है,
0: ओ वेरी गुड।
1: डाइट, ओबेसिटी, एक्सरसाइज
0: एंड
1: और
0: स्लीप।
1: ट्रिपल एस,
0: और
1: स्ट्रेस, स्मोकिंग और स्लीप, जैसे हमारे
0: हाँ
1: प्रधानमंत्री जी हर उसमें एक निमोनिक बनाते हैं,
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: इसी तरह से हमने भी बनाया एक।
0: बहुत बढ़िया।
1: तो इसको फॉलो करेंगे तो लाइफ स्टाइल आपकी कंट्रोल में रहेगी और ब्लड प्रेशर भी आप जिस काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे।
0: ठीक बात। योग और प्राणायाम की बातें करते हैं ध्यान,
1: जी
0: प्रधानमंत्री जी भी हमारे जो
1: जी
0: है इस पर बहुत फोकस्ड हैं, और लोगों को अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
1: योग
0: भी बड़ी
1: दिवस है,
0: जल्दी हम मनाएंगे, तो योग और ध्यान की आप जो है इसमें किस तरह से भूमिका को
1: नहीं बहुत
0: देखते
1: बड़ी
0: हैं?
1: भूमिका है और प्रधानमंत्री जी का ये काम बहुत ही सराहनीय है हेल्थ को लेके। अभी उन्होंने नमक कम करने की भी बात की थी,
0: जी।
1: तेल को लेके कम करने की, 10% तेल कम करने की बात की, मोटापे पे भी बात
0: वो
1: की,
0: सिर्फ आर्थिक पहलू नहीं है, हमारी सेहत
1: स्वास्थ्य
0: का
1: से
0: भी
1: रिलेटेड
0: पहलू,
1: पहलू, और
0: स्वास्थ्य से
1: स्वास्थ्य ठीक
0: रिलेटेड जो
1: होगा तो
0: है।
1: आर्थिक पहलू भी ठीक
0: बिल्कुल
1: होगा,
0: बिल्कुल ठीक
1: ठीक
0: बात।
1: है। फिर उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वो बात करते हैं कई बार उसकी,
0: तो तनाव
1: तो
0: प्रबंधन के लिए आप क्या सुझाव देंगे?
1: तनाव प्रबंधन के लिए योगा, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। परिवार के साथ बैठना, अपने लिए समय निकालना, दोस्तों के साथ बैठना, थोड़ा हंसना खुलना, अपने नॉर्मल लाइफ से अलग बातें करना, जो फ्री में जो बचपन में आप करते हो
0: जिससे
1: उस
0: आपका माइंड जो
1: तरह
0: है वो
1: के
0: इन
1: फ्रेश
0: सब
1: हो जाए,
0: स्ट्रेस
1: हल्का
0: से
1: हो,
0: दूर हो
1: दूर हो
0: सके,
1: जाए।
0: हल्का हो सके। ठीक
1: तो
0: बात। अब हम बात करेंगे, हमने बात कर ली युवा पीढ़ी की, आपने कहा कि बच्चों में भी आजकल बीपी हो रहा है, हम महिलाओं पे अब आते हैं कि महिलाओं में जो रक्तचाप को लेके हमें क्या खास प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत होती है?
1: ब्लड प्रेशर के लेके महिलाएं और एडल्ट्स में लगभग, आदमियों में लगभग लगभग सब सेम चीज़ें हैं। जो अनुपात हमारा महिलाओं में है वही अनुपात वैस

0: ट्रेंड्स में है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसमें भी सेम चीज़ें ध्यान रखनी है, ये आपको लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना है और खाने पीने का ध्यान रखना है
1: महिलाओं
0: इसमें।
1: से हमारा तात्पर्य था कि जैसे गर्भावस्था है, तो गर्भावस्था के दौरान हाई
0: जी,
1: बीपी क्या?
0: गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में जो है, ब्लड प्रेशर अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है।
1: जी वही
0: इसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो बच्चे का एबॉर्शन भी हो सकता है, कभी कभी माँ को दौरे भी आ जाते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं, और उसमें तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट टाइट कंट्रोल चाहिए होता है कि ये हमें इससे बढ़ने ही नहीं देना है,
1: वो स्थिति ज़्यादा
0: वो
1: चुनौतीपूर्ण
0: ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है।
1: बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों में भी जो है रक्तचाप जो है उसकी
0: ये
1: शिकायतें
0: बहुत
1: होती
0: अच्छा
1: हैं।
0: सवाल है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ऐसे जो कहते हैं हमारे लिए 150, 60, 150, 90 BP उम्र के हिसाब से ठीक चल रहा
1: ठीक
0: है,
1: चल रहा है, वो उसको
0: लेकिन
1: नॉर्मल मानते
0: ये
1: हैं।
0: नॉर्मल मानते हैं, लेकिन हमारे लिए टारगेट वही है, उनके लिए भी वही टारगेट है। एज का एक क्राइटेरिया नहीं है, उनके लिए भी हमारी लिमिट 130-80 ही है। एजिंग की वजह से मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत बीपी बढ़ता है, लेकिन उस ब्लड प्रेशर बढ़ने को हम एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस नहीं माननी चाहिए,
1: हम ये नहीं कह सकते कि ये अगर
0: एक
1: है तो
0: नॉर्मल एजिंग
1: हमारे,
0: प्रोसेस
1: हाँ
0: है
1: ये हमारे
0: ना।
1: उम्र बढ़ गई तो ये ठीक
0: इतना
1: है,
0: बढ़ गया
1: वो
0: तो
1: ठीक नहीं
0: ज़्यादा
1: है।
0: एल्डरली एज में 80-85 में जहाँ किसी को चक्कर आ रहे हैं या खड़े होने पर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है किसी में, वहाँ हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि 140-150 तक रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उनके लिए भी लिमिट 130/80 की ही है।
1: ये जो कोई लोग बीपी की मान लो दवा उसको प्रेस्क्राइब की डॉक्टर साहब ने,
0: जी
1: तो दवाई हमें कुछ कुछ लोग देखा जाता है कि बीच में दवा बंद कर देते हैं, तो जो मिस्ड डोज हैं वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं?
0: जी मिस डोज नहीं करनी चाहिए। मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि जब हमें लगता है, महसूस होता है कि तब हमने दवाई ले ली,
1: हाँ
0: जब हमें लगा कि आज दिक्कत हो रही है तो दवाई ले ली, वो गलत है। कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर अंदर ही अंदर बढ़ रहा है, नसों पे या धमनियों पे आपके प्रेशर बढ़ रहा है, वो सारी इलास्टिक है, धीरे धीरे फैलती जाती है, और एक लिमिट आती है कि वो जाके उनकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, फट जाती है, या उसमें अंदर थिकनिंग हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। मिस्ड डोज अगर आपकी है तो आप तुरंत दूसरी डोज लें, डबल डोज नहीं लेनी है,
1: हाँ
0: जो मिस आपने
1: ये
0: डोज
1: चीज़
0: की
1: बड़ी
0: है।
1: इम्पोर्टेंट आपने
0: हाँ,
1: बताई
0: कि
1: कि
0: ऐसा ना
1: किसी
0: हो कि
1: ने अगर
0: आपने
1: मिस कर दी तो हम डबल खा
0: दो
1: लें,
0: खा
1: ऐसा
0: लें,
1: नहीं।
0: दो नहीं खानी है
1: हाँ
0: आपको, एक ही डोज खानी है, और उसके बाद रेगुलर खानी है,
1: ठीक
0: और
1: है।
0: रेगुलर आपको बीपी नियंत्रण में रखना है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीपी की दवा खाते हैं तो क्या बीपी पूरी तरह से ठीक हो सकता है या
0: नहीं,
1: केवल ये नियंत्रित ही किया जा सकता है?
0: ठीक नहीं हो सकता, काफ़ी हद तक आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल से। अगर आपकी लाइफ स्टाइल से वो नियंत्रण में है तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हो सकता है कि ना पड़े। कुछ बीमारियों में जिनको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, कि उसकी वजह से हो गया, किडनी की प्रॉब्लम की वजह से या डायबिटीज़ या थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से हो गया, वो कंट्रोल में हुई तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आ सकता है,
1: जी
0: लेकिन वहाँ भी लाइफ स्टाइल अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो वहाँ आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल है बिना दवाइयों के, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर मेडिसिन लेनी ही लेनी है।
1: ठीक। कुछ लोग जो है घरेलू उपाय भी अपनाते हैं, कुछ आयुर्वेद का सहारा लेते हैं या वैकल्पिक जो चिकित्सा के संसाधन हैं उन पे जाते हैं, क्या
0: नहीं
1: वो भी सहायक होते हैं?
0: सर, आयुर्वेदिक और वैकल्पिक चिकित्सा हमारे, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भारत में शुरुआत ही आयुर्वेद से और इन चीज़ों से हुई थी,
1: जी
0: लेकिन अगर ये वाकई में किसी डॉक्टर से ले रहे हैं प्रॉपर दिखा के, तो वो कारगर है। कुछ लोग जो है बस किसी का विज्ञापन देखा कि ये दवाई ले लो, और किसी स्टोर में गए उससे ले ली दवाई, वो मैं कभी नहीं कहता कि इस तरह से लेनी चाहिए, वो हमेशा
1: जी
0: खतरनाक हो सकती है। वो आपको साथ में क्या बीमारी है, डायबिटीज़ तो नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो जो डॉक्टर देख के देगा, चाहे वो आयुर्वेद का हो चाहे किसी और पैथी का हो, वो एक सही दवाई देगा और नियंत्रित मात्रा में भी देगा।
1: ठीक। अच्छा ये जो हाइपरटेंशन डे जैसे दिवस हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई बीपी की जो जागरूकता की स्थिति है, उसमें आप ऐसे अभियानों को, ऐसे जागरूकता के कार्यक्रमों को कितना कारगर पाते हैं?
0: बहुत महत्वपूर्ण है ये तो, क्योंकि इसी, यही एक जरिया है जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जो लोगों को अवेयर कर सकता है कि हाँ, ब्लड प्रेशर की एक बीमारी होती है और इससे इतनी परेशानियां आगे जाके हो जाती हैं। अभी लोग ये समझते हैं कि जब बीमारी हो गई तब ब्लड प्रेशर है तब उसको इलाज करा लें, नहीं, ये तो हमें बहुत पहले से चेक करना है, बहुत पहले से उसको बीमारी में
1: आपके
0: उसके
1: शरीर में ब्लड तो
0: दुष्प्रभाव
1: हमेशा
0: होने
1: से बह
0: से
1: रहा है।
0: बह रहा है, तो उसके दुष्प्रभाव होने तक इंतजार नहीं करना है, आपको पहले से चेक करना है और दुष्प्रभाव होने से रोकना है पहले। तो अब उनको अवेयर करने का एक ये बहुत बड़ा जरिया है कि हम बार बार इनको कैंपेन करते रहें और इस तरह के कार्यक्रम करते रहें।
1: कोई घर में बीपी पेशेंट है
0: जी
1: तो घर परिवार की और जो इर्द गिर्द का समाज है, सोसाइटी है, उसकी भूमिका को आप कैसे इंगित करें?
0: घर में अगर किसी को भी बीपी है तो लोगों को भी अपने आप में जागरूक होना चाहिए, कि अगर घर में किसी को बीपी है तो वही फैमिली हिस्ट्री हो गई एक तरह से, तो आपको भी बीपी हो सकता है, तो आप अपने आप को ध्यान रखें। दूसरा, उनकी दिनचर्या में भी ध्यान रखें कि

0: इनको डाइट में हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, उनके साथ स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पे हमें ध्यान देना है ना। तो एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, कभी बुजुर्ग हैं तो घर में है, शाम को घुमाने ले
1: उनको
0: गए,
1: समय पे दवा
0: दवा
1: देना,
0: देना है
1: उनके
0: शाम
1: थोड़ा
0: को,
1: सा जो एक्सरसाइज नहीं कर
0: टाइम
1: सकते उनको थोड़ा सपोर्ट देना,
0: सपोर्ट
1: आप
0: देना
1: लेके जा
0: और
1: सकते
0: टाइम टू
1: हैं।
0: टाइम चेकअप करा देना।
1: ठीक बात, जो आपने बात कही चेकअप करा लेना, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको नियमित जांच
0: जांच
1: जो
0: भी
1: है
0: करानी
1: वो
0: है।
1: करानी रहेगी। और कोई संदेश महत्वपूर्ण जो आप समझते हो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहें?
0: महत्वपूर्ण संदेश यही है कि ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे वर्ल्ड में और हमारे देश में भी, बट इट इज प्रिवेंटेबल, इट इज डिटेक्टेबल एंड इट इज ट्रीटेबल। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं
1: ठीक बात,
0: और इससे होने वाले दुष्प्रभावों को रोक सकते हैं। तो इसलिए जहाँ तक हो अपने खान पीन का, लाइफ स्टाइल का और जीवन शैली का जो आपके हाथ में है उनको हम करना चाहिए उनको।
1: ठीक। तो श्रोताओं, आज की जो हमारी बातचीत थी ये बहुत स्पष्ट है, बताती है कि हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं बल्कि हम कहें कि जीवन शैली से जुड़ी एक गंभीर चुनौती ज़्यादा है। तो सही खान पान, नियमित व्यायाम और जो हमारा स्ट्रेस है उस पर कंट्रोल, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया नियमित जांच, वो अगर किया जाए तो हम इससे बच सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, नियमित जांच करवाइए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इसके प्रति आगाह करिए, सचेत करिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो आकर हमारे श्रोताओं से जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार,
0: जी
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: आज आज में
2: अभी आपने सुना वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर विशेष कार्यक्रम, जिसमें डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल ने हमें बताया उच्च रक्तचाप के कारण, लक्षण और इससे बचाव के विषय में। इनसे बातचीत कर रहे थे अनिंद्र सिंह। 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। रात्रि के 8 बजने को है, अब समय है फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम गाने नए पुराने का, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

कार्यक्रम गाने नए पुराने में ये गीत हमने लिया था फिल्म दिल्ली का ठग से। संगीत रवि ने दिया था और गीतकार थे शैलेंद्र और आवाज थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म झुमरू से, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और आवाज है किशोर कुमार की।

तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ये गीत हमने लिया था फिल्म अभिमान से। संगीत दिया था नदीम, संगीत दिया था एस डी वर्मन ने और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की और आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा पर कार्यक्रम गाने नए पुराने। अगला गीत फिल्म धड़कन से है, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की। आइए आनंद लेते हैं फिल्म धड़कन के इस गीत का।

1530 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र कार्यक्रम गाने नए पुराने में। अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म कसूर से, जिसे अपने संगीत से सजाया है नदीम शर्मा ने। रचना समीर की है और आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

अभी आपने सुना फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम गाने नए पुराने, मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी आगरा है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे मधुर संगीत से लबरेज कुछ गीत और जानेंगे कुछ रोचक जानकारी। दोस्तों, वर्तमान में हर कोई पैसों के पीछे दीवाना है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ था तब हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई थी। तब उन्होंने अपनी तनख्वाह का आधा भाग ही लिया था। उन्होंने कहा था कि उनको उतने ही पैसों की आवश्यकता है। उनके 12 वर्ष के लंबे कार्यकाल के अंत में उन्होंने अपनी आय का केवल

न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। दोस्तों, आज हम बड़े बड़े जहाज देखते हैं। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि पूरा एक गांव उसमें समा जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व में पहली बार नौकायन की कला का आविष्कार भारत में लगभग 6000 वर्ष पहले महान सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था।

मीडियम वेव 196.1 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। दोस्तों, भारत सनातन काल से ही समृद्ध देश रहा है। पूरी दुनिया के कुल सोने का 11% सोना तो भारत की महिलाओं के पास ही है और 1986 तक आधिकारिक तौर पर केवल भारत में ही हीरा भी निकलता था।

अभी आपने सुना कार्यक्रम चित्रपट संगीत मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 8:45 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देश

0: के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मक

0: को उद्यमिता से जोड़ता है।
1: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता, रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
2: टुडे वी हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड,
3: आज हमने एक ही दिन में
2: सक्सेसफुली
3: 256.4 गीगावाट की अत्याधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्याधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
2: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यवसाय

एक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलिशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से।

0: वज़ीरे आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलिशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने 2 रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क्स पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फरोग देने और आबी वसायल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोदनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोदनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वजीर आजम वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वजीर आजम का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वजीर आजम मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़रा आज़म की एक मुश्तरका खिताब है जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोदनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, एआई, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला वजीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की, तहां मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वजीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वीडी सतीशन कल केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वदरा भी हलफ लेंगे। नामजद वजीर आला वीडी सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वदरा की फेहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID के इख्तरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तरा और पेशेवराना तरक्की के मौजूं प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं।
3: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मदर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले 9 तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह।

किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतअल्लिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लगने के वाकये की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीजन के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3 टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निजाम फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया और ट्रेन खुद बखुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डिब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाजों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदाम एयरलाइंस को जरूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फजाई सफर को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने यह भी कहा कि पानी की बचत इस बुहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ्फुज़ से मुतअल्लिक कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गांवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नशीली अशिया पर काबू पाने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगना थांकिंग तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी, खुफिया मालूमात में इजाफे, तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थांकिंग तुआंग कई तरह की मनशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। ये केस NCB और मनशियात से मुतअल्लिक कानून नाफिज करने वाली कई एजेंसियों ने दर्ज की थी, जिसमें से NCB ने दो केस दर्ज किए थे। नई और काबिले तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिले तजदीद तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगेई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के

0: काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर जेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सिफारतखाने ने मजीद बताया कि सिफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूरों की कैफियत दरियाफ्त की। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज आगे या पीछे होने की भी गुंजाइश है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के जनूब मशरकी बहीरे अरब के कुछ मजीद हिस्सों जनूब मगरबी और जनूब मशरकी खलीज बंगाल अंडमान जजायर और बहीरे अंडमान के बाकी हिस्सों और मशरकी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान हालात मुआफिक रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया गया है। बैडमिंटन में आज चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन क्यू युआन को सीधे सेटों में 14-21 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने 2 रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 माहदों पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
2: ये है मेरा कूपे। जूडिस का प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
3: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
2: कूपे में भी?
3: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1

0: स्त्री एक पुरुष?
1: जी हाँ, एक स्त्री और एक पुरुष, दो ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
0: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
1: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
0: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
2: अच्छा, मैम साहब आ गई। आप तो कह रहे
1: थे। सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको शांतना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया।
0: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल एक कॉफी।
2: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
1: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
0: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
1: ओके, लौट कर बातें होंगी।
0: ओके।
2: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
0: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची, कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
3: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
0: अच्छा,
3: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
0: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
3: मेरी शादी नहीं हुई है।
0: क्या?
3: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर हैं, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
0: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
3: कई वर्ष हो गए।
0: आपके बहुत मित्र हैं?
3: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
0: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करती हो?
3: करती हूँ। उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
0: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाया जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
3: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
0: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ हैं जो परिवार के शासन से परेशान हैं, कुछ को आज की शोषण की राजनीति त्रस्त करती है। वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में हैं

0: जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूँ।
1: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
0: ये मेरी डायरी है।
1: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
0: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
1: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी। खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो। मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
0: सब काम पूछ कर ही करते हैं आप।
1: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
0: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
1: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
0: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
1: प्लीज साथ देने के लिए एक पैक।
0: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
1: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
0: पीजिए।
1: बुरा मान गई। प्लीज, बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूं हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज हैं ये विदेशी युवतियां, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूं लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
0: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं।
1: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
0: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
1: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
0: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
1: आप ऊपर कैसे जाएंगी?
0: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
1: ना ना ना ना ना, नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
0: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
1: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times, लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे,
0: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
1: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई तो उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
1: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
0: बैठे रहो।
1: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
0: नहीं।
1: तुम्हें छू सकता हूँ?
0: नहीं।
1: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगी?
0: नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
1: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
0: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
1: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
0: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत।

0: तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
1: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
0: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वह मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह, व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
1: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
0: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
1: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
0: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
1: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
0: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
1: प्लीज
0: मत तेज पूंछ है, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
1: देखो,
0: ये दलीलें अब बासी होती।
1: प्लीज,
0: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है।
1: मैं नहीं,
0: मैं कहती हूँ शिक्षा रोक कर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
1: नहीं, सांत्वना।
0: कौन है, क्यों आए हैं? समय
2: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
2: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
0: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
2: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
0: क्या मतलब है आपका?
2: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
3: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
0: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
2: ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
3: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
1: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
0: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम मां बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है।

0: या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
1: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
1: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम?
1: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीव के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
0: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
1: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
0: शब्दों के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
1: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
0: ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सर्वजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्टेशन से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, तो अब मैं फंसी, मैं भी भटक रही हूं। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन में ही है? कहां है सत्य? कौन सा छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है? किससे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
3: बहुत देर से आई हो, कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
1: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
3: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें जो नहीं ले गए।
1: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।

0: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
1: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
0: हाँ यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मम्मा?
1: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
2: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
1: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में कांट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इससे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
3: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
4: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
3: सांत्वना, हमें लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
4: हाँ कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
3: तुम शादी कर लो।
4: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
3: धोखा तुम आप दे रही हो।
4: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
3: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनूं?
4: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
5: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
4: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
5: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल।
4: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
5: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्फ पर लेटा लेटा।
4: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे, बेचारे परवर्टेड।
5: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
4: आप नहीं पूछोगे?
5: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
4: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
5: जी मैं आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
4: फिर रुक क्यों गए?
5: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
4: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
5: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सके।
4: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
5: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छंद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
4: इसे हटा, मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया अब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
6: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह ये मार्था तो नहीं है?
4: मेरा नाम सांत्वना है।
6: ओह देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत भाई, बधाई हो।
5: निगम इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
6: हाँ, वो तो है, तो तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सीलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
4: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
6: ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में

0: तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
1: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
0: जा रहा हूं। खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। और सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहां शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
1: दरवाजा खुला रहने दो।
0: क्यों?
1: मेरी इच्छा।
2: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
1: तो आप में भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
3: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
1: बड़ी सुंदर जगह है ये।
3: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछोह का स्थान।
1: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछोह का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना। प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
3: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
1: कंडक्टर, मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
2: जी अभी आया। लाइए,
3: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
1: ये लीजिए।
0: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ। खूब बातें करेंगे दोनों, सामान ले।
3: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है जो तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

कूपे, अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल नांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर

0: प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a flute recital by renowned flautist Shri Vivek Sonar. Born and raised in Chalaskau, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Varkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari style. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin, and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mahotsav in Hampi, Urja Music Festival Delhi, Pandit Ram Marathe Festival Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mahotsav Goa, Gunjan Sangeet Mahotsav Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards. To name some, Akashwani A-grade artist for Indian classical flute, Thane Ratna Award by Hindustan Times, Pandit Sangameshwar Gurav

पुरस्कार पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुरमणि टाइटल फ्रॉम सुर श्रृंगार संसद मुंबई, नेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वृंदावन गुरुकुल स्कॉलरशिप. टुनाइट श्री विवेक सोनार प्रेजेंट्स राग चंद्र कंस आलाप जोड़ एंड मध्यलय गत सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल. ही विल बी अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री ओजस अधिया.

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू राग चंद्रकांस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री ओजस अधिया। विद दिस टू नाइट वी कंक्लूड रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी मुंबई एंड दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5

0: राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future.